मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमी कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगे और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगे। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक

0: अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitinder Singh, said the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
2: The earlier bill and the amendment are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: After the passage of the bill, the lower house was adjourned till 11 a.m. today. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gan Man. These offences are punishable with imprisonment of up to 3 years or fine or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned till 11 a.m. today. Bihar government has decided to reopen the closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. A proposal to this effect was approved at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Samrat Chaudhary yesterday. Briefing the media, Additional Chief Secretary Arvind Kumar Chaudhary said that the cabinet also approved the Bihar Sports Policy 2026. The meeting also approved the implementation of the schemes worth more than 97 crore rupees under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana for the financial year 2026-27. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a meeting with export promotion councils and industry associations in New Delhi to review measures aimed at strengthening India's export ecosystem.

श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता हो, बल्कि ईश्वर तो वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

ईश्वर इस जगत के कण कण में है, वे सदैव हमारे साथ हमारे सुख दुख में रहते हैं। जब भी आपके मन में किसी के प्रति बुरे विचार या घृणा आ रही हो, तो ऐसे में अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाएं। ऐसे विचार ईश्वर के मनन मात्र से ही दूर हो जाते हैं।

जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात वो हमें हजार दानों के रूप में प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा भी हम पर इसी प्रकार बरसती है। जब हम ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, ईश्वर हजार कदमों के साथ हमारी ओर आता है।

संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा नहीं, सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो रहा है और सबको वही दे रहे हैं। जो इस बात से मुनकर है, इस बात को नहीं मानते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके अनमोल विचारों की ऊंचाइयों ने तथा उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों एवं उनके श्रेष्ठ योगदान ने उनको महान बनाया है। कहा भी जाता है जो व्यक्ति जैसा विचारता है उसे क्रियान्वयन करता है वह वैसा ही बन जाता है। वस्तुतः सद्विचार व्यक्ति को प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं जबकि बुरे विचार मन की कुटिलता उसे पतन की राह पर धकेलते हैं। यदि आपके मन में आता है कि मैं प्रतिदिन मानवता की सेवा में एक ऐसा शुभ कार्य अवश्य करूंगा, कार्य के संपन्न हो जाने पर आपके अंतर्मन में एक ऐसी अनूठी प्रसन्नता की अनुभूति होगी जिसे शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती। प्रतिदिन एक शुभ कार्य का अर्थ यह हुआ कि वर्ष में आपसे 365 शुभ कार्य संपादित होते हैं और इसकी गणना उम्र की लंबाई से यदि की जाए तो ये आंकड़ा कितना विशाल होगा आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं। किसी की आंखों में खुशी के आंसू हों वह भी आपकी वजह से, किसी की आंखों में पीड़ा के आंसू न हों वह भी आपकी वजह से। यानी हमारा ये प्रयास हो, हमारी ये कोशिश हो, हम किसी के दुख पीड़ा और कष्ट के कारक न बने, हमारा ये शुभ प्रयास होना चाहिए। मंदिर मस्जिद का रास्ता है बहुत दूर, मंदिर मस्जिद का रास्ता है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। वास्तव में सद्विचार किसी के अंतर्मन का दर्पण होते हैं, परिचायक होते हैं। विचारों का ही प्रभाव होता है जो हमारी जीवन शैली कार्य शैली को बदल देते हैं। हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, सोचने समझने का नजरिया बदल जाता है। विचारों का प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से हमारे विचार प्रभावित होते हैं और उससे हमारा समाज भी प्रभावित होता है। वास्तव में मानव के कर्म व्यवहार ही उसके विचारों की सुंदर व्याख्या है। अतः हमारा दायित्व बनता है, हमें चाहिए कि बुरे विचार, मन की कुटिलता, पर निंदा, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा और अपराध आदि निंदनीय प्रवृत्तियों का परित्याग करते हुए हम सुंदर विचारों को अपनाएं। श्रेष्ठ और सुंदर विचार ही जीवन को गति देते हैं, व्यक्ति के कद को ऊंचा करते हैं। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुखी करने में है, न कि उन्हें दुख अथवा कष्ट देने में। अपनी वाणी, अपने कार्य, अपने व्यवहार द्वारा किसी का मन कभी भी आहत न करें। अतः किसी का बेवजह दिल दुखाना, आपके कटु अप्रिय शब्दों से किसी की आंखों से नील

0: फलकाना क्या आपको सुकून देता है? अतः बुरा न विचारे न बुरा करें। कोई देखे या न देखे, वो खुदा तो सबको देखता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:10 पर सुनिए कार्यक्रम में खेती हराम वास्ते। आज जानकारी देंगे उत्पादकता वृद्धि के मूल मंत्र। मानस गान का समय रहेगा 7:20। आज हम आपको सुनाएंगे भाग संख्या 320। सुप्रभात में आज बात करेंगे बुजुर्गों का सम्मान, विपत्ति का मार्ग आलस्य और त्याग ही सुख है। कुछ भजन सुनिए। कार्यक्रम होगा सुगम संगीत, समय 8:45। रामचरण दास को सुनिए मरुमंगल कार्यक्रम में 9:10 पर, फिल्म संगीत 9:30 पर और अनुरोध गीत प्रातः 10:00। विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्यम डॉक्टर लोकेश अनुपाणी से सुमन कंवर की बातचीत प्रातः 11:00। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत 12:05 पर, सुगम संगीत 12:30 पर और खेत खलिहान में आज बात करेंगे बरसात के पानी का सदुपयोग, समय होगा 12:50। 1:05 पर महिला जगत में आज बात करेंगे बचपन का मनी बैंक गुल्लक, सड़क यातायात और बारिश, बंगाल की टेराकोटा कला और चावल की विभिन्न रेसिपीज। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे 2:30 पर और उर्दू सर्विस के प्रसारण दोपहर 3:00 से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर हमारे दिल्ली केंद्र से शाम 4:00 अनुप्रसारित किया जाएगा। शाम 5:00 युववाणी में बात करेंगे विज्ञान और मानव जीवन, संघर्ष से सफलता, महान व्यक्तियों से प्रेरणा, जीवन में धैर्य और आज का इतिहास। सरायकी का समय रहेगा 6:05 और चौपाल शाम 7:00। चौपाल में आज बात करेंगे माटी में जैविक कार्बनिक का महत्व, एकीकृत पोषक तत्व, मुर्गी पालन लाभकारी व्यवसाय, साथ ही साथ बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी देंगे। संसद समीक्षा रात्रि 8:00 आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन पाएंगे। कार्यक्रम एक ही फिल्म से रात्रि 8:15 पर और सुगम संगीत रात्रि 9:15 पर। 9:30 पर कंट्री वाइड आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से और रात्रि 10:00 फिल्म संगीत और शास्त्रीय संगीत रात्रि 10:30 पर आप हमारे केंद्र से सुन पाएंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: सामूहिक प्रतिबद्धतां दर्शयति।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघ स्थितिः दुरापद्यते। अस्माद् हेतोः चत्वारः जनाः मृत्युमुपगताः, सहैव चतुर्लक्षाधिकाः जनाः प्रभाविताः अभवन्। श्रावणमासस्य वार्षिकी कावडयात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते। अस्यां यात्रायां भक्ताः गङ्गाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार गोमुख गङ्गोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति। अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेशसर्वकाराभ्यां व्यापकप्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को और सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने कहा कि देश को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेड इन इंडिया उत्पाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपए का अनुसंधान विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

0: by promoting awareness, community engagement, and sustained public participation. In the United States, a man was convicted of federal terrorism charges in the 2022 stabbing of Salman Rushdie, the author who has faced a decades-old death threat over his novel The Satanic Verses. A jury found Hadi Matar guilty of all charges against him, including engaging in an act of transnational terrorism. Orange alert indicating isolated very heavy rainfall has been issued for three districts of Kerala. Kozhikode, Wayanad and Kannur districts in northern Kerala are under orange alert today, indicating the possibility of isolated very heavy rainfall. A holiday has been declared for educational institutions in Wayanad district today. India scripted history in para-athletics at the Commonwealth Games, securing a historic 1-2 finish in the men's 100-metre T47 final as Dilip Mahadugavit won the gold and Muhammad Basil Morsinganakat claimed the silver. And that is the end of this news bulletin.
1: Medium wave 326.79 meter arthat 918 kilohertz par hum Akashvani ke Cotton City channel Suratgarh se bol rahe hain. Kheti Hravaste karyakram mein aaj jankari denge utpadakta vriddhi ke mool mantra.
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज आपां बात करांगा उत्पादन की और उत्पादकता की। उत्पादकता को मतलब है कि प्रति इकाई या आपां या कह सकां प्रति हेक्टेयर है प्रति बिघे आपनों जो को उत्पादन है वो आपां किया बढ़ा सकां बस वही उत्पादकता है। तो इनका कई भाइयों सिद्धांत है कई तरीका है इनका जो आपां के है कि अपने हर बिघे को उत्पादन जो है वो बढ़ा सकां पूरे खेत को आप उत्पादन बढ़ा सकां भी मैं कई बातों को ध्यान रखना पड़े। जो सारों पहला तो है बिजाई कि एक तो आप टाइम के उपर बिजाई करा अगर टाइम के उपर अपनी बिजाई होड़ी होगी तो भी फायदा हो कि आपने उत्पादन जो है वो ज़्यादा मिलेगा। इस सागे सागे वो भी ध्यान रखना कि जो आप बीजांत करा हाँ वो बीज प्रमाणित होना चाहिए। अगर प्रमाणित और अच्छा आप बीज लिया हाँ तो भी लगभग 20-25 सैकड़ा तीन अपनी जी उपज है वह बद जे है। एक वो भी ध्यान रखा कि उपचार जो बीज को वो भाइयों जरूर करना है क्योंकि बार बार आप बात करता रहा किसान भाई जागरूक है जाना भी है कि बीज उपचार करा या बीज को जो आप टिक्को लगा दें तो बीज में क्या होगा कि एक तो आपने कम खर्च का वहाँ बुंटा नहीं रोग हो जाएगा यार आगे रोग जो कौन लगे यार आगे जो रोग कीड़ा कांटा पर जो आप पीसो टिक्को लगावा भी वहाँ अपने बचाव हो जाएगा। यार सारों मोटी एक ध्यान देने की बात आई है कि मट्टी की भाइयों जाँच जरूर करावा क्योंकि आप बगैर जांच कराए अगर खाद उर्वरक दिया हाँ तो अपन वो पतो को नहीं कि अपनी जकी जमीन है दिन में कितना पोषक तत्व है और कितनी जरूरत है। कई बार ज़्यादा है फिर भी आप खाद दे दें कई बार कम है खाद दें लेकिन खाद आप पूरी कौन दे सकें तीन भी माटी जांच करवा जाऊँगा तो अपन पतो लाग जाएगा कि कितना पोषक तत्व की जरूरत है भी हिसाब ही आप अगर उर्वरक देंगा तो भी छुके कि एक तो आपको पीसो बचेगा एक उर्वरकों के ऊपर अपने ज़्यादा जकी वह मेहनत को करनी पड़ेगी। यार बीजांत करा जब एक वो भी ध्यान रखना है कि एक तो बीज जकी है मात्रा आप सही रखा जितनी आपने सिफारिश करे है वैज्ञानिक इनके सागे सागे कतार में बिजाई जद करा तो कतारों कतार की दूरी बूटों बूटों की दूरी अगर आप सही रखागा तो भी बतावे कि आपने उत्पादन जो है वो ज़्यादा मिल सके। सागे भाइयों कई बार आप बात करता रहा फसल चक्कर की इनको मकसद वो है कि आप बदल बदल के अगर फसल बीजता रहा तो बीज भी कि कई बार एक फसल के ऊपर विशेष फसल है जगह के ऊपर विशेष कीड़ों हर बार ही लग गए तो अगर आप एक या दो बार भी फसल ने छोड़ दिया तो वो कीड़ों के की खत्म हो जाएगा वे रोग भी खत्म हो जाएगा तो आगा अपनी फसलों को परावे को नहीं तो वो भी आप काम कर सका हाँ। अब बात तकनीकी करा क्योंकि जब आप पूरे देश की बात करा या दुनिया की बात करा हर जगह क्षेत्र वो नई तकनीक का नहीं जाए तो आपने खेती में भी नई तकनीक को प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जब पानी की बात करा हाँ तो एक टाइम हो कि सीधे ही आप क्यारंग में पानी छोड़ता अब आपने कहीं भी तो पानी भी कोनी तो जरूरी है कि फुहारा है ड्रिप है या पाइपलाइन है अंग आप प्रयोग करा अंग क्यों होगी पानी की बचत होएगी। सारों मोटी बात है कि आप पानी ज़्यादा खेत में देस कहाँ फिर एक फायदा भी है जब जरूरत है जदि पानी देस कहाँ आजकल तो यही तरीके की तकनीक है कि कोई दवाई दप्पो भी अगर फसल में देने है तो भी पानी के साग आप भी देस कहाँ। और दूसरी सारों जो आपने फायदों वो मिलेगा कि जब फसल ने पानी की जरूरत है जबकि क्रांतिक अवस्था के ऊपर आप पानी दिया तो अगर आपने कहना ड्रिप है फारो है पाइपलाइन पानी दिया पानी की आपने कहना भंडारण है तो आप जरूरत होगी जब दी जाएगा तो इसको कम पानी में अपने

ज्यादा पैदावार मिल जाएगी। यार सागे सागे मित्र कीटां के संरक्षण को आप काम कर सका, वो काम यहाँ होगा कि आप कीटनाशक दवाइयों को कम प्रयोग करांगा तो बी शुकी होगी कि अपना मित्र कीट पन पेगा। यार अगर कठे कीड़ा कंट है तो प्रकाश पास आवे है, फेरोमेन ट्रेप आवे है, बंग प्रयोग करके आप कीट नियंत्रण करा तो दवाइयों को जो खर्च है वो कम हो जाएगा। जैविक खेती अपनावा, इस लागत भी कम लागे और उत्पादन भी धीरे धीरे धीरे धीरे भी तो ही आप लग जाए और सागे के कि स्वास्थ्य भी लाभदायक है, तो इन्हें भी आप विचार करा। यार एक और भी ध्यान रखा कि अगेती किस्म ने आप अगेत बीजनो, पछेती ने पछेत बीजनो, सामान्य जकी बुझाएगी किस्म है बने बी टाइम बीजा, तो किस्मों को ध्यान रखा। अगर अंगमा हेर फिर आप करांगा तो फिर क्या कि उत्पादन में कमी आ जाए, तो सही टाइम की किस्म ही चुन गए बी टाइम आप बिजाई करा। फिर जकी किसान अपने प्रयोग करे किस्म बंगी आप भी देख लें कि आपने ऐठे सिफारिश खरीदी है कोनी कृषि विशेषज्ञों की, बी बात को ध्यान रखा। एर खाद बीज जकी भी आप कोई दवाई दपोलिया बिंगो पक्को बिल भी आपने ले लेना चाहिए, कल न कोई इं ना हो कि दवाई आप इसी नाख दी जो आपने नुकसान हो। एर फसल को बीमा आप जरूर करावा, क्योंकि फसल को बीमा अगर कराइड होगा तो कट्ठे ही अगर कोई नुकसान आप ना हो बिंगी भरपाई हो सके। यार फसल भी आप भांत भांत की बीजा बिंगवा की आप सब्जी वाली ले सकें, कि आप कि बागवानी की ले सकें, चारे की जरूरत है तो बाह ले सकें। यार मिलवा अगर खेती करा तो बिंगवा इं हो जाए कि कई बार कोई एक फसल में आपने नुकसान हो जाए तो दूसरी अपनी भरपाई कर सके। तो इन तरीकों अगर आप प्रयोग करांगा खेती कमा तो निश्चित रूप में अपनी उत्पादकता बढ़ेगी और अपनी उपज में बढ़वार होगी। राम राम किसान भाइयों, राम राम।

लंका में भीषण युद्ध छिड़ा है। वानर सेना ने रावण की प्रायः आधी सेना का संहार कर दिया है। रात्रि का आगमन होने पर दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में जय पराजय तथा रणनीतियों की समीक्षा करते हैं। आधा सैन्य बल खोकर रावण चिंतित है। मंत्रणा के समय माल्यवंत रावण को फिर सीख देता है कि वेद पुराणों ने जिन प्रभु का गुण गाया है उनसे विमुख होकर कोई भी सुखी नहीं हो सका। माल्यवंत उसे स्मरण दिलाता है कि जब से वो सीता को हर लाया है तब से ही भांति भांति के अपशकुन हो रहे हैं, किंतु रावण को अपने वृद्ध नाना की ये सीख नहीं सुहाती। अपमानित कर वो माल्यवंत को सभा से निकाल देता है। रावण पुत्र मेघनाथ ने पिता को अपनी दृढ़ता से उत्साहित किया। कल प्रातः देखना मैं क्या करता हूं, अभी से क्या कहूं। इस प्रकार पिता पुत्र में मंत्रणा होते रात बीत गई। सवेरा हुआ, वानर सेना ने एक बार फिर दुर्गम गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। राक्षस ऊपर से बड़े बड़े शिलाखंड तथा अन्य अस्त्र बरसाने लगे। घोर गर्जन तर्जन और वज्र जैसे अस्त्रों से प्रलय मच गई। वानर सेना प्रहार से घायल होती है किंतु मैदान नहीं छोड़ती। मेघनाद ने जब वानर और रीछ सेना द्वारा दुर्ग के घेर लिए जाने का समाचार सुना तो युद्ध घोष करता, डंका बजाता, किले से उतरकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस कान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, बात करें बुजुर्गों की तो परिवार की शान है बुजुर्ग, लेकिन कभी परिवार की शान कहलाने वाले बुजुर्ग आज बहुत जगह अपने ही परिवार में स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। जिस तरह हाथ की सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सभी के विचार, सोच, इच्छाएं, मान सम्मान के अलग मायने होते हैं। हर इंसान अच्छा नहीं हो सकता और हर इंसान गलत भी नहीं हो सकता, ये भी सत्य है। लेकिन आज के सैद्धांतिक युग में कई स्थानों पर बुजुर्गों की स्थिति बहुत तकलीफ देह है। नन्हे बच्चों के सुखद भविष्य का सपना बुनते संजोते वो अपने आप को भूल गए, यानी आज उन्हें दर दर भटकना है या तिरस्कृत होकर अपने ही घर में जबरन नौकर की तरह जीवन जीना पड़ता है। आज हम जिस पश्चिम संस्कृति की होड़ में भाग रहे हैं, उसी से ये सब हो रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपने आने वाले बच्चों को उन साथियों के साथ हम प्यार, संस्कार, स्पर्श और आशीर्वाद से नवाज रहे हैं। क्यों कहते हैं ना, बड़ों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बाहर से हमें कितना ही प्यार मिल जाए, लेकिन संस्कार, दुआ, आशीर्वाद तो अपने बाप से ही मिलता है, माँ से ही मिलता है। अपने प्यार से रिश्ते को सींचने वाले और अपने बच्चों की खुशियों के इरादे, अपने जीवन को दांव पर लगाने वाले अपने माता पिता, अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें तो प्यार परिवार में ही मिलेगा और वृद्धाश्रम की धारणा ही समाप्त हो जाएगी। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि निजी दौर में कैसा वक्त आया है, जिन बच्चों को चलना हमने सिखाया है वो लगा रहे हैं बंदिशें हमारी जयंती पर। जो उंगली चलती है ये अब मुझे दूर दिखाती है, मुझे किस तरह से जीना चाहिए वो मुझे सिखाते हैं। सिर्फ ज्ञान होने से बुद्धि नहीं बन सकती, बल्कि बड़ों का प्यार, मार्गदर्शन, आशीर्वाद ऐसे चरण हैं जो जीवन में बहुत काम आते हैं। कहते हैं ना, जिस तरह

एक लकड़ी का कोयला बन जाए तो वो आसानी से टूट जाता है। इसी तरह यदि संयुक्त परिवार को आँच आए तो वो बड़ी जल्दी कमज़ोर हो जाता है। एक बार की बात है, एक बारात पहुंची एक जगह पर, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक शर्त माननी होगी। शर्त यह है कि बारात में अलग अलग मिठाइयाँ लगेंगी, उन्हें जल्दी जल्दी ख़त्म करना होगा। बाराती शुरू हो गए, लेकिन एक बुज़ुर्ग ने कहा, ये तो बात ही कुछ नहीं है। एक डिब्बा खोला, उसकी मिठाई हर बाराती को खिलाई। डिब्बे का अंत कुछ इस तरह हुआ कि एक एक करके डिब्बा ख़त्म हो गया और पता भी नहीं चला। लेकिन एक व्यक्ति की राय और उसके अनुभव ने शर्त को जीत दिया। कहते हैं ना, पुराना ये सोना। माता पिता को बुढ़ापा इतना बुरा नहीं लगता कि औलाद का रिश्ता बना रहता है। माता पिता उस पेड़ के समान हैं जो हमें बिना शर्त के छाया देती हैं। जिस तरह से आप अपने माता पिता के साथ, बुज़ुर्गों के साथ व्यवहार करेंगे, कहते हैं कि वो आपके बच्चे भी आपके साथ उसी प्रकार जुड़ेंगे। वो आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उन्हें जो देने के लिए तैयार है वो आपके संस्कार हैं। जो संस्कार आप अपने बच्चों को देंगे, वही संस्कार आपके बच्चों के पूरी उम्र काम आएंगे। खैर, बातें और भी करेंगे, सुनते हैं कि गीत।

दोस्तों, आलस्य विपत्ति का मार्ग है। आलस्य वो चीज़ है जो हमें हमारे कर्मों से दूर कर देती है। आलस्य वो चीज़ है जो हमें अपनी सेहत से दूर कर देती है। जीवन जीने के लिए हर किसी को किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, जो हमेशा उसके साथ रहे। अकेले रहकर खुश रहना संभव नहीं है। हमें दूसरों के लिए कुछ करना होगा, तभी दूसरे हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। यदि हम हर काम में आलस्य करते रहेंगे तो ना केवल आर्थिक बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तरह तरह के नुकसान हमें झेलने पड़ेंगे। हर रिश्ते के अलग अलग चरण, तरीके, नज़रिए होते हैं। विश्वास, प्रेम, सम्मान, अलग अलग तरीके हैं जिससे हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। प्रेम के बिना रिश्ते कभी पूरे नहीं होते, और एक दूसरे की केयर किए बिना रिश्ते कभी पूरे नहीं होते। खैर, बातें और करेंगे, सुनते हैं कि

एक आम कहावत है कि यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो दूसरे आप पर विश्वास क्यों करेंगे। जीवन में कुछ भी हासिल करने का रहस्य उसे आदत बना लेना है। कहते हैं किसी भी काम का 23 दिनों से अधिक अभ्यास करने से वो आदत बन जाती है। शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसने खुद पर भरोसा किए बिना एक भी चीज में सफलता प्राप्त की हो। ये कहावत बिल्कुल सटीक है, आस्था पहाड़ों को भी हिला सकती है और सशक्त चिंतन शक्ति ही सफल और प्रभावशाली

शक्तियों को एकजुट करती है। आत्मविश्वास के बिना आप मानसिक शक्ति और दृढ़ सहन शक्ति विकसित नहीं कर पाएंगे। आत्मसंदेह को कभी भी अपने रास्ते में बाधा न बनने दें, क्योंकि व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, इसलिए वो दूसरों को समझाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट है, इसलिए उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है, इसलिए सारा संसार भी उसे स्वीकार करता है।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का सुप्रभात कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
6: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
5: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद

0: ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
1: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट पर करार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं।

0: मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानकथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ते ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15%

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में, रैयाम और मधुबनी में, साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बुरे अहमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तिजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रवण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौलत मुश्तरक खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद वसील ने चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए सख्त सजाओं और फास्ट ट्रैक अदालतों के क्याम की तजवीज़ है। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 में कई अहम गुंजाइशों को शामिल किया गया है, जिनमें 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और कसूरवार करार दिए गए अफराद की इमलाक जब्ती जैसे सख्त इल्तजाम शामिल हैं। यह कानून इस बात को लाजमी करार देता है कि हर रियासती हुकूमत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करे। अमले, शिकायत और पेंशन के वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि कानून को मज़ीद सख्त बनाने के लिए बिल में तरमीम की गई है, ताकि पेपर लीक मामलों में जल्द इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। बिल को कल मंजूर किए जाने के बाद ऐवान ज़ेरिंग की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा ने कौमी तज़ीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को कल मंजूरी दे दी। ये बिल कौमी तज़ीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मज़ीद तरमीम करेगा। इस मुजवजा कानून के जरिए वंदे मातरम को कौमी तराने जनगणमन की तरह कानूनी तहफ़ हासिल हो जाएगा। इस मुजवजा कानून के जरिए कौमी तज़ीम की बेहरमती पर 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राज्यसभा में इस बिल को मंजूरी के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई को आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार के बांकीपुर हलके, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया हलके में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बिहार में बीजेपी सदर नितिन नबीन के राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद उनकी बांकीपुर सीट खाली होने के सबब वहां ज़िमनी चुनाव ज़रूरी हो गया था। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि राय दहिंदगान वोट डालने के लिए सुबह सवेरे से ही पोलिंग मराकज पहुंच रहे हैं। पटना के बांकीपुर असेंबली हलके की 164 पोलिंग स्टेशनों के सभी 422 पोलिंग बूथ्स पर पुरान तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस सीट पर 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि कुल 3,79,616 वोटर्स उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। गुजरात की मांजलपुर असेंबली हलके के लिए बीजेपी ने सतीश पटेल को, जबकि कांग्रेस ने भीका भाई रबारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां से बीजेपी के रुकन असेंबली योगेश पटेल के इंतकाल के सबब ज़िमनी चुनाव ज़रूरी हो गया था। इंतखाबी कमीशन ने 100% वेबकास्टिंग, पोलिंग मराकज़ के बाहर मोबाइल फ़ोन जमा कराने के काउंटर्स और ऑनलाइन ज़ाब्ते अमल से मुतालिक शिकायतों के लिए सी विजिल सहूलतें मुतारिफ कराई हैं। मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती को नाअहल करार दिए जाने के बाद दतिया सीट खाली हो गई थी। दतिया असेंबली हलके से चुनाव के लिए सभी 291 पोलिंग स्टेशनों पर खसूसी इकदाम किए गए हैं और पोलिंग से मुतालिक सभी सरगर्मियों की वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जा रही है। इस हलके से कुल 2,20,410 राय

0: मंजूरी दी गई। मीडिया के अफराद से बात करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि काबीना ने खेलों से मुतालिक बिहार की पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी है। मीटिंग में माली साल 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 97 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत की स्कीमों के निफाज को भी मंजूरी दी गई है। शहरी तरक्यात के शोबे में अमृत 2.0 के तहत तकरीबन किशनगंज में पानी की सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय में पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ 96 लाख से ज़्यादा रुपए मंजूर किए गए हैं। काबीना ने रियासत के सभी ज़िलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और तिजारती वर्मी कंपोस्ट इकाइयां कायम करने का भी फैसला किया है।
1: राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर एवं बायोगैस इकाई तथा व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 30 करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई।
0: कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बुहरा अहमर के बहरान और आलमी उथल पुथल के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात में मौजूदा माली साल के अप्रैल से जुलाई की मुद्दत के दौरान 15% का इजाफा इंदराज हुआ है। जीआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर 2026 से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि आलमी कशीदगी और तजारती रास्तों में रुकावटों के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात लचकदार रहीं। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि यह कारकर्दगी ऐसे वक्त में मुल्क की मजबूत इकतसादी बुनियादों की अक्कासी करती है जब मगरबी एशिया के बहरान और जहाजरानी की अहम राहदारियों में रुकावट की वजह से दुनिया भर में कारोबार गैर यकीनी हालात के शिकार हैं। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरामदात को फरोग देने वाली काउंसिलों और सनती अंजुमनों के साथ मीटिंग की, जिसका मकसद भारत के बरामदाती इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के इकदाम का जायजा लेना था। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के बाद मुल्क की आलमी मसाबिका आरई को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। जनाब गोयल ने मीटिंग के दौरान मजबूत मसाबिका आरई पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बरामदाती इको निज़ाम की तामीर के हुकूमत के अज़्म को दोहराया ताकि भारत की माशी तरक्की में मदद मिले और विकसित भारत का नज़रिया पूरा किया जा सके। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि इख्तरा स्टार्टअप्स और जदीद टेक्नोलॉजी MSMEs और आलमी सतह की मुकाबला जाती मैनुफैक्चरिंग भारत को माशी तरक्की के अगले मरहले तक ले जाएगी और साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के विजन को पूरा करने में मदद फराहम करेगी। नई दिल्ली में 22वें JRD टाटा मेमोरियल लेक्चर से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत को महारत की जानिब बढ़ना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मेयार इख्तरा और मुकाबला जाती सलाहियत के जरिए भारत में बनी हुई मसनूआत को आलमी सतह पर काबिल एहतराम मुकाम हासिल हो। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा हाई अलर्ट पर है क्योंकि रियासत में नदियों में सतह आब में इजाफे से कहर बरपा हो गया है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशगोई की है। महानदी में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा है और कई नदियों के तास पर गहरी नज़र रखी जा रही है। इंतजामिया ने राहत और तैयारी से मुतालिक इकदाम तेज़ कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि भद्रक सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला बना हुआ है, जहाँ हुकाम ने शदीद खतरात वाले इलाके के लोगों से अपील की है कि वह नामजद करदा राहत कैंपों से बाहर न जाएं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा में भद्रक जिला सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां जिले के 5 ब्लॉक्स में 322 गांव सैलाब के पानी में डूब गए हैं। पड़ोसी जिले जाजपुर में लबरेज हो चुकी बैतरानी और कानी नदियों ने रोजमर्रा की जिंदगी को शदीद तौर से मुतासिर किया है, जिससे नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। महानदी के बलाई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से सतहआब में इजाफा हो रहा है, जिससे दरमियानी दर्जे के सैलाब और नदी के तास में पानी भर जाने का खदशा है। इस दौरान भारत के महकमा मौसमियात ने नौपाड़ा, कालाहांडी, नबरंगपुर और कोरापुट जिलों में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि दीगर 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भद्रक, कालाहांडी और नबरंगपुर में एहतियाती कदम के तौर पर तालीमी इदारों को बंद रखा गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: केरलम के 3 जिलों में बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: शुमाली केरलम में कोझिकोड वायनाड और कन्नूर जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जिसके तहत इन तीनों जिलों के दूरदराज इलाकों में बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वायनाड जिले में आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया है जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है जहां बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कल आधी रात से तकरीबन सभी जिलों में 5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर बारिश

0: रिकॉर्ड की गई। तवक्को है कि जुमे और हफ्ते को करालम में बारिश की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। स्मिथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने आज वस्ती महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में कुछ मकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। शुमाल मशरकी भारत, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी राजस्थान, गुजरात खित्ता, हिमाचल प्रदेश, केरला और माहे, कोंकण और गोवा, साहिली कर्नाटक, मराठवाड़ा, पंजाब, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कांवड़ यात्रा आज हरिद्वार उत्तराखंड में शुरू हो गई है। रियासती सरकार ने लाखों शिव भक्तों की हस्ब मामूल आमदरफ्त, उनकी आसानी और तहफ्फुज़ के लिए ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कांवड़ यात्रा के लिए हिफाजत के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। ये यात्रा 11 अगस्त तक जारी रहेगी। नीम फौजी दस्तों के साथ रियासती पुलिस के अमले को कांवड़ियों के आने जाने के रास्ते कौमी शाहराओं, बड़े घाटों, मंदिरों और दीगर हसास मुकाम पर तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों, CCTV नेटवर्क और जदीद मरबूत कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि की यात्रा करने वाले लाखों दत्तमंदों के लिए हर मुमकिन इकदामात किए गए हैं ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न उठाना पड़े। यात्रा के दौरान ट्रैफिक की नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक की आमोदरफ्त का खसूसी मंसूबा नाफिज किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आफात से निपटने वाली इकाइयों को भी हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: उत्तर प्रदेश में बहुत से ज़िलों में ट्रैफिक को मुंतकिल करने से मुतालिक इंतजामात को नाफिज किया गया है ताकि कांवड़ियों और दीगर लोगों के बहिफाजत और खुश असलूबी से आने जाने को यकीनी बनाया जा सके। पेश है एक रिपोर्ट।
3: लखनऊ की DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक महीने के लिए राजधानी के कई रास्तों पर ट्रैफिक मुंतकिल किया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर NCR में मुसाफिरों की सहूलियत के मद्देनजर NCRTC ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले अकीदतमंदों के लिए रेलवे ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। अयोध्या में आला अफसरों ने राम की पैड़ी और नया घाट इलाके का मुआयना किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के CEO विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि श्रद्धालुओं की सहूलियत और हिफाजत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिनमें जिगजैग की छाया, ग्लूकोज वाटर और ORS तकसीम किए जाएंगे। अकीदतमंदों पर फूल भी बरसाए जाएंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। ये नशा और अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ 100 हफ्ते तवील एक जन भागीदारी मुहिम है। भारत ने दौलत मुश्तरक खेलों में पैरा एथलेटिक्स में एक तारीख रकम की है और मर्दों के 100 मीटर T47 फाइनल में दिलीप गावित ने सोने का तमगा और मोहम्मद वासिल ने चांदी का तमगा जीता है। गावित ने सोने का तमगा जीतने के लिए 10.71 सेकेंड में बेहतरीन रिकॉर्ड कायम किया, जबकि वासिल ने दौड़ के सख्त मुकाबले में कांसे का तमगा जीता और 10.83 सेकेंड में अपनी दौड़ मुकम्मल की। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
4: शुक्रिया जमीर। लोकसभा में पेपर लीक रोकथाम बिल मंजूर होने को राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। बकौल रोजनामा इंकलाब, 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने का इल्तिजाम। रियासत में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। इसी अखबार ने नीट पेपर लीक की पूरी साजिश बेनकाब करने के CBI के दावे की खबर को भी नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वंदे मातरम की तौहीन को अब काबिल सजा जुर्म करार दिए जाने को अपनी पहली खबर बनाया है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा का इल्तिजाम है।
1: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हल्कों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में रैयाम और मधुबनी में साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बुहिरा अहमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तिजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रवण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौलत मुश्तरक खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद वासिल ने चांदी का तमगा अपने नाम किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज सुगम संगीत में सुनिए कुछ भजन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हिंदी में

0: प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत 7 जिलों में इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। प्रदेश में श्रावण माह का आगाज बारिश के साथ हुआ। अगले एक सप्ताह तक मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना। और कॉमनवेल्थ खेलों में राजस्थान की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर देश के लिए एक और पदक पक्का किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पेपर लीक, नकल और परीक्षा से जुड़ी अन्य अनियमित गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने इस विधेयक के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को मजबूत तकनीकी सहायता बनाए रखने, शिकायतों का जल्द निवारण सुनिश्चित करने और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान काउंसलिंग पोर्टल के सुचारू संचालन को सुगम बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए हर संभव सक्रिय उपाय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने काउंसलिंग कार्यक्रम, आईटी अवसंरचना, साइबर सुरक्षा तैयारियों, शिकायत तंत्र निवारण और उम्मीदवारों के लिए सुगम उपायों और सहभागी संस्थानों के साथ समन्वय का भी आकलन किया। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद पंच गौरव कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 7 जिलों में 14 करोड़ रुपए की लागत से कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया है। इन केंद्रों में 12 में लहसुन, चित्तौड़गढ़ में सीताफल, जालौर में अनार, झालावाड़ में संतरा, जयपुर में आंवला, अजमेर में गुलाब और जैसलमेर में खजूर के लिए आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां ग्राइंडिंग, सॉर्टिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा। इन केंद्रों पर खाद्य प्रसंस्करण और विपणन से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बाड़मेर में महिला सुरक्षा संकल्प जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों, अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। पुलिस उप महानिरीक्षक राशि डोगरा ने बताया कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाना

0: और उन्हें अपने अधिकारों तथा उपलब्ध पुलिस सहायता सेवाओं की जानकारी देना है।
1: प्रोग्राम का बेसिक एम यही है कि जो भी कानून है उनसे इनको अवगत कराया जाए, इनके अधिकारों से, जो भी नए कानून में भी इनके लिए प्रावधान दिए गए हैं, तो इन बच्चियों से संवाद किया जाए। मैं मानती हूँ कि महिला होने के नाते एक दोहरी दायित्व है हमारा, पुलिस अफसर तो हम हैं ही, तो मैं यही चाहूंगी कि ये जो लड़कियां आई हैं, ये भविष्य में ये भी माताएं बनेंगी, तो सबसे पहले आज जो बड़ी है वो तो अपने परिवार में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, और जो लड़कियां पढ़ रही हैं, जैसे कि मैंने कहा कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता, तो मेरा माँ बाप से यही मतलब अपील रहेगी कि इनको और आगे शिक्षा दें और इनको लाइफ में जो भी ये करना चाहती हैं उसकी अपॉर्चुनिटी दें।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मॉनसून ने प्रदेश में सावन माह का स्वागत बारिश के साथ किया है। पूर्वी भारत के ऊपर बने गहरे कम दबाव के क्षेत्र के असर से पूर्वी राजस्थान में सक्रिय मॉनसून से पिछले 24 घंटों में भीलवाड़ा, डीग, अजमेर, धौलपुर, झालावाड़ और नागौर सहित कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। सिरोही में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। हनुमानगढ़ में हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहावना हो गया है। सबसे अधिक 117 मिलीमीटर बारिश टोंक के मालपुरा में रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है।
2: पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश टोंक जिले के मालपुरा में 117 mm यानी वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जायल नागौर में भी 101 mm बरसात दर्ज की गई है। अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों में आगामी 3-4 दिन कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह के दौरान मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ कहीं कहीं मध्यम तो कहीं कहीं तेज दर्जे की बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट होने की प्रबल संभावना।
0: चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मॉनसून के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये बात स्वास्थ्य भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चिकित्सा संस्थानों की समय पर मरम्मत कराने, आवश्यक दवाइयों और जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मरीजों की संख्या के अनुसार चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की तैनाती करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रोमा सेंटर और फर्स्ट रेफरल यूनिट में आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता एक महीने में सुनिश्चित करने को भी कहा। श्रावण मास के शुभारंभ के साथ आज से प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। इसी के साथ कांवड़ यात्राएं भी शुरू हो गई हैं। हनुमानगढ़, बारा, अजमेर और पाली के विभिन्न शिवालयों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। सवाईमाधोपुर के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में ध्वजारोहण के साथ श्रावण महोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान यहां धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होंगे। महोत्सव के मद्देनजर रेलवे ने सावन के चारों सोमवार को ईसरदा रेलवे स्टेशन पर 6 प्रमुख ट्रेनों का 2-2 मिनट का अस्थायी ठहराव करने की घोषणा की है। कॉमनवेल्थ खेलों में राजस्थान की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया है। कोटा की अरुंधति ने ग्लासगो में खेले गए महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से हराया। मुकाबले में अरुंधति ने शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। वे इन खेलों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं। उनकी इस उपलब्धि पर कोटा में खुशी का माहौल है। अरुंधति अब 31 जुलाई को सेमीफाइनल में यूके की मुक्केबाज से भिड़ेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत 7 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। प्रदेश में सावन माह का आगाज बारिश के साथ हुआ। अगले एक सप्ताह तक मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना। और कॉमनवेल्थ खेलों में राजस्थान की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर देश के लिए एक

0: पदक पक्का किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:10 हुए हैं। मरुमंगल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे लोक गायक रामचरण दास और साथियों के गाए कुछ लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मरुमंगल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 908

Ahí absente. Mahendra Kapoor के स्वर में फिल्म शोर का नगमा, गीत वर्मा मलिक का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: सर 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: आरबीआई कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: अलग अलग आइए इस फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुने। गीत आनंद बख्शी का और संगीत आर डी बर्मन का।

फिल्म चांदनी का गीत सुनिए, लता मंगेशकर के स्वरों में, गीत आनंद बख्शी का और संगीत शिव हरि का।

फिल्म संगीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे थे। प्रस्तुत है आपके फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम अनुरोध गीत। सबसे पहले सुनिए फिल्म राजा का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वरों में। गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का और पसंद आप सबकी। रायसिंह नगर से सोहनलाल जांगिड़, मंजू जांगिड़, सुनील, संजय। पतरोड़ा से मंगल जानागल, रोशनी जानागल, अंकुर इंदु और सुनील जानागल। गांव जाखौद राजस्थान से समुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक। निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राम बेगम, राबिया शेख, मुन्ना दानिश और आसिफ शेख। ओसिया से श्रीराम जानी, गर्वित जानी। छत्तीसगढ़ नरगोड़ा से कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी।

जोगेश पुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी तुलसी और दिशा गोस्वामी, नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा, उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन दीपांशु खोरवाल, 19 जीडी से गुरजेत औलख और उनके परिवार के सदस्य, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, राजू प्रजापत। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये नगमा।

पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप पारजू जाजोरिया और गुड्डू, रघुनाथपुरा से लालगिरी हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाणकर, निर्मला नवाणकर और विशाल, उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन, दीक्षा और कुश मूणत, गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास, संजय धूपल और उनके साथी, श्रीरामपुर से अशोक दल्ले, सविता दल्ले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जविका, सोनिका दल्ले, करणपुर से पवन कटारिया, समीर, शालू और उनके साथी, घमंडिया से जगदीश टूकिया, प्रमिला ठूकिया, ज्योति, शिवम, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु, दोहिती, ईवा, धारणिया, जालना से विजय पाटिल, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिट्टू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, आप सभी ने पसंद किया है फिल्म कुर्बानी का गीत कंचन और मनोहर दास के स्वरों, गीत इंदिवर का और संगीत कल्याण जी, आनंद जी का।

जलोन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया अर्थ आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। गजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज इमराना नाज। तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद सलमानी आलिया आयान बाबू। सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना अक्सा नाजिया इब्राहिम और सद्दाम। भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल कुणाल मेहरा। खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली। नोहर हनुमानगढ़ से नरेंद्र कुमार सुथार। श्रीगंगानगर से निकिराम बंसीलाल जॉनी धनराज और उनके साथी। जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा जतेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर करमजीत कौर। हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा अमन दिवांश और मदनलाल। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीटा रजत और मयंक भाटिया। आप सभी ने पसंद किया है ये सुदास का गाया नगमा, लिखा है पी पंकज ने, संगीत राजकमल का है और फिल्म का नाम है सावन को आने दो तो।

इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला, साधना, पवन पाटिल, सुमेध कुमार दामोदर। हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन दरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का। फाजिल्का पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारीक, भूपेंद्र पारीक। चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक सोनगरा। गंजडुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान अन्नू, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती विनीत, मिथिल नाचानी, बाबू भाई चांदीवाला। नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म हम का गीत। मोहम्मद अजीज और शोभना जोशी के स्वरों में गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, साबिता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। अररिया बिहार से फैज़ल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण। समतानगर काष्टी से लक्ष्मण जगताप, श्रिया शिंदे, मानसी शिंदे, निशांत जगताप। फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुलजराल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर और शुभदीप सिंह। मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश, नीति और बेनीपट्टी। मंदसौर से दशरथ से

श्रद्धा, हिमांशी, गुरमीत और सांची, बठिंडा से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया परमिंदर, सचनूर और मनिंदर, केसरी सिंहपुर से बिल्लू, सूद सुनीता, सूद चांदनी, आशीष, विश्वजीत, मोहन प्रजापति और उनके साथी, हिसार से राजकुमार डूडी, सौरभ कुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, फरुखाबाद से सुरेश चौरसिया, सरोज सुबोध सनौनी, संजू लल्ला, पवन गौड़, योगेंद्र नायक और उनके साथी, बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, इकबाल सितारा, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू साजदा रानी, हिना कौसर, आप सभी ने पसंद किया है फिल्म सुहाग का नगमा, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और शैलेंद्र सिंह ने, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अलिका डब्बाली से रूप सिंह लखोत्रा करमजीत सरबजीत रानी सोनू रजनी फाजिलका से सुभाष गुजारा बिमला इंदु पार्वती हिमांशु सरवन रिणवा हंसराज भाटिया मणिराम रंजीत राम किरोड़ीवाल सुरेंद्र भादु जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ से मोहम्मद अनवर अंसारी रवीना आफिया हिना शकीला जासमीन रजिया सुल्तान अख्तर सूरज मोहम्मद और जावेद अंसारी दुर्गा कॉलोनी हंसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी बब्बू डब्बू सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल इंदिरा मुकेश दिनेश अंशु बलदेव कटारिया चाईबासा झारखंड से शिवा गोप प्रेम कपिल शिवांश संगीता लिपि दीपाली गोप उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गभाणकर सरिता प्रणीता सिद्धांत अर्जुन वैशाली और शैलेश गवहाणकर केसी सिंहपुर से राजकुमार ठठई कमल ठठई मेगनलाल सुमानी बिंदा टेलर मुंशीराम महिंद्रा हीरालाल गजरा अशोक मित्तल और ताराचंद दायमा भोपालगढ़ राजस्थान से महेंद्र चिंपा कपिल ईशान और पूजा परिहार सादुल शहर से रामकुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित लक्की तानिया नारंग दतरेंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म कोयला का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वरों में, गीत इंदिवर का और संगीत राजेश रोशन का।

फिल्म निगाह का गीत सुनिए। मोहम्मद अजीज के स्वरों में गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और पसंद आप सबकी। अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू पवन, कुप साहिल, राघव, मुरारीलाल शर्मा, ममता, मीतू, कीनू, यहीं से मदनलाल शर्मा, पंकज कुमार, हर्ष, मनीष, महावीर लोहरा और उनके परिवार के सदस्य। सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, जोगीवाला श्री

गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका मनीष सहारण, मताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनवाला आरती गौरी ओम, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और उनके साथी, भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता विमल, आशा राधिका और उनके परिवार के सदस्य, हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरण, मुकेश तरण, रामचंद्र कपिलदेव, हिमानी जाखड़, बीकानेर से रानी झाम्ब, बिट्टू झाम्ब, नाईवाला से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, गांव कलाना हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश युद्धव, किरसन मायल हनुमान सहारण, कीड़ूराम जोईया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा, रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश ढाकड़, नायमा रंजूबाई, युवराज सिंह, शिवांगी धाकड़, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया, चक 58 NP रसिंह नगर से सुल्तान राम, सरस्वती देवी, हरवंश बनवारी, गोपीराम ललित, नरेंद्र मीनाक्षी, मोनाकी मोनिका, गीतांजलि और उनके साथी, गंजनूडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, कैफ अनवर, मास्टर लुबना आलिया, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, टेलर पूनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन। लीजिए सुनिए आपके पसंद का ये नगमा।

करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कालिया, 12 राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव प्रेमलता हिमानी हर्षिता अभिषेक, छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश, 14 पीएस से कुलदीप सिंह राजविंदर कौर संदीप सिंह जसकरण सिंह हरदीप सिंह मनराज बिरक और उनके साथी, 15 पीएस से सरबजीत सिंह जोसन सरबजीत कौर जोसन गुरमन सिंह आदर्शपाल रोबिन सिंह, बाबली से गजानन येले नवदीप विश्वदीप अशोक येले, पटियाला से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमत कौर मनु और उनके साथी, बठिंडा से अशोक ग्रोवर प्रवीण नीति प्रवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर, दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर और स्वीटी, फाजिल्का से ओम बगड़िया क्रियांश योगेश रजत बेबी गरिमा बगड़िया, नागपुर से कमल साहनी पिंकी अफजल मलिक निप्पी साहनी सुनीता साहनी, छत्तीसगढ़ बिलाईगढ़ से कौशल्या देवांगन रोशनलाल हेमलता डिंपल और पंकुड़, झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता किसु तासु अरुणव आनंद सत्यम, खोखरावाली से विनोद बरासा विशाल विकास रोशनी शगुन बरासा, भाटपारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र पणि नोकेलाल वर्मा, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान आयशा सभी हायनस और आहान, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगला राजेंद्र शाह। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म त्रिशूल का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वरों में।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब सुनिए विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्यम, जिसमें आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर लोकेश अनुपाणी, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप इनसे अपने प्रश्न फ़ोन करके और फेसबुक कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 01509-220-992 और 220-993।
1: क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे। सभी श्रोताओं को सुमन शेखावत का नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्यम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लाइव कार्यक्रम का विषय है मॉनसून में त्वचा रोगों से बचाव, और आज हमारे साथ हैं चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश अनुपाणी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में।
2: जी धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा डॉक्टर लोकेश अनुपाणी का नमस्कार।
1: जी डॉक्टर साहब, आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम आपसे बातचीत करेंगे और साथ ही हमारे श्रोताओं की कॉल्स भी हम लेंगे इसी विषय पर, और फेसबुक के माध्यम से कुछ कमेंट बॉक्स में जो सवाल आए हैं वो भी आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। हमारी टेलीफोन नंबर हम एक बार फिर बता देते हैं 220-992-220-993 और एसटीडी कोड है 01509। और अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। डॉक्टर साहब, इन दिनों त्वचा संबंधी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको ज्यादा नजर आ रही हों आपके रोगियों में?
2: जी बिल्कुल, ये जो बारिश का मौसम होता है मैडम, इसमें क्या है कि क्योंकि वातावरण में नमी उमस ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से कुछ एक इन्फेक्शंस जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, उसमें मुख्यतः बात करें तो दांत, जिसको हम गोल चक्रे वाली दांत बोलते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे फोड़े, फुंसियाँ, और कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे कि माता या आकड़ा काकड़ा बोलते हैं, जिसको हम मोलस्कम कंटेजियसम, मस्से, वार्ट्स, इस तरीके के इन्फेक्शन स्प्रेड होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा क्योंकि वातावरण में उमस नमी रहती है, तो उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से जो एलर्जी होती है वो भी कई पेशेंट्स में बढ़ जाती है, आम भाषा में जिसको हम अलाइयाँ भी

0: निकलते हैं, अलाइयाँ बढ़ जाती हैं
1: जी।
0: तीसरा बात करें तो बारिश के मौसम में कुछ लोगों में बाल भी ज़्यादा झड़ते हैं, डैंड्रफ की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मुख्यतः ये चीज़ें हैं कुछ जो इस मौसम में बढ़ जाते हैं
1: जी। कुछ लक्षण अगर आप बता दें, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, अगर मान लीजिए किसी हम ये कहें कि किसी भी व्यक्ति को अगर फंगल इन्फेक्शन शुरू हुआ है तो क्या लक्षण दिखाई दें?
0: देखो, फंगल इन्फेक्शन की जो शुरुआत होते हैं, पहले सबसे पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे ज़्यादा हो सकता है। जैसा मैंने बताया, गर्मी पसीने की वजह से होता है, तो अपने शरीर में ऐसी जगह जहाँ पर गर्मी पसीना ज़्यादा आने की संभावना रहती है, जैसे कि शरीर के कुछ फॉल्ट्स होते हैं, जैसे अपन बात करें बगलों में, जांघों में, उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में, ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पसीना ज़्यादा आता है, डर्ट ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उस वजह से वहाँ इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इन जगहों पर शुरुआती लक्षणों की बात करें तो रेड स्पॉट्स बनते हैं, गोल चक्कर वाली चक्कर से बनते हैं, और उनमें इचिंग होती है, खुजली आती है, और साइड्स में अपने को स्केल्स छिलके भी उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब ये जो मैंने साइड्स बताई, इनमें अगर रेड स्पॉट्स बन रहे हैं, गोल चक्करे बन रहे हैं और उनमें खुजली आ रही है, जलन हो रही है, तो ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं फंगल इन्फेक्शन के।
1: जी, तो अगर हम ये कहें कि किस तरह से हम बचें, डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, उससे पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
0: देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पूछी आपने मैडम। एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन को होने के बाद तो देखो पूरा कोर्स करना पड़ता है, अपने को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन हो नहीं इसके लिए इस मौसम में अपने को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने शरीर को सूखा रखना, गीला सीला नहीं रखना है। उसके लिए अपने को जैसे नहाने के बाद भी शरीर को पूरा सूती कपड़े से या टॉवल से सुखा के फिर कपड़े पहनने चाहिए। अपने इनर गारमेंट्स हैं जो वो कॉटन के होने चाहिए, ढीले सूती कपड़े पहनने चाहिए, टाइट कपड़े ऐसे मौसम में अवॉइड करने चाहिए, टाइट जीन्स टाइट लेगिंग्स नहीं पहननी चाहिए
1: जी।
0: इसके अलावा जो मुख्यतः है इसमें अपने को स्टेरॉइड्स वाली जो क्रीम्स हैं, कई पेशेंट्स जैसे जिनको खुजली हो जाती है तो स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स लगा लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगानी होती है। उनसे क्या होता है, एक बार इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है लेकिन बाद में पहले से ज़्यादा हो जाती है
1: जी।
0: तो मुख्यतः इन बातों का अपने को ध्यान रखना होता है
1: जी। हमें फेसबुक के माध्यम से ये कमेंट में जो एक संदेश मिला है, एक सवाल है, वो है सतीश अनेजा का चंडीगढ़ सिटी से। लिखते हैं कि ज़्यादा बारिश आने के बाद जब पसीना आता है तो हमारे जो जिस्म पर लाल लाल दाने से निकल आते हैं और फिर खारिश का सबब बन जाते हैं, तो पाउडर हम लगा लेते हैं इससे राहत पाने के लिए, तो लेकिन वो राहत चंद पल के लिए होती है। कि ऐसी कोई क्रीम आप बता सकते हैं या इससे छुटकारा किस तरह से हमें मिल सकता है, या ऐसा होने पर क्या हमें खून की जांच भी करवानी चाहिए?
0: देखिए, जो इन्होंने बताया सतीश जी ने, इसमें देखो अपने को डायग्नोसिस करना पड़ेगा पहले कि क्या हुआ है। बारिश के आने बाद गोल चक्रे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा या वो एलर्जी की वजह से जैसे मैंने बताया अलाइयाँ गमोरियाँ भी हो जाती है इस बारिश के मौसम में
1: जी।
0: तो दोनों का ट्रीटमेंट लाइन अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि अपन एक कॉमन क्रीम लगाएं और दोनों चीज़ें सही हो जाएं। अगर वो फंगल इन्फेक्शन है तो उसका प्रॉपरली डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मार्केट में जो अवेलेबल ट्यूब्स होती हैं, जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे बेटनोवेट, पेंड्रम, फोड्रम, कोसवेट जी, लोबेट जीएम, ज़्यादातर लोग इनिशियली इन ट्यूब्स को लगा लेते हैं। अगर वो फंगल इन्फेक्शन है तो एक बार इंस्टेंट रिलीफ भी मिल जाता है, इसीलिए इन ट्यूब्स की पॉपुलरिटी बढ़ी हुई है इन दिनों में
1: जी।
0: लेकिन अल्टीमेटली वो अपने को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। एक बार इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, बाद में पहले से भी ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। स्टेरॉइड्स वाली क्रीम एक बार कैसी भी बीमारी हो उसको दबा देती हैं, लेकिन बाद में वो इन्फेक्शन पहले से भी ज़्यादा हो जाता है। और कुछ लोग इस ट्यूब्स को लगातार महीने भर तक या डेढ़ महीने तक लगाते रहते हैं तो फिर स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट सामने आना चालू हो जाते हैं। जैसे कई लोगों ने महसूस किया होगा कि ट्यूब लगाने से उनकी जांघों के बीच की चमड़ी पतली हो जाती है
1: जी,
0: जिसे हम स्ट्राया बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड स्ट्राया, यानी कि ज़्यादा स्टेरॉइड्स लगाने की वजह से जो चमड़ी की ऊपर की जो लेयर होती है वो पतली हो जाती है
1: जी।
0: कई लोग इस पर भी नहीं रुकते और लगाए रखते हैं तो उससे फिर वो घाव बन जाते हैं परमानेंटली, वो ठीक करना हम डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरी श्रोताओं को ये राय रहेगी कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शंस के, बिना डॉक्टर की सलाह के अपने सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन से या मेडिकल स्टोर से स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करें
1: जी।
0: और अगर उनको फंगस है तो एक बार कंसल्ट करके दिखा

0: और पूरा ट्रीटमेंट, पूरा जो उसका ड्यू कोर्स होता है, जो अपने को पूरा 2-3 महीने का कोर्स करना होता है, वो करना चाहिए।
1: जी
0: जी
1: सीता मऊ रोड नाटाराम मंदसौर मध्य प्रदेश से ये हमारे श्रोता हैं दशरथ सेन। ये लिखते हैं कि आपने ये जो विषय रखा है अच्छा है, और इसी बात के लिए इन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी जो क्रीम्स मिलती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये इनका सवाल है कि सिर्फ पानी से मुंह धोने के बाद जैसे फिटकरी अगर लगा ली जाए तो इससे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा?
0: देखो, फिटकरी को हम मेडिकली एक चीज़ में प्रमोट करते हैं, वो है जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है हाथ पैरों पे, तो हम फिटकरी वाले पानी का टकोर करने की सलाह देते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा मुंह धोने के लिए, तो क्योंकि ये केमिकल ही है एक तरीके से, तो मैं सामान्यतः रूटीन में सलाह नहीं दूंगा फिटकरी के पानी से मुंह धोने की। उसके बजाय आप नॉर्मली कोई जेंटल माइल्ड सोप या फिर माइल्ड क्लींजर या फेशियल से फेस वॉश से आप अपना मुंह धो सकते हैं, बजाय फिटकरी के डायरेक्ट।
1: जी
0: हाँ, क्योंकि अपने हाथ पैरों की चमड़ी थोड़ा टाइट होती है, मोटी होती है आम स्किन की तुलना में, तो वहाँ पे जब पसीना ज़्यादा आता है तो हम उसमें फिटकरी का टकोर करने की सलाह देते हैं।
1: जी एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, कॉल लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार, सुमन शेखावत जी, साबुल
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: शहर से रामकुमार इवाड़ बात कर रहा हूँ।
1: जी रामकुमार जी, क्या सवाल है डॉक्टर साहब से आपका? डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं।
2: बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब हमारे सादुल शहर से वाकिफ है, लोकेश वर्मा,
0: नमस्कार रामकुमार
2: लोकेश
0: जी।
1: अनुपाणी
2: अनुपाणी
1: जी
2: साहब,
1: हैं।
2: नमस्कार।
1: जी
0: नमस्कार रामकुमार जी।
2: और डॉक्टर साहब ठीक हो आप?
0: एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी, आप
2: बहुत सारी
0: बताइए।
2: शुभकामनाएं आपको।
0: जी धन्यवाद।
2: सर एक तो मेरे किया है, पिछले दिनों कोई फुंसी वगैरह हुई थी, उसमें मैं क्या है कि नीम के पानी से नहाया था 2-4 दिनों लगातार,
0: जी,
2: वहां पर कालापन आ गया है।
0: जी।
2: और दूसरी समस्या ये है कि सिर में खुजली आती है, सफेद बाल हो रहे हैं।
0: जी, ये 3 अलग-अलग समस्याएं हो रही हैं रामकुमार जी आपकी। पहले मैं जानना चाहूंगा कि उस खुजली जो आप फुंसी बता रहे हैं, उसमें कोई दर्द वगैरह तो नहीं है आपको?
2: वो जनेऊ निकली थी, जनेऊ।
0: अच्छा, वो फिर अलग चीज हो जाती है। हाँ, जनेऊ का क्या है, दर्द काफी समय तक रह जाता है पेशेंट्स में,
2: जी
0: तो
2: बिल्कुल।
0: जी, तो उसमें थोड़ा सा अपने को कुछ नर्व्स को मजबूत बनाने वाली मेडिसिन्स लेनी होती है, अगर जिनको जनेऊ का दर्द लंबे समय तक रह जाता है, उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी रही बात आपके सिर में खुजली, तो वो ये जो बारिश का मौसम होता है, इसमें अपने थोड़ा डैंड्रफ भी बढ़ जाता है, पसीना ज़्यादा आता है, धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू का यूज़ करिए, माइल्ड शैम्पू, पैराफिन सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं आराम मिला तो कुछ अपने मेडिसिंस रहती हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स और टॉपिकल सॉल्यूशंस रहते हैं, वो लगा सकते हैं आप। जी
1: जी रामकुमार जी,
2: डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाहूँ। मैं सरसों का जो तेल लगाता हूँ तो बाल सफेद जल्दी हो जाते हैं।
0: देखो, सफ़ेद बाल होना एक्चुअली जेनेटिक्स पे और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, खान पान रहन सहन, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। ये एक तरीके से एजिंग इफेक्ट है, किसी को 2-4 साल पहले आ जाता है, किसी को थोड़ा लेट आता है। बाकी आपका कहना कि सरसों के तेल लगाने से हो जाता है, ये सही नहीं है, क्योंकि सरसों के तेल से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है रामकुमार जी। तो अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन, बायोटिन प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, उसके लिए अगर ज़्यादा सफ़ेद बाल उम्र से थोड़ा पहले आ रहे हैं, सप्लीमेंट्स लीजिए कुछ।
1: जी रामकुमार जी, आपने कॉल की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी श्रोताओं, बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोतों, गीत आपने सुना और कार्यक्रम स्वास्थ्यम में फिर से आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। डॉक्टर साहब, एक जो सवाल हमें मिला है फेसबुक के माध्यम से, श्याम मिड्ढा जी का संगरिया से, लिखते हैं कि कोई ऐसा फेस वॉश या साबुन सुझाएं जिससे हमारी त्वचा का पीएच स्तर संतुलित रहे।
1: जी, इसमें ऐसा होता है, देखिए, जो अपना फेस अलग अलग तरीके से, किसी का ड्राई होता है, किसी का ऑयली होता है, किसी का कॉम्बिनेशन वाला होता है, तो जिनका ऑयली फेस होता है उनको हम फॉर्मिंग फेस वॉश सजेस्ट करते हैं यूजली, क्योंकि उनके फेस ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है तो फॉर्म जो बनता है वो उस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उनका ऑयलनेस कम हो जाती है फेस
0: जी,
1: की
0: जी.
1: और जिनका फेस ड्राई होता है, सेंसिटिव स्किन होती है जिनकी, उनको फॉर्मिंग फेस वॉश की बजाय क्लींजर्स यूज करने चाहिए, माइल्ड क्लींजर्स जिनको हम बोलते हैं। वो केमिकल फ्री होते हैं, मतलब उनमें सल्फेट पैराबिन नहीं होता है, जो कि फेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो श्याम मिड्ढा जी को मैं बताना चाहूँगा, अगर उनका फेस ड्राई है तो वो माइल्ड क्लींजर्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, वो कोई भी अच्छे ब्रांड्स का यूज़ कर सकते हैं, और अगर ऑयली फेस है तो आप फॉर्मिंग फेस वॉश आते हैं, सैलिसिलिक एसिड वाले, ग्लाइकोलिक एसिड वाले, तो वो यूज कर सकते हैं।
0: जी, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: सुमन सिखाव जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: और कार्यक्रम प्रमुख नवीन सिसोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा प्रोग्राम आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी, आप बोल कौन रहे हैं?
2: विनोद बारा से निवेदन कर रहा हूँ।
0: जी विनोद जी, क्या सवाल है आज के विषय पर? धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े।
2: हाँ जी, तो मेरे एक छोटा लड़का है
0: जी,
2: उसकी त्वचा पर खुजली होती रहती है। तो 30 मीटर उसका गंगानगर से चल रहा है, तो फिलहाल तो वो सही है
0: जी,
2: पर वो शरीर पर जो निशान से रह गए अभी तक, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, वो निशान अब साफ नहीं हो रहे
0: जी। डॉक्टर साहब,
1: हाँ जी, ये बहुत आम समस्या रहती है, कोई भी अपने शरीर पर खुजली होती है, उसका खुजली वाला पार्ट तो जल्दी ठीक हो जाता है, 2-3 महीने अपन ट्रीटमेंट लेते हैं, पर उसके बाद हम उसको मेडिकल लैंग्वेज में पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, जिसको आप निशान कह रहे हैं, वो रह जाते हैं, वो थोड़ा सा जिद्दी किस्म के होते हैं विनोद जी, वो धीरे धीरे वक्त के अनुसार भी कुछ कम होते रहते हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन रहती है, आप जिन डॉक्टर साहब से भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप उनसे एक

0: डिस्कस करेंगे, तो वो कुछ ऐसी मेडिसिंस होती हैं जो निशानों को, ट्यूब्स, क्रीम्स आती हैं क्रीम फॉर्म में, जो निशानों को धीरे धीरे कम कर देती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, निशान धीरे धीरे जाते हैं। तो आप अपने अगली बार जब डॉक्टर साहब के पास जाएं तो उनको बता दीजिएगा कि खुजली तो सही हो गई है, अब निशान कम करने वाली मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए।
1: जी विनोद जी, आपको सलाह मिल गई डॉक्टर साहब की, शुक्रिया आपका।
2: जी धन्यवाद बहन जी।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने अपने बच्चे की एक समस्या हम तक पहुंचाई, तो खासकर इन दिनों में इस बारिश के मौसम में जो बच्चों में फोड़े फुंसियां जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, क्या कारण है?
0: बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों की स्किन थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा होती है, दूसरा बच्चों में इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, पूरी तरीके से जो इम्यूनिटी है वो अभी डेवलप नहीं हुई हुई होती है, तो इसलिए बच्चे सेंसिटिव होते हैं इस मौसम में। मैंने जैसा बताया, कोई भी संक्रामक रोग है उसके स्प्रेडेबिलिटी यानी कि उसके फैलने की संभावना बढ़ जाती है
1: जी।
0: तो इसके लिए बच्चों को थोड़ा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने को, डेली नहलाएं, वही मैं जो मैंने बताया, साबुन से नहाने के बाद शरीर को पूरा सुखाएं, फिर कपड़े पहने, सूती इनरवियर्स भी पहने, साफ सफाई का ध्यान रखें, नाखून छोटे रखें। एक्चुअली क्या है कि बच्चों के नाखून बड़े होते हैं, उनमें गंदगी होती है, जैसे ही खुजली वगैरह कहीं होती है वो खुजली करते हैं, वो नाखून वहाँ छुप जाता है और उसके बाद फिर वहाँ फोड़ा फुंसी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है
1: जी।
0: तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। डाइट अच्छे रखें बच्चों की, संतुलित आहार दें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाएं ताकि उनकी इम्यूनिटी संतुलित आहार की वजह से बनी रहे, और साफ सफाई मेन इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है
1: जी। अगर हम ग्रामीण इलाके की बात करें तो वहां पर जैसे बच्चों को हम बारिश के पानी में नहाते हुए देखते हैं तो ये भी एलर्जी का कारण बन सकता है?
0: नहीं, देखो बारिश के पानी में नहाना कोई दिक्कत नहीं है, नहाएं, नहाने के बाद जैसे अपन उसके बाद फिर शॉवर जरूर लें, बारिश के पानी में नहाने के बाद नॉर्मल पानी से शॉवर लेके पूरा उसको पैड ड्राई करके पूरा पोंछ के फिर कपड़े पहने तो कोई दिक्कत नहीं है
1: जी।
0: जी
1: और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं उनको जब डायपर पहनाया जाता है तो एक जो समस्या बच्चों में रहती है कि एक सूजन आ जाती है और वहाँ पर बच्चों में लाल जो है एक त्वचा उनकी हो जाती है, तो ये किस वजह से होती है? और दूसरा ये कि आप पेरेंट्स को इसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे?
0: जी, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में डायपर रैश भी आम भाषा में कहते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में इंटरट्रैगो बोलते हैं। इसमें वही जो बच्चों की स्किन सेंसिटिव है, इम्यूनिटी डेवलप नहीं है, आपने उसको डायपर पहनाए रखा, लगातार गीला रहता है डायपर, मॉइस्चर नमी रहती है, इस वजह से स्किन फ्रिक्शन की वजह से प्लस मॉइस्चर की नमी से रेडनेस, लालिमा आ जाती है और फिर वो लालिमा में इचिंग, जलन होना, ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो इसमें राय रहेगी कि एक तो डायपर जब जरूरत हो तभी पहनाएं, बीच बीच में डायपर फ्री टाइम पीरियड देते रहें बच्चे को, 2-3 घंटे बीच में डायपर फ्री भी रखें, और डायपर पहनाने से पहले कुछ मॉइस्चराइजर बेस्ड ऐसी चीज लगा लें जिससे स्किन का बैरियर मेंटेन रहे। जैसे मार्केट में कुछ स्किन बैरियर रिपेयर क्रीम्स आती हैं, या फिर आप प्लेन मॉइस्चराइजर या नारियल का तेल लगा के अगर पहनाएंगे तो फिर इतना समस्या नहीं रहेगी
1: जी। कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, हेलो।
3: नमस्कार सुमन जी।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: सुभाष गुजारा बोल रहा हूँ, गांव हीरा वाली फाजिलका पंजाब से।
1: जी सुभाष जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से?
3: तो डॉक्टर साहब, आप पहले तो सूरतगढ़ की तरफ से जो ये पहल हुई है ना, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा ये हमें
1: जी। शुक्रिया शुक्रिया जी।
3: और मेरा ये सवाल था, एक तो ना इन दिनों में जैसे बारिश के पानी से ना चमड़ी के जैसे छोटे छोटे बूंदों तरह चमड़ी उतर रही है हाथों की
1: जी,
3: और कुछ मेरा काम भी बाइक रिपेयर का है, पेट्रोल वगैरह का काम करते हैं, उससे भी एक
0: जी जी ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है। जैसा आप बता रहे हैं आपके पेट्रोल बाइक का काम है, तो ये एक तरीके से केमिकल्स ही होते हैं और केमिकल्स के कॉन्टेक्ट्स में आने से अपने हाथ की एलर्जी बढ़ जाती है, जो स्किन बैरियर है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, इस वजह से वो एलर्जी बढ़ जाती है। तो इसमें अपने को देखो प्रोटेक्शन तो रखनी ही है आपको सुभाष जी, जब भी आप केमिकल का कोई काम करें तो दस्ताने पहन के काम कर सकते हैं, या फिर एक कोई मॉइस्चराइजर बेस्ड क्रीम लगा के ताकि वो ट्रांसपेरेंट बैरियर का काम करे और आपके केमिकल्स में डायरेक्ट आपके हाथ को कॉन्टेक्ट में नहीं आने दे, तो कुछ ऐसा बचाव तो रखना ही है। और होने के बाद देखो इसमें आप किसी भी डॉक्टर से सलाह लेंगे तो इसमें अपन स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम लगाते हैं तो वो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन दोबारा नहीं हो इसके लिए आपको

0: बचाव तो रखना ही पड़ेगा सुभाष जी।
1: जी सुभाष जी, कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, इस विषय पर बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस गीत के बाद।

0: श्रोताओं, इस समय कार्यक्रम आप सुन रहे हैं स्वास्थ्यम, और अब लेते हैं हमारे इन श्रोता की कॉल। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार, मैं तहसील भादरागांव अनूपचंद गजानन शर्मा बोलूं। मैडम
0: जी, गजानन जी, क्या सवाल है आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब से आपका?
1: मेरा जी, पहले तो गले के नीचे थोड़ी थोड़ी खुनशियां होती थी।
0: हाँ जी,
1: वो दवाई लेने से वो तो ठीक हो गई, लेकिन अब 4-5 साल से हाथ पैर के थोड़े थोड़े छाले पड़ जाते हैं, वो फूट जाते हैं, फिर दो ठीक हो जाते हैं, फिर आगे और बन जाते हैं। सर
0: जी, डॉक्टर साहब,
2: ये आपको इसमें खुजली भी होती है क्या गजानन जी?
1: हाँ, खुजली आती है सर।
2: अच्छा, आप काम क्या करते हैं गजानन जी?
1: काम तो रंग पेंटिंग का करता हूँ, वैसे खेती का भी करता हूँ सर।
2: हाँ, तो ये जो अपने प्रोफेशन होते हैं, जैसे किसानी में अपने धूल मिट्टी के संपर्क में ज्यादा आते हैं, तो कई लोगों को धूल मिट्टी से, सीमेंट से, इवन कई लेडीज को साबुन सरप से एलर्जी होती है ना, तो इसको हम आम मेडिकल भाषा में एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं, यानी कि किसी

0: चीज के संपर्क में आने से होने वाली एलर्जी। तो कोई भी एलर्जी होती है गजानन जी, उसको अपन मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, स्टेरॉइड्स युक्त कुछ क्रीम्स लगाते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार, तो ठीक तो हो जाती है। पर अगर अपन चाहते
1: वापिस हो
0: हैं
1: जाती है सर।
0: हाँ बार बार नहीं हो, तो इसके लिए बचाव रखना पड़ेगा अपने को। जिस चीज से आपको ये खुद ढूंढना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपका हाथ किस चीज में ज्यादा डलता है, तो उस हिसाब से फिर आप उसका प्रोटेक्शन के तरीके ढूंढिए। यानी कि जब
1: अच्छा
0: आप वो काम
1: कलर में
0: कर
1: क्या डलता है सर? डॉक्टर
0: हाँ
1: ने बोला कलर आप कलर बोल दो
0: बिल्कुल
1: आपके।
0: सही बोला डॉक्टर साहब ने, कलर छोड़ना तो अब देखो अपना काम भी नहीं बदला जा सकता जल्दी से, लेकिन उसके बचाव के
1: अच्छा
0: अन्य
1: सर
0: तरीके अपनाए
1: सर
0: जा सकते हैं। जैसे आप
1: हाँ हाँ
0: ग्लव्स पहन
1: जी
0: के, दस्ताने पहन के काम कर सकते हैं, और
1: हाँ
0: कोई
1: जी
0: कोई मॉइस्चराइजर बेस्ड क्रीम आप रूटीन में लगाए रखोगे, मतलब इमोलियंट बेस्ड, तो वो एक
1: हाँ
0: ट्रांसपेरेंट
1: जी
0: बैरियर का काम करती है। बाय द वे आप किसी केमिकल के संपर्क में आ भी जाते हैं तो वो पेनिट्रेट नहीं, यानी उसको अंदर नहीं जाने देती है, तो बचाव
1: अच्छा
0: तो रखना ही है गजानन जी।
1: जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक जो सवाल हमें मिला है फेसबुक के माध्यम से, आप हैं जी के परमार गांधीनगर गुजरात से, और लिखते हैं कि बारिश के मौसम में त्वचा की संभाल कैसे करें?
0: बिल्कुल नटशेल में बताऊं तो तीन चार मुख्य बातें हैं जो अपने एक दो तो डिस्कस कर चुके हैं। शरीर को सूखा रखना है, ड्राई रखना है। पसीने को देखो आने से नहीं रोक सकते इस मौसम में, लेकिन पहुंचना अपने हाथ में होता है। एक सूती कपड़ा रखें, गमछा रखें, तौलिया रखें अपने पास। पसीना 2 बार आए 2 बार पहुंचिए, 10 बार आए 10 बार पहुंचना है। नंबर 2, अपना साबुन तौलिया कपड़े अलग रखने हैं, क्योंकि बारिश में ये जो मैंने बताया इन्फेक्शन सारे संक्रामक होते हैं, एक से दूसरे में फैलने वाले होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो फंगल हो। तो अपने को अपना साबुन कपड़े तौलिया सब सेपरेट रखना है। तीसरी चीज जो मैंने बताई, स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करना है बिना डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि आज के टाइम में हम सबसे ज्यादा हम यही फेस कर रहे हैं।
1: जी
0: हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं स्टेरॉइड अब्यूज होकर करके, मेडिकल से ट्यूबवेल लगाई, एक बार रिलीफ मिल गया 2 4 दिन के लिए, बाद में पहले से भी ज्यादा हो गई, और फिर लगाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में आते हैं जब हमारे भी हाथ खड़े हो जाते हैं, मतलब
1: जी
0: हाँ चमड़ी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब पतली हो गई, थिन हो गई, तो उसको हम लोग
1: बिल्कुल
0: भी फिर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी अवेयर करना, आप लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी को अवेयर करना चाहूंगा कि इस तरीके से अपने स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स का इस्तेमाल कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करें।
1: जी श्रोताओं तक ये बात पहुंच रही है, कॉल लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो
2: हाँ जी नमस्कार सुमन जी,
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
2: बिल्लू सूद बोल रहा हूँ जी, मंडी के शेरपुर से।
1: जी बिल्लू जी, क्या सवाल है?
2: सवाल तो जी जैसे अपने गोडे होते हैं ना, गोडे,
1: घुटने।
2: हाँ घुटने, घुटने का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, पोला पोला पिली है जिनको बोलते हैं, उनके ऊपर खारिश आती है कई बार, इतनी आती है तो जैसे ऐसे लग काट फेंकने इनको
1: ओहो
2: जी।
1: जी
2: तो फिर मैं सरसों का तेल लगाता हूँ तो फिर कुछ आराम तो जरूर मिलता है,
0: जी
2: लेकिन
0: बिल्लू
2: ये
0: जी
2: समस्या 3 4 साल से है जी।
0: हाँ, ये बेसिकली आपको एलर्जी हो सकती है, जो घुटनों के नीचे अपने जो काफ मसल्स होती हैं वहाँ पे अपने पेन, वहाँ पे आपको खुजली होती है। एक्चुअली क्या है, ये इस जगह पे पसीना, डस्ट पार्टिकल्स और धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आने से एलर्जी उत्पन्न हो जाती है अपने इस
2: हाँ
0: टांगों
2: जी
0: वाले
2: हाँ
0: एरिया में। तो नारियल
2: जी
0: का तेल लगाओगे वो प्रिवेंटिव रूप में सही है बचाव के लिए, लेकिन होने के बाद अपने को थोड़ा सा आप डॉक्टर से सलाह लेके कोई स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम लगाओगे, या फिर चेक करवा के वो अपने हिसाब से कोई एंटी हिस्टामिनिक्स मेडिसिन्स देंगे, तो आपको ठीक तो हो जाएगी। बचाव के लिए आप नारियल का तेल लगा सकते हैं रूटीन में,
2: जी
0: कोई
2: सर वो
0: दिक्कत नहीं।
2: हाँ ठीक है, वो भी लगाते हैं कभी कभार, लेकिन उससे आराम जरूर मिलता है, लेकिन ये समस्या
0: हाँ,
2: हल नहीं हो रही
0: समस्या
2: है
0: के लिए फिर आपको थोड़ा धूल मिट्टी से, पसीने से बचाव रखना है, सूती कपड़े पहनने हैं
2: जी। सर
0: ताकि।
2: गर्दन ना, जैसे गर्दन होती है अपनी,
0: हाँ जी हाँ जी
2: गर्दन के खिड़की बनी हुई है कई बार, वो जैसे ट्यूब वगैरह लगाते हैं, नारियल के तेल लगाते हैं, वो ठीक हो जाती है, लेकिन वो उभरती है, क्या बात उसके लिए?
1: जी बिल्लू
2: हाँ
1: जी, अभी डॉक्टर साहब ने इस बारे में वैसे जवाब दे दिया है, फिर भी
2: जी
0: हाँ वही, मतलब पसीने को आने से रोकें, आप गीला नहीं रखें, आप गर्दन ऐसे ऐसा एरिया अपनी बॉडी का जहाँ पसीना, डस्ट, धूप तीनों का एक्सपोजर होता है,
2: ठीक
0: तो
2: है सर,
0: इसको
2: नमस्कार
0: बचाव रखना है अपने को इन तीनों चीज़ों से, है
2: डॉक्टर
0: ना
2: साहब को, प्यार भरी नमस्कार
0: जी।
2: जी।
0: धन्यवाद बिल्लू
1: जी
0: जी।
1: शुक्रिया शुक्रिया बिल्लू जी। डॉक्टर साहब जैसे कि गीले कपड़े, जैसे इसी विषय पर हमारी बात हो रही है कि नमी जो है वो शरीर पर नहीं रहनी चाहिए, सूखा होना चाहिए, तो कहीं बाहर से आए बारिश के मौसम में, कपड़े थोड़े गीले हैं, कुछ जूते कहीं गीले हो गए, उसके बाद में उनको अगर ना सुखाया जाए और नम उस अवस्था में उसको पहन लिया जाए, तो किस तरह की समस्याएं और हो सकती हैं?
0: जी, सबसे मुख्य तो फंगल इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी, जैसा हम डिस्कस किया
1: जी,
0: है ना, जूते आपके भीगे हुए हैं तो पैरों के जो उंगलियों के

0: बीच वाली जगह होती है वहां पे टीनिया पेडिस बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है,
1: जी
0: और वही गोल चक्कर वाली दाद हो सकती है आपकी बॉडी पर। और उसके अलावा पसीने की वजह से कई लोग, पसीने के बाद अगर थोड़ा उमस में आप अपन चले गए बारिश के भीगने के बाद उमस वाले एटमोसफेयर पे या धूप में, तो फिर वो पसीने की वजह से एलर्जी वाले दाने हो जाते हैं,
1: जी
0: उनमें भी खुजली आती है, ऐसा लगता है सुइयां चुभ रही हैं, टांटे चुभ रहे हैं। कई पेशेंट्स की कंप्लेन होती है कि शरीर के अंदर दाह सी लग रही है,
1: जी
0: टांटे सुइयां सी चुभ रही हैं, तो वो सारा हम उसको स्वेट डर्माटाइटिस बोलते हैं, पसीने की वजह से एलर्जी। तो ये भी एक संभावना बनती है।
1: बिल्कुल
0: इसके अलावा अलाइयाँ निकल जाती हैं, है ना, प्रिकली हीट बोलते हैं हम उसको। तो ये सारे मुख्यतः यही।
1: जी। कॉल लेते हैं। हेलो,
2: नमस्ते,
1: नमस्कार।
2: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
1: कहाँ से? अच्छा,
2: बिहार का वैशाली जिला है।
1: वैशाली जिले से बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं
2: डॉक्टर सितारे
1: जी? स्वागत है सितारे
2: जी।
1: साहब आपका, क्या सवाल है?
2: रिंग वर्म हो जाता है हर साल बरसात के समय में।
1: अच्छा, रिंग वॉर्म हो जाते हैं
0: जी बिल्कुल। डॉक्टर सितारे जी, ये बिल्कुल वही जिसकी अपन बात कर रहे हैं इतनी देर से, फंगल इन्फेक्शन ही होता है। तो अपने को गीले सीलेपन से बचाव रखना है, वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सूती कपड़े पहनने हैं, साबुन तौलिया कपड़ा अपना अलग रखना है, और स्टीरोइड्स वाली क्रीम्स नहीं लगानी। ये चीजें, तीन चार चीजें तो सब श्रोताओं को रट जानी चाहिए।
1: जी सही है
2: इतनी
1: जी
2: सुंदर सभा के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान आप लोगों को निरोग रखे।
1: जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम स्वास्थ्य में सब श्रोताओं का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉमन सवाल है कि, और ख़ास तौर से महिलाओं की तरफ से, कि इस जो मौसम में स्किन केयर हम कैसे करें, किन स्टेप्स में?
1: जी बिल्कुल, देखिए हर मौसम में स्किन केयर ज़रूरी होती है। आपका डे केयर स्किन केयर रूटीन एक फिक्स होना चाहिए।

0: उसको रिमूव कर सकें अपन। और फेस वॉश करने के बाद आप एक मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं फेस में, फेस पर, और एक सनस्क्रीन एक हर स्किन केयर रूटीन का हिस्सा होना ही चाहिए आज के दिन में, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं जो भी हमारे फेस पे, चाहे वो डलनेस है, चाहे वो पिगमेंटेशन है, चाहे वो प्री मैच्योर एजिंग इफेक्ट है, झुर्रियाँ बढ़ रही हैं उम्र से पहले, ये सारे जो यूवी रेज की वजह से होता है
1: जी, अगर तेज धूप के संपर्क में हम आते हैं तो उस
0: जी यूवी रेज, एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेज जिसको हम बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें, वो उससे बचाने के लिए अपने, क्योंकि ये स्किन को अपने मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस करने करते हैं, तो उस वजह से स्किन जल्दी पिगमेंटेड हो जाती है आपकी, झुर्रियाँ आ जाती हैं, एजिंग इफेक्ट पहले से ज़्यादा दिखने लग जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सनस्क्रीन डे केयर रूटीन का हिस्सा होना चाहिए आपका। कोई भी सनस्क्रीन कितने भी SPF की हो, 2-3 घंटे तक इफेक्टिव रहती है। तो ज़्यादातर लोग सनस्क्रीन लगाते तो हैं पर 1 या 2 बार लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बार ही लगाते हैं, कई लोग ज़्यादा 2 बार लगाते हैं, लेकिन उससे पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल नहीं पाता है। तो हम जो एडवाइस देते हैं पेशेंट्स को कि सनस्क्रीन कम से कम 3 से 4 बार लगनी चाहिए, हर 2 से 3 घंटे बाद आपको रिपीट कर लेनी चाहिए होती है, वो एक आइडियली सही रहता है मतलब। और जब जैसे आप आपने कोई स्विमिंग पूल में गए या बाहर पसीने की वजह से हो, तो उसको तुरंत फिर रीअप्लाई कर लेना होता है। ऐसा नहीं सोचना होता है कि हम बाहर अंदर जाएं तभी सनस्क्रीन लगाएं। ज्यादातर लोगों में ये मिथ रहता है कि हम बाहर जाएं, आउटडोर एक्टिविटीज करें तभी सनस्क्रीन लगाएं। घर पे रहना है तो भी यूवी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, क्योंकि यूवी रेज देखो ये बल्ब, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इवन आपके किचन की आग से जो लेडीज काम करती है उनसे भी निकलती है कहीं ना कहीं, तो वो नुकसान पहुंचाती है। तो घर पे रहें तो भी सनस्क्रीन लगानी होती है, बाहर जाएं तो लगानी है ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कोटिंग और फेस पे मास्क या कवर कर लेना चाहिए होता है
1: जी।
0: और नाइट में आपको स्किन केयर में एक माइल्ड कोई एक्सफोलिएटिव एजेंट जैसे रेटिनोल सीरम्स आते हैं, है ना, या कोई विटामिन सी बेस्ड, वो फेस के अकॉर्डिंग होता है वो सारा, आप जो भी आप अपने डॉक्टर से राय लेंगे तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे। नाइट में एक सीरम हो गया, डे में आपका फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन। सनस्क्रीन दिन में 3 से 4 बार, और मॉइस्चराइजर और फेस वॉश आप 2 बार कर लें तो सफिशियंट रहेगा, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में।
1: जी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। इसके अलावा जैसे एक सवाल और होता है कि क्या खान पान का प्रभाव भी पड़ता है?
0: जी बिल्कुल, संतुलित आहार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने फेस के लिए, अपनी स्किन की हेल्थ के लिए भी। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स लेनी चाहिए अपने को, अगर अपन चाहते हैं कि अपने फेस पे ग्लो बना रहे, तो विटामिन ई, विटामिन सी जो कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इवन ग्लूटाथियोन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये ज़्यादातर ये जो मैं बता रहा हूँ मॉलिक्यूल्स, ये अपने को फ्रेश फ्रूट्स में, जूसेस में, सीजनल फ्रूट्स लें सीजन के हिसाब से कंज्यूम करें, जैसे नारंगी, मौसमी, आंवला, ऐसे फ्रूट्स में ये विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है, और ये अपने ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो अपना फेस ग्लो करेगा, स्किन अच्छी रहेगी, हेल्दी स्किन रहेगी।
1: जी, नींबू पानी।
0: जी बिल्कुल, नींबू पानी, नारंगी, मौसमी, ये सब काफी, और सीजनल फ्रूट्स का भरपूर उपयोग करें
1: जी।
0: इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे मैंने बताया बायोटिन प्रोटीन, जो कि नेल्स और बालों की हेल्थ के लिए बायोटिन प्रोटीन मस्ट हैव कंपोनेंट्स रहते हैं, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं अपने बालों के लिए, नेल्स के लिए। अगर अपने को नेल्स बाल अच्छे चाहिए तो फिर अपने को बायोटिन प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा लेनी है
1: जी।
0: प्रोटीन में अपन दूध, दही, सोयाबीन, दालें, ये ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं
1: जी। जी, कॉलर जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो,
2: नमस्कार जी। शिखाव जी
1: नमस्कार,
2: मैं सिरसा भाईया से बोल रहा हूँ जी।
1: जी
2: भागीरथ आईतान।
1: जी भागीरथ जी, स्वागत है आपका जी, बताएं क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से।
2: सर जी मेरा ये सवाल है जी, जब भी मैं दूसरा हूँ ना, सेव करता हूँ,
0: हाँ जी,
2: तो मेरे मुंह पर सेव करने के बाद में खारिश आने लगी जाती है
0: जी। जी
2: 10 सालों से ये दिक्कत है सर
0: जी, ये
2: इसलिए मैं बार बार वो ब्लेड अलग अलग यूज करता हूँ।
0: भागीरथ जी, आपके सिर में डैंड्रफ रहता है क्या? सिर में ऐसे पपड़ी सी या छिलके से उतरते हैं क्या?
2: नहीं सर।
0: अच्छा, जो आपने ये कंप्लेन बताई है मुख्यतः सिबोरिक डर्मेटाइटिस में, ज़्यादातर पेशेंट्स हमसे, एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है जिसको हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब जैसे ही शेव करते हैं उसके बाद लाल दाने बन जाते हैं, खुजली आने लगती है उसमें, तो उसमें कहीं ना कहीं एक डैंड्रफ भी अपने आप में एक बड़ी वजह होती है, तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना चाहिए। दाढ़ी रखते हैं आप या क्लीन शेव ही रहते हैं? मतलब बड़ी तो नहीं रखते दाढ़ी?

0: नहीं नहीं सर।
1: हाँ, तो कईयों को ब्लेड से एलर्जी हो सकती है, मतलब इवन शेविंग फॉर्म से कई फैक्टर हो सकते हैं इसमें। तो होने के बाद तो आप उसको ठीक कर सकते हो, फिर थोड़ा सा जितना भी हो सके आप अपना उसका कोज ढूंढिए किस वजह से हो रही है। जैसे मैंने बताया सेबोरिक डर्माटाइटिस हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, तो वो आप एक बार नियर बाई अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के उसका उपचार ले सकते हैं।
2: जी
0: एलर्जी
2: शुक्रिया।
0: तो है सर मेरी,
1: जी बिल्कुल, वो भी एक कारण
0: छींकें
1: रहता है।
0: आती रहती है सर, छींकें आती रहती है और चश्मा लगाया
1: हाँ,
0: दोनों
1: ये भी
0: पट्टा।
1: एक एलर्जी होती है, पर ये श्वसन तंत्र से रिलेटेड एलर्जी होती है। जिनमें ऐसी एलर्जी होती है उनमें स्किन एलर्जी होने की भी संभावना रहती है।
2: जी शुक्रिया शुक्रिया भागीरथ जी। डॉक्टर साहब, अभी जो हमने बात की उसमें, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे खान पान पर, उसमें मैं ये भी जानना चाहूंगी क्या ऐसी चीजें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए मॉनसून में। जैसे हम ये बोलते हैं कि ज्यादा ऑयली तो हम हर वक्त ही
1: जी देखो,
2: ना खाना
1: हर
2: चाहिए।
1: डिजीज के हिसाब से कुछ एक कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। जैसे एक्नी प्रोन स्किन होती है जिनको पिंपल्स बोलते हैं, हम उनको थोड़ा सा ऑयली स्पाइसी चीज़ें और मीठी चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ऐसी चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, यानी कि मीठी ज़्यादा होती है, वो चीज़ें अवॉइड करनी होती है, क्योंकि ऐसी एनवायरनमेंट में फिर बैक्टीरिया ज़्यादा अच्छे से पनपते हैं, फेस पे पिंपल्स होने की संभावना बढ़ जाती है।
2: जी
1: डेयरी प्रोडक्ट्स भी, कई लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से भी एक्नी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा देखो, जिनको कईयों को एलर्जी होती है, अर्टिकेरिया होता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को खाने पीने में खटाई और बेसन वाली चीज़ों से ज़्यादा अर्टिकेरिया होने की संभावना रहती है। एलर्जी, दफ्फड़ बन जाते हैं जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, मोटे मोटे शरीर पर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं।
2: जी
1: उसमें हम इन पेशेंट्स को थोड़ा खटाई वाली चीज़ें जैसे कि दही, नींबू, इमली, टमाटर और बेसन, चने की दाल से जो भी चीज़ें बनती हैं, कढ़ी,
2: जी
1: पकौड़ा, समोसा, कचौरी, ऐसी चीज़ें अवॉइड करने की सलाह देते हैं। तो ये बीमारी दर बीमारी डिपेंड करता है। जी बिल्कुल।
2: जी डॉक्टर साहब, जो सवाल हमें मिला है फेसबुक के माध्यम से, ये है हमारे, इन्होंने लिखा है कि कुछ स्टूडेंट बच्चे हैं, ये दशरथ सेन जी ने लिखा है कि वो जब घर पर शेव बनाते हैं तो हुंसियाँ हो जाती हैं, लेकिन जब दुकान पर आकर या कोई सलून में आकर जब शेविंग करवाते हैं तब फुंसियां नहीं होती, तो क्या वजह है इसकी?
1: देखो, फोलिकुलाइटिस एक टर्म होती है जिसमें जो बाल की जो जड़ होती है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वो अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से हो जाता है। जब आप कोई अनहाइजीनिक एक ब्लेड से दूसरी तीसरी बार शेव करते हो, या फिर कोई अनहाइजीनिक मटेरियल यूज करते हो फेस पे, तो उससे वो बालों की जड़ों में बैक्टीरिया पस पड़ जाता है, फोलिकुलाइटिस हो जाता है, बाल की जड़ का इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार अपन उल्टी सीधी शेव कर लेते हैं, डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो बाल की जड़ उल्टी साइड में ग्रो कर जाती है, वो स्किन के अंदर की तरफ ग्रो कर जाती है, उससे भी
2: जी
1: फोलिकुलाइटिस हो जाता है,
2: जी जी जी
1: जिसको हम स्यूडो फोलिकुलाइटिस बार भी बोलते हैं। तो हाइजीन का इसमें आप प्रॉपर ध्यान रखिए दशरथ जी।
2: जी डॉक्टर साहब, इस मौसम में एक खास समस्या और है, वो है बालों का झड़ना।
1: जी बिल्कुल,
2: जी क्या कारण है?
1: जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। मानसून के जो मौसम में हमारे पास हेयर फॉल के पेशेंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। इन दिनों में ज़्यादातर लोगों की कंप्लेन होती है कि ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं जैसे ही मानसून चालू हुआ है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें अपने को पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये इसको आप ठीक इस तरह से समझिए कि जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, दोबारा पत्ते आ जाते हैं जैसे ही मौसम अनुकूल होता है, ठीक ऐसे ही जैसे मानसून के मौसम में हेयर साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है। हेयर की जो चार फेजेज होती हैं, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन, एक्सोजन, तो जो टीलोजन फेज में हेयर्स होते हैं वो एक बार शेड होते हैं उसी जड़ में नया बाल आ जाता है। तो इसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके, देखिए, 50 से 100 तक बाल झड़ना बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आपके 100 से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, या आपके बहुत ज़्यादा सिर में डैंड्रफ है, खुजली आ रही है, या कोई अचानक से बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, आपकी हेयर लाइन रिसीड कर रही है, पीछे की तरफ जा रही है, तो फिर आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करके ट्रीटमेंट, उनका उसका जो मेन कारण क्या है, डायग्नोसिस करवाना जरूरी होता है। वरना रूटीन में 50-100 बाल झड़ना मानसून में बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं। और इवन स्ट्रेस कई लोग ले लेते हैं, तो स्ट्रेस अपने आप में एक मेन फैक्टर रहता है हेयर फॉल का,
2: जी
1: और
2: जी
1: भी
2: जी
1: ज्यादा,
2: जी
1: तो स्ट्रेस की वजह से और ज्यादा झड़ते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी।
2: जी डॉक्टर साहब, आपके इस जवाब से खास तौर पे महिलाओं को बहुत संतुष्टि मिली होगी, क्योंकि हम लोगों को ये चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हाँ बाल झड़ गए हैं, पतले हो गए हैं, लेकिन एक समय के बाद में वो फिर
1: जी
2: से ग्रो हो
1: बिल्कुल
2: जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी एक ब्रेक लेते हैं और सुनवा

0: जी, बारिश के इस मौसम में कुछ मधुर गीतों के साथ प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं स्वास्थ्यम, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लोकेश अनुपाणी जी। और डॉक्टर साहब, जो फेसबुक के माध्यम से जो सवाल हमें मिला है वो है सुमन मिड्ढा जी का। आपने लिखा है कि डॉक्टर साहब, 50 की उम्र के बाद चेहरे की त्वचा की चमक कम होने लगती है, तो कोई ब्लीच फेशियल के अतिरिक्त भी कोई उपाय हमें बताएं।
1: जी बिल्कुल, 50 के बाद जो है सुमन जी, अपने को अपनी स्किन केयर रूटीन की मतलब अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्किन की केयर करना, देखो एक खान पान का तो ध्यान रखना ही है अपने को, खाने पीने में जैसा मैंने बताया एंटी ऑक्सीडेंट्स डाइट लेनी होती है अपने को, विटामिन ई, विटामिन सी, ग्लूटाथियोन, ऐसे कंटेंट से रिच जो डाइट होती है, जैसे फ्रेश सीजनल फ्रूट्स हुए, मौसमी, संतरा, नारंगी, ऐसी चीज़ें मतलब अपने को ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, ये तो अफेक्ट डालती हैं। इसके अलावा स्किन केयर रूटीन आपको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। रेटिनॉल सीरम्स का नाइट में जो है काफ़ी अच्छा यूज है अपने को प्री मेच्योर एजिंग को और रिंकलिंग को रोकने के लिए, जो अपने कहते हैं कि यूथफुलनेस बनी रहे, अपनी झुर्रियाँ कम दिखें अपने चेहरे पर, तो नाइट में आप रेटिनॉल सीरम्स यूज कर सकते हैं। और डे केयर में आप सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। सनस्क्रीन का वो आपको अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बना लेना चाहिए, जैसे आप डेली नहाते हैं, डेली ब्रश करते हैं, ऐसे ही डेली आपका पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए सनस्क्रीन। तो ये एक मस्ट हैव चीज़ है जो आपको करनी ही चाहिए। सनस्क्रीन दिन में जैसा मैंने बताया 3 से 4 बार लगानी है, नाइट में आप रेटिनॉल सीरम्स यूज़ कर लीजिए, मॉइस्चराइजर दिन में यूज़ कर सकते हैं, और बाकी आप जो भी इंडिकेशन है आपका फेस में कुछ पर्टिकुलर, तो वो आप फिर डॉक्टर से राय करके आप उसके कंटेंट को इंक्लूड कर सकते हैं।
0: जी, नेकीराम जी बांसीवाल का सवाल है कि डॉक्टर साहब, हमारे जो थाइज हैं उस पर जो कट लग जाते हैं इस मौसम में, तो क्या करें इसके लिए, क्या इलाज?
1: जी जी, इसको आम भाषा में लागे लगना भी बोलते हैं कई लोग। एक्चुअली क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से, गर्मी पसीने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ये बहुत कॉमन साइट होती है अपने, जहाँ पे रेडनेस, इचिंग, जलन सी हो जाती है। तो होने के बाद आप डॉक्टर्स की राय से कुछ मेडिकल ऑइंटमेंट्स लगा सकते हैं, क्रीम्स लगा सकते हैं। होए नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सा वही पसीने से बचाव रखिए और सूती कपड़े पहनिए ताकि पसीना जो है एब्जॉर्ब होता रहे। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है तो आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन कम से कम हो।
0: जी डॉक्टर साहब, एक ये भी कहा जाता है कि जैसे नीम है, हल्दी है, एलोवेरा है, ये लगाने से स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्या कहेंगे आप?
1: जी मैं इसको थोड़ा सा इस बात को काटना चाहूँगा। एक्चुअली ये जो अपने कई लोग हैं जो डेली रूटीन कुछ भी घरेलू नुस्खे अपनाते रहते हैं, कभी हल्दी लगा ली, कभी टूथपेस्ट लगा लिया, कभी कुछ, कभी उपटन लगा ली, तो इनसे देखो कई बार हो सकता है कुछ ना भी हो, लेकिन कई बार हमारे पास इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस करके पेशेंट्स आते हैं, यानी कि इन चीज़ों की वजह से एलर्जी हो जाती है। तो इनका कोई एडसेस कोई साइंटिफिक तो नहीं है, हो सकता है किसी को नहीं भी रिएक्शन करे, पर मेरे हिसाब से अवॉइड करने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए घरेलू नुस्खे। इसकी बजाय आप कोई, अगर आपको कोई कंसर्न है स्पेशल, तो आप नियर बाई डॉक्टर को दिखा के अपनी राय ले सकते हैं।
0: जी, और आखिर में मैं सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर साहब आपसे कि मानसून में हेल्दी और इन्फेक्शन फ्री स्किन के लिए श्रोताओं को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे?
1: मैं 4-5 मुख्य बातें बताना चाहूँगा जो जो अपन मुख्यतः डिस्कस भी कर चुके हैं इस पूरे प्रोग्राम में।
0: जी,
1: शरीर को गीला रखें, सूखा रखें, स्वच्छ रखें, साफ रखें, जो साबुन तौलिया कपड़े अपने अलग अलग रखें, और मेडिकल वाली स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स का कम से कम यूज करें, हेल्दी भोजन लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, संतुलित आहार लें। यही बिल्कुल।
0: जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, और डॉक्टर साहब शुक्रिया हम आपको देते हैं। तो श्रोताओं, आज के इस स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमने डॉक्टर लोकेश अनुपाणी जी से बातचीत की, और आज के इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग मिला कप्तान सिंह, जितेंद्र गर्ग और ओम प्रकाश वर्मा का। कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता थे नवीन सिसोदिया, और सुमन को इस बात के साथ

0: अनुमति दीजिए कि सोच लेगा तू तो मेरी तेरी रजा हो जाऊंगा, मैं फकीरों की दुआ का सिलसिला हो जाऊंगा, नूर तेरा आ रहा है मेरे चेहरे पर नजर, इससे ज्यादा ऐ खुदा मैं और क्या हो जाऊंगा। नमस्कार, और सुनिए प्रोग्राम में ये आखिरी गीत।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्यम। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

आज दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सुगम संगीत में कुछ गजलों का आनंद आप लेंगे 12:30 पर। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान 12:50 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा दिन में 1 बजे का। 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम, बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत, प्रस्तुत करता होंगी अलका वर्मा। दोपहर 2 बजे का समय रहेगा समाचार का। फिल्म संगीत में कुछ फिल्मी नगमे आप सुनेंगे 2:30 पर। और 3 बजे आप सुन सकते हैं उर्दू सर्विस।

दिन में 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम युवाणी का। कार्यक्रम विवरण आप सुन सकते हैं शाम को 6 बजे। 6:05 पर आप सुनेंगे सिराई की। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं 6:30 पर। जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:40 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम चौपाल का। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:45 पर।

संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8 बजे। फिल्म संगीत एक ही फिल्म से जानकारी और गीत ये सुनेंगे आप 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन। समाचार संध्या का समय रहेगा 8:45 का। सुगम संगीत में कुछ गज़लों का आनंद आप लेंगे 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे कंट्री वाइड और इनसाइड, जिसे

अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत आप सुन सकते हैं रात 10:30 पर और हिंदी में समाचार का समय रहेगा रात्रि 11 बजे का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। श्रोता, कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को रश्मि छाबड़ा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करते हैं सावन की। आज सावन का पहला दिन है। सावन वह मौसम जो केवल धरती को ही नहीं बल्कि मन को भी भिगो देता है। सावन की पहली फुहार जब मिट्टी को छूती है तो उसकी सौंधी सी खुशबू बरसों पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है। पेड़ों की डालियों पर झूलों की रौनक, खेतों की हरियाली, बादलों की गड़गड़ाहट और रिमझिम सी बारिश सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं मानो प्रकृति कोई मधुर राग छेड़ रही हो। श्रोताओं, सावन का रिश्ता सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि उम्मीदों, प्रेम, मिलन और यादों से भी है। कभी यह मौसम अपनों के साथ बिताए पलों की याद दिलाता है तो कभी दूर बैठे अपने किसी की कमी को और भी गहरा कर देता है। यही वजह है कि हिंदी फिल्मों में भी सावन पर अनगिनत यादगार गीत बने जिन्होंने हर पीढ़ी के दिल को छुआ। तो आइए इस भीगी सी फिजा में सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे सावन की। कहते हैं, जब दिल किसी का इंतज़ार कर रहा हो, तब बारिश की हर बूंद उसकी बेचैनी को और बढ़ा देती है। सावन का यही रंग इस गीत में सुनाई देता है, जहां बादल बरसते हैं लेकिन मन किसी अपने की आहट तलाशता रहता है। सावन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर सूखे मौसम के बाद हरियाली ज़रूर आती है। जैसे धरती बारिश से मुस्कुरा उठती है, वैसे ही उम्मीद की एक किरण जीवन को फिर से रंगों से भर देती है।

श्रोताओं, बारिश के हल्की हल्की फुहारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेड़ों पर झूलने झूले और ठंडी ठंडी हवाएं, जैसे ही ये एक साथ मिलते हैं, मन अपने आप कह उठता है, आ गया सावन। सावन केवल एक ऋतु नहीं, बल्कि भावनाओं का उत्सव है। यह मौसम हमें प्रकृति के सबसे सुंदर रूप से रूबरू कराता है। सूखी धरती जब पहली बारिश की बूंदों से भीगती है, तो लगता है जैसे प्रकृति ने नई जिंदगी की चादर ओढ़ ली हो। खेत लहलहाने लगते हैं, नदियाँ मुस्कुराने लगती हैं और पेड़ों की हरियाली मन को एक अलग ही सुकून देती है। हमारे भारतीय जीवन में सावन का अपना विशेष स्थान है। गांवों में आज भी इस मौसम में झूले पड़ते हैं, कजरी और मल्हार गाए जाते हैं, मेहंदी रचाई जाती है और तीज त्यौहार पूरे उत्साह से मनाए जाते हैं। यह मौसम रिश्तों में मिठास घोलता है और मन को प्रेम, अपनापन और उम्मीद से भर देता है। श्रोताओं, सावन की हर बूंद जैसे कोई संदेश लेकर आती है, कभी मुस्कुराने का, कभी पुराने दिनों को याद करने का और कभी आने वाले सुनहरे कल का सपना देखने का। यही कारण है कि हिंदी फिल्मों के गीतकारों और संगीतकारों ने भी सावन को अपने गीतों में बड़े खूबसूरत ढंग से सजाया है। तो आइए इस मौसम का आनंद लेते हैं इस गीत के साथ।

श्रेया घोषाल और उदय के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत में सोनू निगम की गाई कुछ गज़लें।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की गाई कुछ गज़लें। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलियान। जानकारी का विषय है बरसात के पानी का सदुपयोग।
1: किसान भाइयों, राम राम। भाइयों, आपने देश ने मानसून को देश भी कियो जावे, अठे किए के हर साल करोड़ों लीटर बरसात को पानी धरती पर बरसे, पर इंगो बड़ो भाग जो है वो बिना उपयोग के ही बैगे नदियां और समुद्र में चली जावे। और किसान भाइयों, दूसरी ओर गर्मियों में किए के पीण के पानी और सिंचाई खातर किए के आप परेशान रहवा, और जे बरसात को पानी जो है बिना आप वैज्ञानिक ढंगों संग्रह करके सागे संरक्षण करके अपा कठो रखा, तो पानी को संकट जो है वो बहुत हद तक अपा दूर कर सका। और आज के कार्यक्रम में अपा जानांगा कि बरसाती पानी को के महत्व है, इन्हें सुरक्षित रखने खातर किसी किसी अपने कने तकनीक है, किसान भाई इन्हें की तरिया ज़्यादा लाभ कमा सके, सरकार की है किसी किसी योजना चलान लाग रही है। तो किसान भाइयों, पानी ने जीवन को आधार कही जाए, और आपने जी धरती है ई पर जीवन को अस्तित्व जो को है वो पानी के बिना संभव को नहीं। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधा और खेती सारा ही किए के पानी पर निर्भर है। और आपने देश में लगभग पिछेत्रों लेगे 80% तक बरसात जो की है वह केवल 4 महीना ही, यानी कि जून ले गए सितंबर के बीच में हुए। जे हाँ, 4 महीना में प्राप्त पानी ने गोवा पा सही ढंग जो संग्रह नहीं करांगा, तो साल का जो बाकी महीना है बंग वहाँ जल संकट उत्पन्न हो जाए। और आज बहुत सारा क्षेत्र में भूजल स्तर जो है वो लगातार नीचे जान लाग रहे है। कुआ जो है वह सूखन लाग रहा है, तालाब है वह लगभग अब समाप्ति की ओर है, और नलकूपों की है पर्याप्त पानी कोने निकल लाग रहे हो। इनको प्रमुख कारण बरसाती पानी को संरक्षण न होना ही है। और अपने देश में पानी के संकट की जो बात करा, तो विश्व को लगभग 18% जनसंख्या जी की है बा अपने देश में, पर अपने कने विश्व के मिठे पानी को केवल 4% भाग ही उपलब्ध है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, जंगलों की कटाई, अनियमित बरसात और भूजल के ज़्यादा दोहन के कारण पानी संकट दिनों दिन की एक बढ़ने लग रही है। अपनों राजस्थान प्रदेश है, और इंगे सके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित जगह दूसरा राज्य एवं वहाँ गर्मियों के दौरान किया कि पानी की गंभीर समस्या अपन है देखने मिले। इसी स्थिति में किया कि बरसात का पानी को संरक्षण ही सारों प्रभावी समाधान अपा मानस का बात करें। किसान भाइयों, बरसाती पानी के संग्रहण की, तो बरसात का पानी ने इकट्ठो करके भविष्य में उपयोग खातर सुरक्षित रखना ही वर्षा जल को संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाई जाए। वो आप किया दो उद्देश्यों करा, जिया कि भविष्य में पानी को अपन संग्रह आप कर लेवा जो को बाद में अपना काम आवे, और सागे किए गए भूजल को स्तर यूँ बढ़ जावे। जे हरेक घर, स्कूल, कॉलेज या कार्यालय जगह है और सागे खेत में बरसाती पानी को आप संग्रह की व्यवस्था कर लिया, तो करोड़ों लीटर पानी की आप बचा सका। बरसात का पानी का संरक्षण की ओसी कि एक तो भूजल स्तर बढ़ेगा, सिंचाई खातर किए गए पर्याप्त पानी अपन उपलब्ध हों तो रहेगा आगे, और पीने को पानी की जी समस्या है पाकिस्तान वायु कम हो जाएगी, माटी को कटाव भी रुकेगा, बाढ़ और सूखे को प्रभाव अपने कम देखने मिल सी। सागी किया गया पर्यावरण संतुलित रहे और पानी पर होने वाला जो को खर्चो है वो किसान भाइयों अपनों कम हो जाएगा। और खेता में किया जल संरक्षण

करण खातर की है कि अपन है खेत में अपन तालाब वगैरह बना लेना चाहिए, खेत के किसी ही एक भाग में तालाब बना के अपन बरसात को पानी अपन इकट्ठो कर सका, और इंगो लाभ हो सी कि सूखे के टाइम अपन सिंचाई कर सकांगा। साकि पशुओं खातर की है पूरा टाइम अपन पानी उपलब्ध रहेगा, बिना तर मछली पालन भी कर सका और सागी की है अतिरिक्त आय जी की है वह अपनी होती रह सी। सागी किसान भाइयों खेत के चारों ओर मजबूत मेड़ बना के बरसाती पानी ना पा खेत में रोक सका। यूँ क्या एक तो जमीन में नमी बनी रह सी, माटी को कटाव कम हो सी और फसल उत्पादन जो है किसान भाइयों वो बढ़ जाएगा। और पहाड़ी और ढाल वाला क्षेत्र में किया गया समतल रेखा के अनुसार बांध बना के वर्षा जल ने अपा रोक सका। और किसान भाइयों सरकार द्वारा किया गया किसानों ने खेत तालाब निर्माण खातर अनुदान भी किए गए देवे और यूँ किया गया पानी का उपयोग जो है वो साल भर किसान भाई कर सके। और सागी भूमिगत जल बढ़ाने खातर किए रिचार्ज पिट बनाए जावे, यूँ किया गया बरसात को पानी धीरे धीरे जमीन के माँ चले जावे। और सागी आज शहर में भी बरसात के पानी को संग्रहण तेजियों अपनाए जाने लग रही है, छतों गिरने वालों पानी पाइप के द्वारा फिल्टर करके टैंक या भूमिगत संरचना में इकट्ठो करो जावे और इंगो उपयोग जो है वो पीण खातर सागी बागवानी और सफाई कार्य और सागी जगह घरेलू कामकाज है बांग में लियो जावे और सागी भूजल पुनर्भरण खातर भी वो काम आवे। और अपने देश में किए गए प्राचीन टैम जल संरक्षण प्रणालियाँ आज भी बहुत ही प्रेरणा देवे, जहाँ राजस्थान में जोड़ बावड़ी टांका, गुजरात राज्य में कुंड, महाराष्ट्र राज्य में बंधारा, तमिलनाडु में टैंक प्रणाली और अंग उपयोग जो है किसान भाइयों सदियों किए गए अपना लोग करता आने लग रहे। आधुनिक तकनीकों की जी बात करा तो आज जल संरक्षण खातर बहुत सा वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध है, जिया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज वेल, रिचार्ज टैच और माइक्रो सिंचाई। और किसान भाइयों खेती में बरसाती पानी को सदुपयोग भी अपना करना चाहिए और वर्षा जल को उपयोग जो है वो धान, कणक, दलहन, तिलहन, बागवानी, सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन खातर अपना कर सका। और सागी किए गए सूक्ष्म सिंचाई में विशेष महत्व है, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई में 40 से 60% तक पानी अपना बचाए, यूँ किया गया उत्पादन भी बढ़ा है, उर्वरकों की बचत हुए, खरपतवार जो है वह किसान भाई कम हो गया और पौधों की वृद्धि जो की है वह बेहतर हुए। सागी यूँ किया गया मिट्टी संरक्षण भी आप कर सका, वर्षा को तेज बहाव उपजाऊ मिट्टी ने भागे ले जाए, जे आप खेतों में मेड़बंदी, घास की पट्टी, वृक्षारोपण, कंटूर खेती अपनाई जावे तो माटी अपनी जो है वह सुरक्षित रहे सी। और बरसात के पानी ने जमीन के अंदर जे आप पहुँचा दें यानी भूजल पुनर्भरण आप कर लेवा तो यूँ क्यों सी कि अपना कुआं जगह है वह भर जा सी, सागी हैंडपंप में पानी बढ़ेगा और ट्यूबवेल में लंबे टाइम तक किए कि पानी आंदो रहे सी और यूँ क्यों सी जल संकट अपनों कम हो जाएगा। सागी किए कि बरसाती पानी संरक्षण हरियाली तो बढ़े ही बढ़े, सागी जंगल जगह है वह किसान भाइयों सुरक्षित रहे, नदियाँ को जल स्तर बढ़े और जैव विविधता को संरक्षण हुए, सागी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जगह है वह किसान भाइयों अपन कम देखने मिले। और पशुपालन में भी किए गए बरसाती पानी को बहुत ही अच्छा उपयोग अपना कर सका, ग्रामीण क्षेत्र में कट्ठो करेड़ो बरसाती पानी गाय भैंस बकरी भेड़ मुर्गी पालन खातर बहुत ही उपयोगी रहे। और जब खेत तालाब में बरसात को पानी अपना कट्ठो करा तो किसान भाई मछली पालन करके अतिरिक्त आय जी है वह प्राप्त कर सके, यूँ किया कि अपनों रोजगार भी बढ़े। और अपनी जी भारत सरकार और राज्य सरकार हैं वह बहुत सारी योजना भी चलाने लग रही है, जिया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, मनरेगा, अमृत सरोवर योजना, आ योजना के माध्यम तालाब, चेक डैम और जल संरक्षण संरचना को निर्माण जो है वो किसान भाइयों करवाए जाने लग रही है। और किसान भाइयों राजस्थान गए बहुत सारे किसान भाई खेत तालाब बना के बरसाती पानी इकट्ठो करे और जटे के पहला केवल एक फसल होती बट्ठा अब साल में 2 या 3 फसल किसान भाई लेने लग रहा है। और कई किसान भाई मछली पालन और सब्जी उत्पादन शुरू करके आपकी आय जगी है वह भी दुगनी करने लग रहे। और इनके अलावा किसान भाइयों अपना कई सामुदायिक प्रयास भी करना चाहिए, जी हाँ पूरे गांव मिल गए तालाब साफ करे, वर्षा जल संरचना जगी है वह बनानी चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए और पानी को दुरुपयोग आप जी रोका तो गांव जो है वो जल

0: आत्मनिर्भर बन सके। और सगे किसान भाइयों, आपने सारा नो संकल्प लेना चाहिए कि नल जो को है वो खुलो नहीं छोड़ना चाहिए, बरसाती पानी ना अपन इकट्ठो करना चाहिए, तलबा ना किया कि अपन सुरक्षित रखना चाहिए, अपने कब्जा मुक्त अपन करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, पानी को अपन सम्मान करना चाहिए। और सगे जगह अपना कृषि विशेषज्ञ है बांगी राय के खेत को पानी खेत में और गाँव को पानी गाँव में ही रोकनो जल संरक्षण की सारों सफल नीति है। और जो प्रत्येक किसान आपके खेत में वर्षा जल रोक लिया तो सिंचाई की समस्या जी की है वह काफ़ी हद तक समाप्त हो सके। और सागी जल संरक्षण जो को है वो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा को स्वरूप ही बदल लाग रही है। तो किसान भाइयों, आज को टेमी तो ही देव आ गया, राम राम सा राम राम।
1: किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की विधेयक को विचार पारित करने और संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सके। लोकसभा ने कल ये विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसमें 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी ठहराए गए अपराधियों की संपत्तियों की जब्ती जैसे कठोर प्रावधान हैं। मामलों के जल्द निपटारे के लिए हर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 8 जिलों में स्थायी लोक अदालतों के गठन का अनुमोदन किया है। इन अदालतों की स्थापना फलौदी, डीडवाना, कुचामन, खैरथल तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली बहरोड और सलूमबर में की जाएगी। स्थायी लोक अदालतों के गठन से आम जनों को विवादों के त्वरित और किफायती समाधान की सुविधा मिलेगी। इन अदालतों में आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाता है, जिससे लोगों के समय और धन दोनों की बचत होती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभागों में खाली पद जल्द भरने और जनसेवा से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन से जुड़े कामों में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, डांग विकास कार्यक्रम, ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना, अटल ज्ञान केंद्र और पीएम कुसुम योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। सलूमबर के गावड़ा पाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वीर बाला कालीबाई राजकीय जनजातीय बालिका छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं और युवतियों को मोबाइल और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी गई। उन्हें सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने, ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी और पासवर्ड साझा नहीं करने की सलाह दी गई। साथ ही साइबर ठगी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करने की जानकारी भी दी गई। राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा के ई प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 अगस्त से 13 अगस्त तक जयपुर, जोधपुर

0: कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर रेंज मुख्यालयों पर आयोजित होगी। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश में सावन के साथ ही बारिश का दौर फिर से तेज हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। सर्वाधिक 6-6 सेंटीमीटर वर्षा प्रतापगढ़ जिले के अरनोड और प्रतापगढ़ में दर्ज की गई। इसके अलावा शाहबाद और सवाई माधोपुर तहसील में 4-4 सेंटीमीटर जबकि बांसवाड़ा के घाटोल और भूंगड़ा में 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई। श्रीगंगानगर तहसील में 5 और पीलीबंगा में 4 सेंटीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में एक सा स्थान पर भारी बरसात दर्ज की गई है। आगामी दिनों में कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

सावन का महीना अपने साथ हरियाली, उमंग और नई ऊर्जा लेकर आता है। पहली बारिश की ठंडी ठंडी फुहार जब धरती को भिगोती है तो मिट्टी की भीनी भूनी खुशबू मन को आनंद से भर देती है। वो कहते हैं ना सखियों कि सावन की पहली फुहार जब धरती को छू जाती है, सूखी डालियां भी हरियाली मुस्कुराती हैं, बारिश की हर बूंद देती है जीवन का एक अलग संदेश, खुशियों से भर जाए आपका दिन, यही शुभकामनाओं के साथ आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी सखी अलका वर्मा। कुछ प्यारी प्यारी बातें और कुछ प्यारे प्यारे सावन के गीत आज हम इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। बातों से याद आया कि आज बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो हमें बचपन में बहुत भाती थी। भाती क्या थी? बचपन में हम उसे बहुत सहेज के रखते थे, बहुत प्यार से रखते थे। जब हम छोटे होते थे तो हमारी मम्मी, हमारी नानी जो है, उनमें हमें ढेरों पैसे चिल्लर इकट्ठे करने के लिए हमें कहती थी और वो होता था हमारा गुल्लक। गुल्लक पर चर्चा करेंगे, लेकिन सावन का महीना शुरू हो चुका है और सखियों ने हरी चूड़ियाँ भी पहन ही ली हैं, तो क्यों ना, और बारिश भी आज आ रही है, तो आपको सुनवा देते हैं ये गीत सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और फिल्म का नाम है प्यासा सावन।

क्यों बचपन की यादों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी हमारे दिल के बहुत करीब रहती हैं। उन्हीं यादों में से एक प्यारी सी याद है गुल्लक, मिट्टी की बनी छोटी सी गुल्लक जिसमें हर दिन एक दो सिक्के डालकर बच्चे जो हैं अपने सपनों का खजाना जमा करते थे। जब भी दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा कुछ पैसे देते थे तो उन्हें तुरंत खर्च करने की बजाय गुल्लक में डालने का आनंद ही अलग होता था। आप सबने भी ऐसा किया होगा, भाई मैंने तो ऐसा जरूर किया है। जब भी मेरी नानी दादी कोई भी मुझे पैसे देते थे तो मैं जाके फटाफट अपने गुल्लक में वो पैसे डाल देती थी। हर सिक्के की खनक मानो ये कहती थी सखियों कि एक दिन ये छोटी सी बचत किसी बड़े काम आएगी। गुल्लक जो है केवल पैसे रखने का साधन नहीं है, बल्कि बच्चों की ये पहली पाठशाला होती थी। ये सिखाती थी कि हर छोटी बचत की अपनी कीमत होती है और धीरे धीरे जमा हुए सिक्के जब नोटों में बदलते थे तब बच्चों के चेहरे पर जो खुशी होती थी वो किसी बड़े इनाम से कम नहीं होती थी। पहले के समय में मिट्टी के गुल्लक को भर जाने पर तोड़ा जाता था और उससे तोड़ने का भी जो उत्साह था ना, वो पूरे परिवार के लिए खुशी का पल बन जाता था। सब इकट्ठा होते थे और फिर कहते थे कि आज तो हम इसका गुल्लक तोड़ेंगे, और सब एक साथ बैठकर वो गुल्लक तोड़ते थे। कोई पैसों को गिनता था, कोई सिक्कों को गिनता था, और कोई ये सोचता था कि उन पैसों से किताब खरीदेंगे, कोई स्कूल बैग खरीदता था, कोई खिलौना और कोई अपनी पसंद की चीज़। लेकिन आज जो है वो समय बदल गया है। मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल वॉलेट का दौर आ गया है, लेकिन गुल्लक की सीख जो है वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है सखियों, क्योंकि बचत की आदत किसी ऐप से नहीं बल्कि संस्कारों से आती है। जब बच्चा अपने हाथों से एक सिक्का गुल्लक में डालता है तो वे मेहनत, धैर्य और भविष्य की योजना बनाना सीखता है। माता पिता यदि बच्चों को बचपन से ही गुल्लक रखने की आदत डालें तो उनमें आर्थिक अनुशासन विकसित होता है। वे समझते हैं कि हर इच्छा तुरंत पूरी करने की ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो है कुछ इच्छाओं के लिए इंतज़ार करना और बचत करना भी जीवन का एक हिस्सा है। गुल्लक हमें सिखाती है कमाई चाहे छोटी हो या बड़ी, यदि नियमित बचत की जाए तो भविष्य जो है वो सुरक्षित बनाया जा सकता है। यही छोटी छोटी बचत जो है आगे चलकर बड़े सपनों की नींव रखती हैं। आज बाजार में बहुत सारे तरह के गुल्लक जो हैं वो उपलब्ध हैं, लेकिन मिट्टी की पारंपरिक गुल्लक की ना सखियों बात ही कुछ और थी। उसकी सादगी में अपनापन था और हर सिक्के में उम्मीद की चमक थी। तो आइए एक बार फिर से बच्चों को गुल्लक से जोड़ें, उन्हें सिखाएं पैसे की कीमत क्या होती है, बचत क्यों ज़रूरी है और कैसे छोटी छोटी शुरुआत भविष्य को मजबूत बना सकती हैं। तो इसी संदेश के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत उत्तम जगदीश का है, गीत लिखा है वर्मा मलिक ने और फिल्म का नाम है वारिस।

सो क्या आज आपको रूबरू कराते हैं भारत की एक ऐसी अद्भुत लोक कला से जिसने मिट्टी को कला का अमर रूप दिया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बंगाल की टेराकोटा कला की। टेराकोटा शब्द इतावली भाषा के शब्द टेरा यानी कि मिट्टी और कोटा यानी कि पकी हुई से मिलकर बना है। इसका मतलब है भट्टी में पकाई गई मिट्टी से बनी कला। पश्चिम बंगाल की टेराकोटा कला अपनी सुंदरता, बारीक नक्काशी और सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर साधारण मिट्टी को अपने हुनर से

सी अद्भुत मूर्तियां मंदिरों, दीवारों की सजावट, खिलौनों और सजावटी वस्तुओं में बदल देते हैं कि देखने वाला जो है ना वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। बंगाल के विष्णुपुर क्षेत्र में टेराकोटा मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इन मंदिरों की दीवारों पर रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण लीला और ग्रामीण जीवन के सुंदर दृश्य जो हैं वो उकेरे गए हैं। सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी इनकी सुंदरता आज भी जो है वो लोगों को आकर्षित करती हैं। टेराकोटा कला बनाने की प्रक्रिया भी बेहद रोचक है सखियों। सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता की चिकनी मिट्टी तैयार की जाती है, फिर कलाकार उसे मनचाहा आकार देता है, इसके बाद उसे धूप में सुखाया जाता है और अंत में भट्टी में तेज तापमान पर पकाया जाता है। पकने के बाद मिट्टी लाल भूरे रंग की मजबूत और आकर्षक कलाकृति जो है वो बन जाती है। आज के आधुनिक दौर में भी बंगाल के अनेक कारीगर इस पारंपरिक कला को जीवित रखे हुए हैं। उनकी मेहनत न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है बल्कि हज़ारों परिवारों को आजीविका का आधार भी देती है। हमें चाहिए कि हम स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा दें, टेराकोटा से बनी वस्तुओं का उपयोग करें और इन कलाकारों के हुनर का सम्मान करें। ऐसा करने से हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, क्रोधी फिल्म से आवाज़ सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

सुखिए, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और आज इसमें साथ दे रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी अलका वर्मा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि बारिश का मौसम जो है शुरू हो गया है, सावन का महीना भी लग चुका है, और इस महीने में बरसात हो जाए तो वो प्रकृति का एक सुंदर उपहार है हमारे लिए। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और रिमझिम फुहार मन को आनंद से भर देती है, लेकिन यही बारिश सड़क पर चलते समय थोड़ी सी लापरवाही को बड़ी दुर्घटना में भी बदल सकती है। इसीलिए तो इस मौसम में सड़क यातायात के नियमों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बारिश के दौरान सड़कें जो हैं फिसलन भरी हो जाती हैं, ऐसे में तेज़ गति से वाहन चलाना जोखिम भरा हो सकता है। हमेशा गति को नियंत्रित रखें और आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी जो है वो बना कर रखें, ताकि अचानक से ब्रेक लगने की स्थिति में दुर्घटना से बचा जा सके। दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक और पीछे बैठा व्यक्ति दोनों हेलमेट अवश्य पहने। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। ये छोटी सी आदत बड़े हादसों को बचा सकते हैं। बरसात में दृश्यता भी कम हो जाती है, इसीलिए वाहन की हेडलाइट और टेल लाइट चालू रखें। बारिश तेज हो रही है।

तो जल्दबाजी करने की बजाय किसी सुरक्षित स्थान पर रुककर मौसम का सामान्य होने का इंतज़ार करें। बातें आपसे और भी करेंगी, लेकिन सावन का महीना चल रहा है और आज तो झड़ी भी लगी है, तो क्यों ना सुना जाए सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की आवाज़ में ये गीत चांदनी फिल्म से। संगीत दिया है शिवहरी ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

सिक्यो बारिश का मौसम हो तो हमें यातायात का नियमों का जो है पालन ज़रूर करना चाहिए। ये बातें हम अभी आपसे कर ही रहे थे। तो बरसात जो है उसमें सड़कों पर पानी भर जाने से बहुत बार जो है खड्डे जो हैं वो दिखाई नहीं देते। तो ऐसी जगहों पर सावधानी से गाड़ी चलाएं। कभी भी पानी से भरी सड़क पर तेज़ गति से गाड़ी दुपहिया वाहन ना चलाएं, क्योंकि इससे वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है और आसपास चल रहे लोगों पर पानी के छींटे भी पड़ जाते हैं। पैदल चलने वाले भी जो हैं वो पूरी सावधानी बरतें। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का ही उपयोग करें। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। मोबाइल फ़ोन देखते हुए सड़क पार करना या कानों में ईयरफोन लगा कर चलना दुर्घटना का कारण जो है बन सकता है, बन क्या सकता है सखियो, आजकल बन भी रहा है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो हैं बाइक्स पे चलते हैं, कानों में ईयरफोन लगा लेते हैं और उसे मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं।

तो उन्हें आसपास की आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं और एक्सीडेंट होने की दुर्घटना जो है वो ज़्यादा केसेस बन रहे हैं। वाहन चलाने से पहले टायर, ब्रेक, वाइपर और इंडिकेटर की जांच ज़रूर करें। अच्छी स्थिति में वाहन न केवल आपकी यात्रा को सुरक्षित करता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी जो है वो सुनिश्चित रखता है। याद रखिए, सड़क पर सुरक्षित सफ़र केवल नियमों से नहीं बल्कि जिम्मेदार व्यवहार से भी संभव होता है। हम स्वयं नियमों का पालन करेंगे तो दूसरों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण जो है बनेंगे। तो आइए इस बरसात में हम सभी संकल्प लें कि न तेज रफ्तार अपनाएंगे, न लापरवाही करेंगे और हमेशा सड़क यातायात नियमों का पालन करेंगे। और इसी के साथ सुनते हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर को फिल्म सिंदूर में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

देखिए, चावल जो है वो केवल पेट भरने के वाला खाना नहीं है, बल्कि पोषण, स्वाद और विविधता का बेहतरीन संगम है। भारत के अलग अलग राज्यों में चावल के अनगिनत व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनका स्वाद और पहचान दोनों ही अलग अलग होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सादा चावल और दाल की। ये सरल, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन है जो हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद आता है वेजिटेबल पुलाव। बासमती चावल में गाजर, मटर, बीन, शिमला मिर्च और हल्के मसालों का मेल इसे स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाता है। इसे रायते के साथ परोसने का आनंद ही अलग है। जीरा राइस भी बहुत लोकप्रिय है। घी, जीरा और हल्के मसालों की खुशबू से तैयार ये रेसिपी दाल मखनी, कढ़ी और राजमा के साथ बहुत अच्छी लगती है। लेमन राइस, जो दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध डिश है। उबले चावल, करी पत्ता, राई, मूंगफली और नींबू के रस से ये तैयार किया जाता है। ये हल्का, चटपटा और जल्दी बनने वाला व्यंजन है। इसी तरह टमाटर राइस भी स्वाद और पोषण से भरपूर होता है। टमाटर, प्याज और मसालों के साथ बनाया गया ये व्यंजन बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आता है। चावल के और भी बहुत सारे रूप हैं जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर को फिल्म हीना में। गीत और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

क्योंकि बरसात के मौसम में खिचड़ी जो है वो भी एक अच्छा जो है विकल्प है। चावल और दाल से बनी रेसिपी हल्की, पौष्टिक और आसानी से पचने वाली होती है। घी, पापड़ और अचार के साथ इसका स्वाद जो है वो और भी बढ़ जाता है। मीठा पसंद करने वालों के लिए चावल की खीर एक पारंपरिक और प्रिय मिठाई है। दूध, चावल, चीनी, इलायची और मेवों से बनी खीर हर त्यौहार और शुभ अवसर की शान होती है। इसके अलावा दही चावल, इमली राइस, नारियल राइस, मटर पुलाव, तवा पुलाव और बिरयानी जैसी अनेक रेसिपीज़ भी चावल की बहुमुखी उपयोगिता को दर्शाती है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की ओर बढ़ने का, तो आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। संगीत आनंद मिलिंद का है, गीत लिखा है समीर ने और फिल्म का नाम है कुर्बान।

तो क्या उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम जो है वो आपको पसंद आया होगा। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी सखी अलका वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक

0: लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई व्हाटएवर नेम इट मे बी कॉल्ड व्हिच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, ये ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
4: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में

0: फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
1: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भिखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
3: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने यह सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
6: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार

0: तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान ना मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमेरिकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के चार शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था चोरी चोरी चुपके चुपके। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अलका याग्निक के साथ उदित नारायण को। गीत सुधाकर शर्मा के हैं, संगीत साजिद वाजिद के, और फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर।

दिल है तुम्हारा। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा। गीतकार समीर हैं, संगीतकार नदीम श्रवण, आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति और शान की।

अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजे हैं, अब समाचार होंगे। लीजिए अब सुनते हैं उर्दू सर्विस।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब से चंद लगों के बाद आप खबरें सुनेंगे।

0: अफजाई होगी। यह खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका में एक शख्स को साल 2022 में मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर हमले के मामले में वफाकी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम के तहत कसूरवार करार दिया गया है। सलमान रुश्दी को दहाइयों पुराने अपने नावल शैतानी आयात की वजह से कत्ल की धमकियों का सामना है। जूरी ने मुलजिम हादी मतार को सभी इल्ज़ाम के तहत कसूरवार करार दिया, जिसमें सरहद पार दहशतगर्दी में मुलविस होना भी शामिल है। 28 साल मतार अगस्त 2022 में एक एम्फीथिएटर स्टेज पर कत्ल की कोशिश की वजह से न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल कैद की सज़ा काट रहा है। वफाकी तौर पर कसूरवार करार दिए जाना सजाए मौत की वजह बन सकता है। सलमान रुश्दी, जो मुसन्निफों की सलामती के बारे में ज़रा ख्याल करने वाले थे, उन पर सामीन के सामने 15 मरतबा चाकू से वार किया गया। इस हमले में रुश्दी शदीद ज़ख्मी हो गए थे और अपनी दाई आँख की बिनाई खो बैठे थे। रूस की वफाकी सिक्योरिटी सर्विस FSB ने टेलीग्राम के बानी पैवेल द्रोफ पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए सहूलत पैदा करने का इल्ज़ाम आयद किया है और उन्हें बल्कमामी सतह पर मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल करने की गरज से ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह बात रूस के सरकारी मीडिया ने बताई है। FSB ने इल्ज़ाम लगाया है कि टेलीग्राम ने उन चैनल्स और चैट्स को नहीं हटाया जिन्हें यूक्रेन के खुफिया इदारे बेहतर तौर पर रूस के अंदर हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हुक्काम ने यह दावा भी किया है कि टेलीग्राम की डेटिंग सर्विस की रूसी शहरियों की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए भर्ती करने की गरज से इस्तेमाल किया जा रहा था। FSB ने बताया है कि टेलीग्राम के बानी की गिरफ्तारी के लिए एक बिलकवामी वारंट जारी किया गया है। जापान की वजारत दाखिला और मवासलात के अदद व शुमार के मुताबिक मुल्क में शहरियों की आबादी 42 बरस में पहली बार 12 करोड़ से कम हो गई है, जो शरह पैदाइश में कमी की वजह से आबादी के बहरान की अलामत है। वजारत की जानिब से जारी किए गए अदद व शुमार के मुताबिक यकम जनवरी तक जापान में शहरियों की तादाद 11,97,36,483 थी। भारत के महकमे मौसमियात ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और मगरबी मध्य प्रदेश में आज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, केरला, माहे और राजस्थान में अगले दो दिन के दौरान गरज चमक के साथ तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। कनाडा के शहर ओंटेरियो में भारत की मर्दों की टीम स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत की पांचवी पोजीशन की मर्दों की टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा, जो जापान को हराने के बाद सेमीफाइनल में पहुंचा है। इस दौरान खवातीन की टीम क्वार्टर फाइनल में अमरीका से 1-2 से हार गई। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुरमन मुजाहरीन पर पाकिस्तानी मुसल्लफात की जानिब से वहशियाना हमले का सिलसिला जारी है। अब तक 40 से ज़्यादा सिविलियन हलाक हो चुके हैं। अमेरिका ने मुख्तसर वक्फे के बाद ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले शख्स को अमेरिका की एक वफाकी अदालत ने दहशतगर्दी के जुर्म में कसूरवार करार दिया है। रूस की वफाकी सिक्योरिटी सर्विस FSB ने टेलीग्राम के बानी पैवेल द्रोफ पर दहशतगर्दाना हम सरगर्मियों के लिए सहूलत पैदा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। और कनाडा में भारत की मर्दों की टीम स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुँच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश बंधन फिल्म का नगमा महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ है।

0: जब सुनिए मिलन फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकी तरतीब दी है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर।

बोली जी, प्रोग्राम के आखिर में सुनिए मेला फिल्म का नगमा, शमशाद बेगम, मुकेश और साथियों का गाया हुआ नगमा निगार शकील बदायूनी, मौसीकी नौशाद की।

0: ये थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। इस प्रोग्राम के तहत एक मुबाहिसा सुनिए। मौजू है अखलाकी अकदार और हमारा तालीमी निज़ाम।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। आज अंदाज़े नज़र के तहत अखलाकी अकदार और हमारा तालीमी निज़ाम के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब, साबिक सदर शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सैयद रज़ा हैदर साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट, और डॉक्टर नदीम अहमद। आप सबों का इस मुज़ाकरे में इस्तकबाल है। प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब, हम चाहेंगे कि जो अखलाकी अकदार और हमारा तालीमी निज़ाम है, इस पर आप कुछ हम बताएं हमारे सामीन को।
2: देखिए, ये एक बहुत वसी ज़ैल टॉपिक है और इसमें सिर्फ अखलाकी अकदार ही नहीं, तालीमी निज़ाम भी है। तो इस तरह से दो टॉपिक हुए। एक तो हमारा निज़ाम तालीम क्या है, जिसके लिए हम ज़रूरी समझते हैं कि इसमें अखलाकी अकदार पर कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जा रहा है, ये पहले दिया जा रहा था, और अब अगर दिया जाए तो वो अखलाकी अकदार की नौइयत क्या है। यानी एक तरह से अखलाक का जो तस्वुर है, ये खुद बड़े इजाफी तस्वुर है, रिलेटिव टर्म है। हम अखलाक को असली तौर पर भी जांचते हैं, माजी के तौर पर भी जांचते हैं कि माजी में अखलाकी अकदार क्या थी, यानी हुस्न अमल या हुस्न किरदार की नौइयत क्या थी, जिसको हम अरबी में उसवाए हसना भी कहते हैं।
1: जी।
2: तो इस एतबार से हम फौरी तौर पर जो हमारा जहन जाता है तो उन्हीं किताबों पर, उन्हीं सहाइफ पर जाता है कि जिनको हम अखलाकी दस्तावेज़ कहा करते हैं। यानी कोई भी समावी सहीफा दस्तुरुल अमल ही होता है, और दस्तुरुल अमल होने के मायने क्या है कि ज़ाब्ते अखलाक होता है, जिसको हम कभी हिदायतनामा भी कहा करते हैं।
1: जी।
2: तो गोया कि जब हम आज के गुफ्तगू का ये टॉपिक रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे जहन में एक मायूसकुन तसव्वुर भी है कि हम शायद अखलाकी अकदार से दूर होते जा रहे हैं। हमारे तालीमी निज़ाम में कुछ न कुछ कमियां हैं, जिसके बाइस हमारी समाजी सतह पर जिस तरह से ज़ाब्ते अखलाक हमारी अमली ज़िंदगी में होना चाहिए वो मौजूद नहीं है। या नई नस्लों में कह लीजिए कि हमारी नई नस्लें जो कि स्कूल से, यूनिवर्सिटीज से निकल कर आ रही हैं, तो शायद हम ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर रखना चाहते हैं कि वो अखलाकी तालीम हासिल करके हमारी समाजी ज़िंदगी में दूसरों के लिए एक मिसाल-ए-राह साबित हों। तो अब पहले हम ये तय कर लें कि अखलाकी अकदार से हमारी

0: क्या है ना। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये एक रिलेटिव टर्म है, एक इजाफी टर्म है, लेकिन पूरी तरह से मरती नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे कोई आबशार गिरता है, पत्थर जो है घिसता है लेकिन ख़त्म नहीं होता, वो तो घिस कर तब्दील होता रहता है। तो कदरें जो है उसमें तब्दील होती रहती हैं कदरों में, और लेकिन कुछ कदरें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि वो दायमी नौइयत की हैं, जो हमेशा हमारे ज़िंदगी के निज़ाम में उनकी अहमियत कायम रहेगी। मसलन हम एक हुस्न अमल और हुस्न किरदार की बात करते हैं। हुस्न अमल का ताल्लुक सीधे सीधे अखलाक से है, खुल्क से है, और अमल इसमें शामिल है, हुस्न अमल के साथ अमल का तसव्वुर है। लेकिन क्या हम अमल को नज़र से या नज़रिए से अलग कर सकते हैं? जब हम तालीमी निज़ाम की बात करते हैं तो उसमें नज़रिया ही आता है कि हम नज़रियाती तौर पर एक ऐसा दस्तूर अमल बनाएं तालीम का कि जिसमें नज़रियाती सतह पर हम उनको अखलाकी तालीम दे सकें। वो अमली तालीम नहीं है, वो एक नज़री तालीम है। इसलिए गालिब का एक मसला याद आ रहा है, ख्याल हुस्न में हुस्न अमल का ऐसा ख्याल, यानी ख्याल हुस्न कायम कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कायम कीजिए। उस कॉन्सेप्ट के लिए अब आज के पीरियड में अगर हम इस तस्वीर को सामने रखते हैं तो हमें ये देखना होगा कि आज के मसाइल जो पैदा हो रहे हैं इनके मुहर्रिकात क्या हैं और इनकी वजूहात, ये वजूहात क्या हैं कि आज अखलाकी सतह पर हम बहुत ही ज़वाल पज़ीर अपने को समझ रहे हैं। या इस सार्फी समाज को सामने रखें, साइंटिफिक एज को सामने रखें, हम अपने से जो मशीनी एज है इसको सामने रखें, तो ये तस्वीर कायम होता है नदीम मियाँ कि जितना हम मसलन इंटरनेट है, कंप्यूटर है, हम उसके ज़रिए बहुत सा इल्म हासिल करते हैं, और उसमें हम जो इल्म हासिल करते हैं तो ये भी रखते हैं कि हमारे अब मेमोरी का सारा ख़जाना उसमें मौजूद है। अब हम जब दिमाग में मेमोरी जो रखे हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा उसमें मौजूद है, इसलिए हम मेमोरी से काम कम ले रहे हैं और इंटरनेट से मशीन से ज़्यादा काम ले रहे हैं, और जो हम भूल जाते हैं तो फिर मशीन का सहारा लेते हैं। गोया कि मशीन ह्यूमन होती जा रही है
1: जी,
0: और हम इनह्यूमन होते जा रहे हैं, यानी मशीन जिस तरह ह्यूमन होती जा रही है तो वो जो इनह्यूमन हो रहे हैं इसका मतलब ये कुछ अखलाकी कमियां हैं, अखलाकी कुछ महरूमियां हैं, और जो हम उससे की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, उस भरपाई के लिए हमारे जहन जाता है तालीमी निज़ाम की तरफ कि हमारे पास क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, किस तरह से।
1: डॉक्टर सैयद रज़ा साहब, हम चाहेंगे कि आप इस नज़रिए के बारे में क्या सोचते हैं।
2: देखिए, मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर रतिकुल्ला साहब का कि उन्होंने पूरी इस गुफ्तगू का एक नहज, एक पैटर्न जो है शुरू में एक क्लियर कर दिया
1: जी।
2: उससे गुफ्तगू जो है बहुत आसानी से आगे बढ़ सकेगी। सर ने जैसा कि एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि बहुत ही मायूसकुन माहौल है अखलाकी अकदार के ताल्लुक से और हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसके ताल्लुक से। देखिए, जो हमारा पूरा तालीमी निज़ाम है, सिर्फ तालीमी निज़ाम ही नहीं बल्कि जो पूरी हमारी ज़िंदगी है, जो हमारा पूरा लाइफ स्टाइल है, उसमें अखलाकियात का एक बहुत ही अहम किरदार है। और जब तक के हमारे तालीमी निज़ाम में उन वैल्यूज़ को, उन मोरलिटी को, उन अखलाकियात को हम मद्देनज़र नहीं रखेंगे, तब तक ये जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा शानदार माजी है, उससे हम मुनहरिफ होते जाएंगे। यही वजह है कि जब मौजूदा तालीमी निज़ाम की बात आती है तो सबसे ज़्यादा, चाहे किसी भी तरह की हुकूमतें हों, किसी भी आइडियोलॉजी के लोग हों, किसी भी समाज के लोग हों, वो अखलाकी अकदार पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मौजूदा

0: वहां जब बच्चे पढ़ करके निकलते थे तो तालीम से भी आरास्ता होते थे, और जो उनका पूरा लाइफ
1: जी
0: स्टाइल था, उनकी जो गुफ्तगू थी, जो उनका लिबास था, वो भी उनके पूरी अखलाकियात और उनके पूरे माजी का पता बताता था। लिहाजा मौजूदा दौर में आज किसी भी आइडियोलॉजी का आदमी हो, किसी भी मजहब का आदमी हो, मैं किसी मजहब से इस चीज को मखसूस नहीं कर रहा हूँ, वो परेशान है। वो परेशान ये है कि बच्चे एजुकेटेड तो हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए, लेकिन वो हमारा जो पूरा इखलाकी निज़ाम अकदार है उससे वो बहुत पीछे हो गए। जैसा कि प्रोफेसर अतिकुल्ला साहब ने कहा कि बहुत ही मायूस कुन माहौल है। इस पे सोचने की ज़रूरत है, इस पे जोर देने की ज़रूरत है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बन रही है उसमें इस बात को भी सामने रखा जाए कि अगर कोई बच्चा स्कूल में आए, कोई स्टूडेंट कॉलेज में आए, तो वो ठीक है मॉडर्न एजुकेशन भी सीखे, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने अकदार को, वो अपने पूरे सिस्टम को, अपने शानदार माजी को किस तरह से प्रिजर्व कर सकता है, इसको भी सोचने की जरूरत है।
2: डॉक्टर
0: अच्छा
2: नदीम अहमद साहब, आप
1: अच्छा
2: क्या कहना चाहेंगे अखलाक इकदार और हमारा जो तालीमी निज़ाम है इसके ऊपर?
3: मैं इसे दूसरे पहलू से जोड़ता हूँ और मैं कुछ इस तरीके से बताना चाहूँगा कि ये पेश नज़र मौजू जो है इसके अंदर अखलाक इकदार और हमारा तालीमी निज़ाम में तीन असलाहत हैं। पहली असलाह जो अखलाकियात है, दूसरी अकदार है, और तीसरी असलाह जो है वो हमारा तालीमी निज़ाम है।
2: जी
3: मैं पहलू व पहलू और एक के बाद एक इसके बारे में, इसकी तारीफ के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि अखलाकियात क्या है या उसकी तारीफ क्या है। देखिए, अखलाकियात समाज का वो अंसुर है जिसकी मौजूदगी में तहजीब याफ्ता समाज की तामीर की जा सकती है।
2: जी
3: अखलाक इंसान की वो

0: कि अखलाकियात क्या है या उसकी तारीफ क्या है। देखिए, अखलाकियात समाज का वो अंसुर है जिसकी मौजूदगी में तहजीब याफ्ता समाज की तामीर की जा सकती है।
1: जी
0: अखलाक इंसान की वो मुनफरिद खूबी है जो इसकी अच्छाइयों को अयां करती है। सही या गलत और अच्छे या बुरे नज़रियात का तसव्वुर अखलाक कहा जा सकता है। अखलाकियात ही के पेश नज़र हम किसी काम को करने या ना करने का फैसला ले पाते हैं। अखलाकियात की बुनियाद पाकी, ईमानदारी और हकीकत है। ज़मीर की सही आवाज़ ही अखलाकियात है। मशहूर मौरख और माहिर तालीम मैकाइवर और पेज के मुताबिक अखलाकियात का मतलब उसूलों के उस निज़ाम से है जिसके ज़रिए इंसानी ज़मीर अच्छे और बुरे का इल्म हासिल करता है।
1: जी
0: दूसरी इस्तलाह इसके अंदर अकदार की थी। अकदार की तारीफ यह है कि किसी भी चीज़ या काम की अहमियत को वाजा अकदार के ज़रिए किया जाता है। साथ ही अकदार का मकसद ये जानना भी होता है कि कौन सा काम अच्छा या ख़राब है, या फिर उस काम को करने के लिए कौन सा तरीक़ेकार बेहतर रहेगा। मैनी के मुताबिक मुल्क, ज़माना, हालात के ज़िम्न में आम मकसदियत ही अकदार बन जाती हैं। अकदार आदात और मिसालियात हमारे बर्ताव को हिदायत देते हैं। अखलाकी अकदार यानी पूरी जो टर्म है, मैं उसे मिलाकर उसकी तारीफ बताता हूँ कि अखलाकी अकदार क्या होता है। अखलाकी अकदार अच्छे और बुरे अमल का वो मयार है जिसकी मदद से इंसानी बर्ताव को काबू में रखा जाता है। और तीसरी टर्म इसके अंदर ये थी। यहाँ मैं कुछ और बताना चाहूँगा कि आज़ादी से कबल हंटर कमीशन ने अखलाकी तालीम के लिए सबसे पहले अपनी सिफारिशात पेश की थी। आज़ादी के बाद हायर एजुकेशन कमीशन जो कि 1948 में बना उसने, और उसके फौरन बाद 1952 में मुदालियर कमीशन जिसे सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है उसने भी, उसके अलावा 1964 में बने कोठारी कमीशन ने और 1986 की तालीमी पॉलिसी के अलावा मुख्तलिफ तालीमी कमेटियों की सिफारिशात में भी अखलाकी अकदार की तालीम का जिक्र किया गया है और उसकी अहमियत को बहुत ज़्यादा वाजे किया गया है। जदीद करिकुलम में बहुत हद तक अखलाकी तालीम पर जोर देने की ज़रूरत को हमेशा महसूस किया गया है। इसके अलावा तालीमी फ़लसफ़े के तमाम फ़िक्री और नज़रियाती मुफक्किरीन, मसलन प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म के अलावा हिंदुस्तानी माहिर तालीम दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, गांधी जी और महर्षि अरविंद ने अखलाकियात और अकदार की तालीम को बहुत अहम माना है और उसकी ज़रूरत पर हमेशा रोशनी डाली है। आज की तालीम का मकसद क्या है, मैं उस पर भी गुफ्तगू करना चाहूँगा। आजकल तालीम हासिल करने का असल मकसद पढ़ लिख कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना रह गया। इस जानिब अभी
1: जी
0: अतिकुल्ला सर ने भी इशारा किया था, और इसके लिए तालीम याफ्ता इंसान कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से करप्शन को आगे बढ़ाने में पढ़े लिखे लोग ही सबसे आगे नज़र आते हैं। हमें तालीमी इदारों के जरिए

0: एक ऐसे तालीमी निज़ाम को पेश करने की ज़रूरत है जो ज़िंदगी को जीने की तैयारी का सलीका हमें सिखाए और इब्तदाई मरहले से लेकर स्कूली सतह की तालीम मुकम्मल होने तक मुस्तकबिल में पेश आने वाली परेशानियों से तलबा को आगाह करती रहे।
1: इन्होंने जो हवाले दिए हैं वो बहुत अहम हवाले हैं तारीख के एतबार से भी हमारे यहाँ कि कब कब किस तरह से इस पर जोर दिया गया, लेकिन अमलन कोई उसके ख़ास नतीजा नहीं निकला। खुद एनसीईआरटी का भी मेंबर हूँ और ये हमेशा जब भी टेक्स्ट बुक्स की बात आती है
2: जी
1: तो उस वक्त यही सवाल उठता है कि ये अखलाकी सतह पर इसमें हम क्या कमियाँ रह गई हैं जिनकी हम भरपाई कर सकें। ये हमेशा गुफ्तगू का मौजू होता है। इवन ये भी है कि 71 और 72 में जब नई पॉलिसी कायम बन रही थी उसमें के कुल्ला जो हैं वो ख़ास उसके नुमाइंदा थे, वो मेरे वो दोस्त भी कहलाते हैं, तो उन्होंने भी एक शक के तौर पर ये रखा था कि अखलाकी सतह पर जो कमियां हमारे टेक्स्ट में हैं और जो तालीमी निज़ाम में हैं उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो ये आम तौर पर हर दौर में ये गुफ्तगू का मौजू बना रहा है और आज मेरा ख्याल यह है कि ये इस पर गुफ्तगू से ज़्यादा नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि आपने पहली बार ये हिम्मत की है और कोशिश की है और ये सूरत हाल देखकर कि पूरे आलमी सतह पर जो अफरा तफरी का आलम है, जो इंतशार का आलम है और ख़ानदानी निज़ाम जिस तरह से टूट रहे हैं, रिश्तों का एहसास जाता रहा है और जो इज्जत और एहतराम एक दूसरे के लिए होना चाहिए छोटे का बड़े के साथ, बड़े का छोटे के साथ, और ये जो हमारे एक तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी है सबसे पहले वो सामने आती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। अब इसमें ही यहीं से निकलते हैं वो लोग जो कि आगे चलकर जराइम पेशा बनते हैं, वही लोग जो तशद्दुद पर मायल हो जाते हैं, वही लोग जो कि समाज में अफरा तफरी और इंतशार पैदा करते हैं। अब उनके लिए किसी ज़ाब्ता अखलाक की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया। अब सवाल यही उठता है कि ज़ाब्ता अखलाक की एक सूरत तो वही जो मजहबी सूरत है, ये लफ्ज़ जो है आया भी मजहबी सतह पर ज़्यादा आया है कि मजहबी सतह पर ज़ाब्ता अखलाक जो है वो सहाइफ हैं। तो एक तरफ तो वो हैं और दूसरी तरफ समाजी सतह पर और सियासी सतह पर एक ज़ाब्ता अखलाक होता है। तो हम ये समझते हैं कि सियासी सतह पर जो ज़ाब्ता अखलाक की कमियाँ हैं हमें पहले वो दूर करने की ज़रूरत है। वो अगर दूर होती हैं अगर सियासी सतह पर, क्योंकि अब वो तारीख का तो ये है कि हिस्ट्री इज़ डेड, तारीख तो ख़त्म हो गई, मर गई, अब तो सिर्फ पॉलिटिक्स बाकी है। तो पॉलिटिक्स आज के दौर में जितनी निथरी हुई, जितनी कशीद होगी, जितनी साफ और शफाफ होगी, उतना ही निज़ामी ज़िंदगी और निज़ामी ज़िंदगी के दूसरे शोबाजात जो हैं वो निखर कर सामने आएंगे। वो उसका ताल्लुक डायरेक्ट आज सियासत से है। इस एतबार से रज़ा हैदर ने भी बहुत अच्छा कहा, बहुत उम्दा ये बात कही कि जो सियासी सतह पर हमारे यहाँ जो एक जवाल आया है दुनिया की सतह पर, या नहीं है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलमी सतह पर जो तब्दील आया है और वो उसका अक्स हमारे यहाँ भी नज़र आ रहा है। और चूंकि अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है इसलिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक मुल्क के तमाम तसव्वुरात, नज़रियात, निज़ामात, सिस्टम्स, ये सब दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हो रहे हैं आज़ादी के साथ। अब ख़रीदार ही ख़रीदार हैं, बेचने वाले ही बेचने वाले हैं, लफ्ज़ बिक रहा है, ख्याल बिक रहे हैं, नज़रिए बिक रहे हैं, मज़हब बिक रहे हैं, उसूल बिक रहे हैं, हर चीज़ बिक रही है। इस एतबार से एक तालीमी निज़ाम में सबसे ज़्यादा जो है इफादियत का पहलू आया, यूटिलिटी का पहलू आने की वजह से ये कमी पैदा हुई। जैसे कि आपने बताया कि रोज़गार का, रोज़गार के अलावा भी ये है कि आला से आला तालीम हासिल करना एक मोटो होता है, मकसद होता है कि हम आला से आला तालीम हासिल करें, लेकिन आला तालीम हासिल करने के बाद हमारे समाज को हमसे क्या फ़ायदा पहुँचे, हमारे समाज को हम क्या दे पाएंगे। आपने अपनी ज़िंदगी का एक तयन कर लिया मकसद, उससे जैसे कि रोज़गार से है, आपने बहुत अच्छे साथ मेडिकल की तालीम हासिल की है, आप रोज़गार हासिल कर लिया, लेकिन आज के पीरियड में ये उमूमी तौर पर शिकायतें पैदा होती हैं कि भाई डॉक्टर्स निकलते हैं और वो कॉमर्शियल हैं, है ना, वकील हैं वो कॉमर्शियल हैं, टीचर्स हैं वो कॉमर्शियल हैं, यानी वो तमाम इदारे और वो तमाम शोबाजात जिनको हम समझते थे कि यहाँ से निकलने के बाद आदमी एक वकील बनता है तो सही मानों में फैसले कर देगी, उसमें सलाह सच और झूठ की तमीज़ करेगा,

0: अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमेशा ही परचम लहराया है। जितने भी ऑपरेशंस में इन्होंने अपना दम खम दिखाया, वहां ये साबित कर दिया कि अपनी दक्षता से, कुशलता से किसी भी परेशानी को, किसी भी जटिल समस्या को उससे निजात पाया जा सकता है, उसे लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। इनके तमाम ऑपरेशंस, इनके बारे में जिनमें इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें इन्होंने अपना साहस दिखाया, जिनमें इन्होंने अपना नेतृत्व किया, खास तौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात की जाए, उसका जिक्र हम आज करेंगे यहाँ इसी शो पर, जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, इन्हें कई सम्मानों से अलंकृत किया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें 21वां राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2020 इससे भी सम्मानित किया। और ये पहले ऐसे डिफेंस पर्सनल हैं जिन्हें TIIFATFA 2018 मुंबई अवार्ड्स यहाँ भी सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। और कहते हैं कर्नल साहब की सेवानिवृत्ति जो है अपने साथ असंख्य यादें, असंख्य बातें, असंख्य किस्से कहानियां लेकर आती हैं। तो आज हम कर्नल शैलेंद्र सिंह से उन सभी किस्सों कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने हमेशा वीरों के जरिए, अपने सैनिकों के जरिए, ऑफिसर्स के जरिए बड़े बड़े जंग लड़े हैं और हमेशा हर मैदान में, हर जंग मैदान में फतेह हासिल की है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है और मैं आज आपके थ्रू सभी को करेक्ट कर दूं, फौजी कभी रिटायर नहीं होता।
0: जी,
1: मेरा फौजी कभी रिटायर हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए मेरी बात अथॉरिटी के तौर पर, मेरे फौजी से जितना ज्यादा काम कराओगे वो उतना ज्यादा खुश होगा। जिस दिन उससे आप काम नहीं कराओगे उस दिन वो रिटायर हो जाता है। मैं ये जरूर मानता हूँ और इस बात में मेरा पूरा विश्वास है। और मेरे सारे फौजी भाई कि जिस कैपेसिटी में जहां पर भी हैं, आप पाएंगे गांव के लेवल पर, सिटीज के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उनसे हो सकता है वो कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं। और मैं यही कह सकता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, मेरे से ज्यादा वो कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, और आपको देखकर इस वक्त ये प्रतीत भी हो रहा है कि वो जो डिसिप्लिन आप अपने कार्यकाल में सीखते हैं, वो डिसिप्लिन निरंतर ही आपके साथ चलता है और जो सेवाएं हैं वो आप में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती हैं और आप उन्हें उम्र भर जीते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि कहाँ से ये कारवां शुरू हुआ, सबसे पहले कि जीवन का वो कौन सा मोड़ था, कौन सा पल था जहाँ आपने ये निर्णय लिया कि आपको भारतीय सेना ही ज्वाइन करना है।
1: अब ये तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद है कि लाइक हर स्कूल में ये किस्सा है कि एक लड़की थी जिसके ऊपर हमारा भी क्रश था और उस लड़की को फौजी पसंद थे। उस समय तो हमें रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर फौजी थे, कैंटोनमेंट्स में हम रहे थे, एक अलग तरीके की लाइफ देखी थी। हालांकि हमें वो लाइफ कंफर्टेबल लगती थी, क्योंकि हमें जब तक समझ आई कि फौज में हमारे फादर क्या कर रहे हैं तो उनका ओहदा जो था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए हमें तो सारा कंफर्टेबल लगा। हमने ये तो नहीं देखा कि 4 बजे कब उठे होंगे, जो यंगर डेज होते हैं। सो मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये जो दो अट्रैक्शन हैं जो मुझे SSB में भी पूछा गया था कि फौज आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो
0: जी।
1: तो मेरा पहला आंसर था कि ऐसा समझा जाता है कि फौजियों को सुंदर बीबियां मिलती हैं।
0: अब निश्चित ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो स्पाउस हैं, जो बेटर हाफ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं और आपकी मुस्कुराहट से इस बात को महसूस कर सकती हूँ मैं।
1: मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मेरी नजरों से देखोगे तो उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। और जब भी किसी आर्मी ऑफिसर की बात की जाती है, जब आपसे बात की जाती है, तो वो यही कहते हैं कि हमारे घर को जिसने संजो कर रखा है, जिस खूबसूरती से संजो कर रखा है, हमारे पीछे भी जब हम मिशंस पे जाते हैं, वार्ड्स पे जाते हैं, ऑपरेशन पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज दुकान वही एक है जिसकी वजह से घर चहकता है।
1: नहीं देखिये, ये जो आपने बोला है ना कि जब हम बाहर जाते हैं, मैं अपने बेटे से जब पहली बार मिला तो

नंदन वंदन अभिनंदन। आप सभी दोस्तों का संदेश टू सोल्जर्स के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय इस कार्यक्रम को सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। ये कार्यक्रम वीरों की गाथा, उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति का परिचायक है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज की मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने

0: जब मैंने बेल बजाई और वो जो जाली वाला था उसमें से मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा लुढ़कता पुढ़कता आ गया, और उसने फिर मुड़ा और अपने मम्मी की तरफ आवाज निकाल के कहता है, माँ कोई अंकल आए हैं। आप सोचिए कि वो दैट लेडी जो इतने टाइम तक अपने बच्चे को, अपने घर को संभालती रही। मैं आपको ये निश्चित तौर पर बता सकता हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट है। इट इज लिटिल मोर देन बहुत डिफिकल्ट, इतना ज्यादा मुश्किल का मामला है। ये एक अलग बात है कि आपको आदत पड़ जाती है, आपको लग्जरीज नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, आपके पास जो सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, बट उसके बावजूद आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हो कि मेरा हस्बैंड कल आ रहा है, देर इज अ सेलिब्रेशन। अगर दिवाली पर नहीं आया तो जिस दिन आया उस दिन दिवाली जरूर हो जाती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। जितनी भी आर्मी वाइफ, आर्मी में इनकी वाइफ इस वक्त हमें सुन रही है ना, इट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू टू देम। कितनी प्यारी बात इन्होंने यहाँ पे की है कि वैसे भी जिस घर में महिलाएं हैं, जिस घर को महिलाएं सजा रही हैं, और खास तौर पर जब घर के पुरुष देश सेवा में नहीं थे, देश सेवा में तत्पर हैं और घर से दूर है, ना जाने कितने समय तक घर नहीं पहुँच पाते हैं, वो कंप्लेन नहीं करती और घर वैसे का वैसा ही चलता है। जैसा कि आपने बताया कि जब घर पहुँचा तो बेटे ने जिस तरह से आपको देखा, तो इसके भी बहुत सारे पहलू, लेकिन एक पहलू आपके जीवन, आपके बचपन से जुड़ा हुआ। आप क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो आपके पापा, आपके फादर खुद एक सर्विसमैन
0: एडमिनिस्ट्रेटर
1: है, तो आर्मी मैन है, तो आप के लिए ये, आपने बहुत देखा होगा कि इस शहर, उस शहर, उस राज्य बहुत ज्यादा ऐसे उधर इधर से उधर ट्रैवल करते होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे दोस्त भी बनते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स भी चेंज होते होंगे, उसकी कुछ यादें बातें साथ हैं।
0: मुझे लगता है कि फौजीज के बीच में ना एक बड़ा फेमस है बात कि फौजियों की दोस्ती रेलवे स्टेशन तक ही होती है। हर रेलवे स्टेशन पर कुछ फौजी दोस्त पीछे छूट जाते हैं, जब आप अगले रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो कुछ नए फौजी आपके दोस्त बन जाते हैं। बढ़िया बात यह है कि पिछले वाले चलते रहते हैं, अगले वाले जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी के साथ एक बार सर्व कर लें और अगर कल वो आर्मी चीफ भी बन जाता है और जब आपसे मिलता है और आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि सर मैं वहां था, अरे तू वहां था, मतलब वो जो आप अगर एक आर्मी चीफ को भी देखेंगे उसके एग्जैक्ट वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं कि अरे तुम भी वहां थे, तुम कहाँ थे। दैट अमाउंट्स टू के पीछे का दोस्ती आगे बढ़ रही है और आगे की दोस्ती जुड़ती चली जा रही है। इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि फौज के लिए एक अचीवमेंट हो सकती है कि वी आर एग्जेम्पलरी इन दिस, कि जो भी है सबसे बड़ी बात यह है हम हमेशा दोस्त हैं।
1: वाह क्या बात है, हमेशा दोस्त हैं। तो केवी स्कूल से आप पढ़े हैं और केवी स्कूल्स की जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग हो, वहाँ के बच्चे हों, वहाँ की टीचर्स हों, तो असंख्य यादें आपके साथ होंगी और वो दोस्त आज तक आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ये तो इस बात को मैं सुनिश्चित कर चुकी हूँ यहाँ पर। ये बताएं मुझे कि क्या आपने ये सोच लिया था स्कूल खत्म होते होते कि जाना है तो आर्म फोर्सेज ही जाना है, ऐसा कुछ था मन में?
0: नहीं, मुझे लगता है मेरे स्कूल में मेरे लिए सबसे खराब बात एक ही थी कि मेरे टीचर्स सोचते थे कि कैंटोनमेंट का स्कूल है, फौजी का बच्चा है, इसको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट डन एज फार एज मैं, जहां तक मेरे लिए बात है, भाई आप, मैं, मेरे फादर फौजी हैं, आप चाहते हो मैं भी डिसिप्लिन ही हूं, बिल्कुल सीधा हूं, जहां खड़ा कर दिया वहीं खड़ा हो जाऊं, जहां आपने लाइन में खड़ा कर दिया वहां पर खड़ा हो जाऊं, शोर नहीं करूं। अब मुझे मुझे मैं इसमें काफी हद तक, अगर आज भी मेरे स्कूल वाले केंद्रीय विद्यालय चंडी मंदिर वाले बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि सर आपसे ज्यादा बदमाश कोई नहीं था।
1: वाह क्या बात है, यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि किस तरह के बच्चे थे आप, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अलग से शैतानी करते हैं, जिसकी वजह से वो रिकग्नाइज हो जाते हैं, जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, वो बच्चे लाइफ में आगे चल के बहुत एक्सेल करते हैं।
0: मेरे ख्याल हमारा स्कूल बड़ा इंटेलिजेंट था, हमारे प्रिंसिपल टीचर्स जो थे ना दे वर वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया लोग थे। पता है क्यों? जो सबसे शैतान बच्चा होता था उसे स्कूल कैप्टन बना दिया जाता था,
1: अच्छा
0: और मैं 2 साल तक स्कूल कैप्टन ही बना रहा
1: वाह क्या बात है,
0: है।
1: क्या बात
0: मतलब
1: है।
0: आज भी मेरे स्कूल ग्रुप में लोग यही बोलते हैं कि सर हम तो आपको सिर्फ स्कूल कैप्टन के तौर पर जानते हैं,
1: हाँ
0: क्योंकि अब स्कूल में जैसे ही आप स्कूल कैप्टन बने तो शैतानियां कम हो गईं।
1: वाह

0: क्या बात है, शैतानियां कम हो गई। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सभी जितने भी दोस्त हैं ना, जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके लिए एक बहुत प्यारा सा नगमा यहाँ पर प्ले करती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और कहते हैं कि खुशी जो है दोस्तों से बढ़ती है और दोस्तों की वजह से परवान चढ़ता है। हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो, जब भी वो दोस्त मिलते हैं तो खुशी में हमेशा इजाफा ही होता है।

0: वैसे आज स्टूडियो की खिड़की में से भी ना खुशियां ताक झांक रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनकी किसे कहानियां जब आप सुनेंगे तो आप उनकी वीरता के गाथा जग जग तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो उनसे जाननी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना खुश मिजाज है, जिस तरह से हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं। कर्नल साहब, मैसेज यही आ रहे हैं कि आपकी खुश मिजाजी सुनकर ना सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं और उनको बड़ा मज़ा आ रहा है आपको सुनने में। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो पल जिस वक्त आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, उससे पहले बहुत सारे सवाल जवाब जरूर हुए होंगे। घर पर किस तरीके का माहौल था? बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था? क्या घर से आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती थी ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? किस किस तरह से आप अपने गंतव्य तक पहुँचे, ये कहानी ज़रूर सुनाए।
1: मुझे लगता है कि फौजी अफसर के बेटे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि घर में हिटलर रूल चल रहा होता है।
0: अच्छा,
1: हमारे लिए उनको हम उस समय हिटलर रूल बोलते थे कि ड्राइंग रूम में आप आ नहीं सकते, सोफे के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, चारपाई में कूद नहीं सकते, अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही बैठना है, आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते जब सब ना आ जाएं, खाना क्लोज करना है तो जब ही करना है जब कोई सारे क्लोज कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, एटलीस्ट मुझे लगता था इस सबसे हट के खाना चाहिए कि उस रोटी के अंदर हम आलू की सब्जी भरें, उसको गोल गोल घुमाएं और उसको पोंगा बनाकर खाते हुए घूमते जाएं। बट ये अलाउड नहीं था। सो ये मैं ज़रूर मानूंगा। बट एट द सेम टाइम ज़्यादातर घरों में क्योंकि यही था, तो जब हम बाहर भी जाते थे तो कोई लड़का या लड़की जो कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के होते थे, अगर इस तरह की कोई हरकत करी तो वो बाकी भी टोक देते थे, क्योंकि मे बी देवर मोर डिसिप्लिन। बट पर्सनली अगर मुझे लगता है, अगर मैं अपना याद करूं, तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं करे, बट मुझे डिसिप्लिन अपने आप में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को रुकावट के तौर पर देखता था। एंड आई वॉन्टेड टू फ्लाई फ्री, कि उल्टे सीधे सारे काम क्यों ना करूं। ये एक अच्छी बात हुई कि डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट था कि मैं कोई उल्टा काम कर ही नहीं पाया, जो मुझे लगता है आज भी कि दारू पीने की बात कर लो या सिगरेट की बात कर लो, तो वो इतना बड़ा टैबू था कि नहीं। और उसमें मेरे फादर का कंट्रीब्यूशन है कि यस, वो खुद भी नहीं पीते थे, तो वो भी एक बड़ा वो था। वो खुद भी जिम्मेदारी से चलते थे, वो वॉक करते थे, वो पीटी करते थे, तो देख के अच्छा तो लगता था। हम उसी से स्पोर्ट्स में आ गए। और जहाँ तक बात आती है फौज ज्वाइन करने की, तो वेल कैंटोनमेंट्स में, स्कूल्स में ये एक माहौल बनता है कि आप 12वीं के करीब एनडीए का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, अगर आप कॉलेज वाले हैं तो सीडीएस का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। अब मेरे जैसे जो चाहे नहीं भी चाहते थे, क्योंकि 6-7 दे रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए ईगो हैसल के चलो मैं भी दे लेता हूँ, तो हम 7 बच्चों ने एनडीए का एग्जाम दिया, और मानिए मेरी बात, 7 का क्लियर हो गया, 7 क्लियर हो गए। लेकिन एक 8वां बच्चा था, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने नहीं दिया था। उसने कह दिया कि आईआईटी होता है जो भी एग्जाम असली, ये तो सब बेकार है। 7 के 7 एसएसबी एग्जाम देने नहीं गए।
0: अच्छा,
1: 8 के 8 ने आईआईटी का एग्जाम पर जोर लगाया, और 8 के 8 में से सिर्फ वो एक आईआईटी निकल गया, हम 7 रुक के रह गए। मतलब आप सोचिए कि दूसरे के ऊपर जाने। और फाइनली ग्रेजुएशन के बाद उन्हीं 7 में से हम 4 वापस आर्मी के अंदर आ गए।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि कुछ नियतियां तय किया होता है और कुछ आपकी इंस्टिंक्ट्स ने, यानी कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उस रास्ते पर जरूर चलते हैं। तो एनडीए के थ्रू तो एंट्री नहीं हुई आर्म फोर्सेस में, फिर कौन सा रास्ता था जिसकी वजह से आप पहुंचे?
1: वो हम ग्रेजुएशन, आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन, वो अपना शिमला में था, मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर माहौल में हमारे पास चार हम इकट्ठे थे। एक होता था एनसीसी वाला, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। एक और होते थे, वो होते थे अपना एक बॉर्डर रोड्स के, और एक और लड़का था, तो हम 4 थे। तो सडनली वो जो एनसीसी का था, आज भी मुझे याद है, सतीश सूद उसका नाम था, वो अंडर ऑफिसर होता था, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ इसलिए

0: था, नॉट बिकॉज ऑफ एनसीसी, क्योंकि मैंने एनसीसी नहीं ली थी, क्योंकि एनसीसी की सैटरडे को जब परेड हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं,
1: अच्छा
0: तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिलने चाहिए, तो वहाँ हमारा इंट्रैक्शन उससे बढ़ा और देखा कि फाइनली वो एग्ज़ाम दे रहा है। जब वो एग्ज़ाम दे रहा था तो हमने कहा चलो भाई हम भी एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, कितना और। सो मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को दे देने में कोई बुराई नहीं है, एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फादर तब तक इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे और मैं अकेला रह रहा था, तो मैंने ये एग्ज़ाम दे दिया। और एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का फाइनल डे का एग्ज़ाम दिया, उस दिन शाम को मैंने कॉर्पोरेट हाउस में जस्ट लाइक दैट स्पेकुलेटिवली इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने थ्रू कर दिया
1: अच्छा
0: और उन्होंने बोला कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। सो मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरी जॉब लग गई,
1: अरे वाह,
0: और उस जॉब के साथ ही साथ एक और खुशखबरी आई कि आपका CDS एग्ज़ाम क्लियर हो गया है,
1: वाह,
0: तो वहाँ से कॉल अप लेटर आ गया SSB का। तो हमने उस जॉब के अंदर 3 दिन की छुट्टी लेकर गए कि भाई जाकर देख कर आते हैं बेंगलोर में क्या हो रहा है, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहाँ गए, वहाँ पर देखा कि वो पहले दिन, अदरवाइज काफ़ी को पहले दिन वापस कर दिया जाता है, तो पहले दिन हमारा पता नहीं क्यों सिलेक्शन हो गया।
1: अच्छा
0: अच्छा, अगले 3 दिन उन्होंने और कराया, ग्रुप टास्क, ये टास्क, वो
1: तब
0: स्टाफ, तो
1: GTOs आपके हुए
0: हाँ
1: होंगे।
0: GTOs वाला जो काम था वो भी आ गया, तो वहाँ फिर लाइनअप लगी, तो वहाँ पर 3 लड़कों को बोला गया कि तुम आगे और बाकी पीछे, और पीछे वालों को बोला गया पीछे मुड़, तेज चल, आप बाहर जाइए, आगे 3 वाले। तो वहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी ड्रिल होती है कि बच्चा लोग गाड़ी में चढ़ो जो रिजेक्ट हो गए, साहब लोग आप आगे आओ।
1: अच्छा
0: तो हम उस दिन साहब बन गए सडनली।
1: वाह, क्या
0: सो
1: बात
0: आई
1: है,
0: हैड टू एक्सटेंड माई लीव के भाई चलिए अभी 3 दिन और मेडिकल होना है, तो इसने मेडिकल होता रहा। अब वो पता नहीं क्या किस्मत, यही बोलते हैं कि हर चीज़ पहली बार में होती चली गई, और उसके लिए आज मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि आई वर डेस्टाइंड फॉर दिस,
1: यस,
0: मेरी किस्मत जो थी भगवान ने फौज के लिए ही लिखी थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फौज के साथ शादी करी, काश मैं अपनी बीबी के साथ निभा पाता।
1: क्या बात है। अच्छा कर्नल साहब, एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर मैं आपके अतीत के पन्नों को पलटूं, आपके बचपन, जैसे आपने अपने बताया कि आपको लगता था यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू वर फुल ऑफ लाइफ, बचपन को जीना चाहते थे, खूब दुनिया को देखना चाहते थे, अपनी तरह से चीज़ों को करना चाहते थे, आपने कहा कि शैतानियां भरपूर करते थे, शैतानियों से भी ऊपर शैतानी करती, जिसकी वजह से आप स्कूल कैप्टन बन गए 2 बार, क्या वो शैतानी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद बरकरार रही, या एक अलग सा ड्रिफ्ट आ गया आपकी जिंदगी में, सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने का नजरिया पूरा बदल गया सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद?
0: नहीं, बट मुझे लगा कि मैंने फौज में बढ़ चढ़ के शैतानी करी,
1: अच्छा,
0: बढ़
1: इतना
0: चढ़ के,
1: शैतानी,
0: बढ़ चढ़ के,
1: क्या बात है,
0: जो जो बारिश में मैं अपने एज अ सन ऑफ आर्मी ऑफिसर नहीं कर पाया कि मैं शर्ट खोल कर निक्कर पहन कर बारिश में
1: अच्छा
0: भीगूं और इंजॉय करूं, जो मैं वहां नहीं कर पाया वो मैंने फौज में किया
1: वाह,
0: अपने जवानों के साथ कि भाई चलो आज बारिश तगड़ी आ रही है, सब अपनी अपनी शर्ट उतारेंगे। अदरवाइज मेरे फादर तो कभी शर्ट उतारने नहीं देते कि पब्लिकली आप कैसे उतार सकते हो। हम तो जब बास्केटबॉल खेलते थे तो अभी भी फौजी याद करते होंगे, मैं तो अभी भी याद कर सकता हूँ, एक होती थी बनियान वाली टीम और एक होती थी नंगा टीम। नंगा टीम का मतलब है आपकी बनियान नहीं होगी
1: अच्छा
0: और जो दूसरी टीम है उसके बाद बनियान होगी। पता नहीं क्यों मैं हमेशा नंगा टीम का पार्ट होता था, यार बनियान उतारने को मिल रहा है। मैंने मैंने अपनी तरफ से भरपूर शैतानी करी, मैंने अगर ऑपरेशनल शैतानी भी बोलो तो उसमें भी मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, कि जहां लोगों का कहना था कि आपको गोली चलाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए, हमें कभी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने पूछा जरूर, हमारा एक्सप्लेनेशन भी हुआ कि
1: अच्छा
0: आपने क्यों किया, बट हमने अपनी तरफ से खुल के जिंदगी जी है फौज के लिए और फौज की मौज के लिए।
1: वाह, क्या बात है, वो जो आपके अंदर बच्चा विराजमान था और है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको कहे थे ना ट्रू जेंटलमैन, उसी ने आपको ट्रू जेंटलमैन बनाया, और उसका परिचय आज आपसे बात करते हुए मिलता है कि वो ट्रू जेंटलमैन उस बच्चे ने आपको बनाया और बच्चा आज भी

0: लिए आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए, हमें कभी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने पूछा जरूर, हमारा एक्सप्लेनेशन भी हुआ अच्छा। कि आपने क्यों किया, बट हमने अपनी तरफ से खुल के जिंदगी जी है फौज के लिए और फौज की मौज के लिए।
1: क्या बात है, वो जो आपके अंदर बच्चा विराजमान था और है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको कहे थे ना ट्रू जेंटलमैन, उसी ने आपको ट्रू जेंटलमैन बनाया और उसका परिचय आज आपसे बात करते हुए मिलता है कि वो ट्रू जेंटलमैन उस बच्चे ने आपको बनाया और बच्चा आज भी जिंदा है, आपसे बात करते हुए महसूस हो रहा है। तो उस बच्चे के नाम ना ये गाना हमारी तरफ से।

0: कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अगर इनके कैनवस को देखूँ ना मैं, तो मैं कहूँगी हिज कैनवस इज लार्जर देन लाइफ। वाई? क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के नाम किया है, और वो हिस्सा ना आज भी देश की ही बात करता है। लेकिन लेकिन कहते हैं कि जिंदा दिली व्यक्ति को हमेशा हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी जीने के लिए प्रेरित करती है। और इसी जिंदा दिली की वजह से हमारा आज का ये शो, आज का ये कार्यक्रम किसी और दिशा में है। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दिशा में ना गोते मार रही हूं। अब कर्नल सिंह, आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। भले ही आपने अपनी जिंदगी, आपकी सोच, आपका परसेप्शन जीवन जीने का मौज मस्ती के साथ रहा हो, पर मैं ये बात ज़रूर कह सकती हूँ कि आपसे लोग डरते भी बहुत होंगे। जब डिसिप्लिन की बात आती होगी, जब फौज में रहे, जब कमांड किया, जब नेतृत्व किया, जब फैसले लिए, तो माहौल उस वक्त कुछ और रहा होगा, निश्चित है।
1: नहीं, देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, मैं मान लूंगा इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर वो डिसीजन जो लिया उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। अगर मैंने अपने बैटरी को या अपनी कंपनी को बोला कि हम इस दिशा में जाएंगे और मालूम है कि वो दिशा गलत है, तो मैं उसमें सबसे आगे चल रहा था कि यस, हम गलत जा रहे हैं, हमें मालूम है कि यहाँ रिस्क है और हम रिस्क लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आगे हूँ तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे को कभी नहीं नज़र आया कि कहीं किसी ने आँख भी झपकी हो कि अगर मैंने कह दिया कि इधर, तो सिर्फ इधर ही होगा, उधर का मामला हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी रेजिमेंट आज भी मुझे कई बार सो कॉल्ड ब्लेम कर लेती है कि जिसने इधर का उधर देखा उसका बैंड बाजा बारात उधर ही बज गया। मतलब हमारे टाइम में हमारे को ये कष्ट नहीं होता था कि हमने किसके थप्पड़ मारा या नहीं मारा, किसकी कुटाई हुई या नहीं हुई। बड़ी सीधी बात है कि जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो तू करेगा। सो दैट इज़ द वे जो लाइफ है। और मुझे लगता है कि रेजिमेंट्स के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी अलग लाइफ होती है। आप में और आपके जवान में फ़र्क नहीं है, फ़र्क है तो सिर्फ कंधे का है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब हम गेम खेलते हैं तो हम कंधे पर स्टार लगाकर नहीं खेलते हैं। उसमें अगर मेरे जवान बिना बनियान का नंगा टीम का पार्ट है, तो मैं भी उतना ही नंगा टीम का पार्ट हूँ कि मैंने भी सिर्फ अपना शॉर्ट्स पहने हैं, निक्कर पहनी है, जूते पहने हैं, इसके अलावा मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। जिसको बोलते हैं ना, कंधे से कंधा नहीं, छाती से छाती टकराती है। और वहाँ हम पाते हैं कि हमारा जवान कभी नहीं ये सोचता कि मेरा अफसर कहीं डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है या नहीं। यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म सही पहननी पड़ेगी। सलूट मारना है, सलूट सही मारना ही पड़ेगा। इसके लिए कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें आपकी टुकाई नहीं होगी, मेरे तरीके से ठुकाई होगी। बड़ा सीधा सीधा तरीका है काम करने का। मुझे लगता है कि आज भी मेरी रेजिमेंट जब जिस तरीके से मुझे याद करती है, मुझे आज तक उसमें यह नजर नहीं आया कि किसी ने यह कहा हो कि सर आपने मुझे गलत मारा। आज भी लोग कहते हैं सर आप आरपी गेट में घुसते थे तो हम इधर उधर हो जाते थे कि भाई साहब बवंडर आ गया, पता नहीं आज किसको लपेटेगा। सो दैट इज अ सिकनेस। सिकनेस को अगर सिकनेस की तरह देखना है तो यस, इट वॉज सिकनेस। बट मुझे लगता है मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरे रेजिमेंट की डिसिप्लिन किसी हालत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। मैं इनडिसिप्लिन हो सकता हूं, मेरा जवान हो सकता है, बट रेजिमेंट के नाम पर गलत चीज होने नहीं दूंगा।
0: जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उस दौर की, जिस दौर में आप सीडीएस आपने क्लियर किया। सीडीएस क्लियर करने के बाद घर पर बताया, पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी?
1: नहीं, पिताजी एक्चुअली बहुत ज्यादा कीन नहीं थे। क्योंकि देखिए, ये जब 85, 86, 87 ये जो वो वाला दौर है जहां आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉर्पोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया। 2800 रुपए मेरे को पहली तनख्वाह वहां मिली, और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो जीरो थी। ये तो हमारी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपये महीना वहाँ पर भी अलाउड हो गए, लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं, वो 1500 आपको कभी मिले नहीं। बोला आपके जमा होते रहेंगे। अच्छा। आप नहीं तो खर्च कर दोगे, मतलब खाने पीने में दाएं बाएं कर दोगे। सो माई फादर वॉज वेरी क्लियर कि भाई एक काम करो बेटा, देखो देख लो, अच्छा खासा तुम्हारे पास 2800 का जॉब है, अब आप जीरो पर आ जाओगे। और उस समय एक लेफ्टिनेंट की, सेकंड लेफ्टिनेंट की जो पे थी वो भी 2300 रुपए थी। मतलब 2800 से भी

0: सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे अलाउ किया। हालांकि मैं अब अगर बाद में देखता हूँ ना, सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं किसी को हुई थी तो मुझे लगता है मेरे फादर को हुई थी।
1: वाह, अपने बेटे को अपने पद चिन्हों पर चलता देख किसी भी पिता के लिए गर्व की बात हो सकती है, और आप उसका उदाहरण भी हैं। तो 1987 में आप ओटी गए, ओटीए चेन्नई, जहाँ से आपने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद फिर 1988 में कमीशन हुए,
0: जी
1: तो
0: जी
1: पहला डिप्लॉयमेंट कहाँ डिप्लॉय किए गए?
0: ओ, ये मेरी बदकिस्मती है
1: अच्छा,
0: कि पोस्टिंग आई जोरिया, दैट इज जम्मू, लेकिन उसकी एडवांस पार्टी जा रही थी मेरठ। सो हमें बोला गया एकदम से जाओ, और वो इसलिए जाओ क्योंकि वो गेम्स जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इस वजह से हमें मेरठ आना पड़ा। लेकिन यहीं पर बोलते हैं कि किस्मत का टर्न देखिए, वर्स्ट राइड्स ऑफ इंडिया टुक प्लेस वो समय 1988 वाले वो मेरठ में हुए थे, और आज मैं कह सकता हूं तब से लेकर अब तक कभी कोई रॉइट नहीं हुआ मेरठ में।
1: वाह,
0: तो ये किस्मत वाली बात है कि मैं उसका पार्ट था, और वहीं से पंजाब की ऑप रक्षक वाला जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारी यूनिट को मिला। तो मेरे को आज भी याद है, हम धालीवाल में थे, हम डेरा बाबा नानक वाला जो इलाका है वहां थे, जहां पर के ट्रेन जब जाती थी तो वो डेरा बाबा नानक के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाती थी, वो उससे 2 किलोमीटर पहले ही रुक के वापस आ जाती थी क्योंकि उसमें कोई होता ही नहीं था। तो एक बार तो मैं अकेला था, अकेला ट्रेवलर इन द ट्रेन, और सबसे बड़ी वो देखिए कि काउंटर इंसर्जेंसी का टाइम चल रहा है और मैं अपनी कार्बाइन लेके चल रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं कोई दूर दूर तक नहीं है, तो मैंने फटाफट अपना सूटकेस खोला, कार्बाइन उसके अंदर रखी और उसे बंद किया। मैंने कहा अगर यहाँ तो दिख गया किसी को तो शायद वो कार्बाइन के लिए आएगा। लेकिन जब मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो व्हाई नॉट कार्बाइन, सो आई टुक इट आउट, आई डिस्प्लेड। मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल गया, लोगों ने दाएं बाएं देखा लेकिन कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई, नजर नहीं उठाई कि भाई एक फौजी जा रहा है अपना।

0: सो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट. हमें सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मौका मिला कि हम काउंटर इंसर्जेंसी पंजाब में पार्टिसिपेट करें.
1: क्या बात है, बहुत गर्व महसूस हुआ करता होगा ना उस वक्त जब जैसे ऐसे ऑपरेशंस मिलते होंगे और जिन जिन ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते गए, तो जैसे कि आप खुद एक डेस्टिनी लवर हैं कि किस तरह के से आपकी किस्मत आपको आर्म्ड फोर्सेस ले आई, उस तरह से जैसे जैसे आपको ऑपरेशंस मिले होंगे और जिस जिस ऑपरेशन पर आपने हिस्सा लिया, गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज़्यादा.
0: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी.
1: अच्छा,
0: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ. मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर जीओसी कुछ नहीं. मुझे लगता था मैं ही हूँ, मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी, हम दो ही हैं जो दुनिया ठीक करने वाले हैं, पूरी काउंटर इंसर्जेंसी को ठीक करने वाले हैं. सो गौरवान्वित मेरे को लगता है बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा मेरे लिए. हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे.
1: वाह क्या बात है, ये जो फीलिंग है ना आपकी कि सब कुछ अब मुझ पर निर्भर करता है और मेरे ही मेरे फैसले से काया पलट हो सकती है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि यू वर अगेंस्ट एनीथिंग. आपने अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से पकड़ लिया था कि अब जो करना है मुझे करना है, सब कुछ मेरे कंधों तले है. क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? करना
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि हम ही उस जगह की डेस्टिनी बना रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था. इसमें कोई शक नहीं है मुझे. आज भी अगर मैं बोलूं तो आपके स्टूडियो में बैठकर मुझे नहीं लग रहा कि आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं.
1: वाह क्या बात,
0: मैं आपका शो कंडक्ट कर रहा हूं मुझे. और ये मैंने अपनी फौज में जिया है, अपने जवानों के साथ जिया है, अपनी रेजिमेंट के साथ जिया है. मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूं या मैं देश के लिए लड़ रहा हूं. मैं लड़ रहा था, काम कर रहा था मेरी रेजिमेंट और मेरे जवानों के लिए.
1: बहुत खूब बहुत खूब. तो वो और कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं आपके जिनका आप यहाँ जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि हर ऑपरेशंस मैं कहती हूँ कि शायद हमारे पास इतना समय नहीं कि हर ऑपरेशन पर बात कर पाए, पर निश्चित रूप से आपके पास इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम उन ऑपरेशंस का नाम जरूर ले सकते हैं यहाँ पर.
0: देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे रिवॉर्डिंग ऑपरेशन अगर बात करी जाए तो आई थिंक मेरे लिए जेएनके रहेगा श्रीनगर
1: जी,
0: क्योंकि उसका रिवॉर्ड ये था कि मैं जेएनके के सो कॉल्ड काउंटर इंसर्जेंसी में था और मेरी वहाँ शादी हो गई. सो इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है? अगर कहीं किसी और दिल्ली विल्ली में होता तो पता नहीं कोई शादी करता या नहीं, बट हमारी श्रीनगर में शादी हो गई.
1: वाह क्या बात है. तो आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना या किसी और ने आप दोनों को मिलवाया और आपको प्रणय सूत्र में बांधा?
0: नहीं, ये ना एक्चुअली हमारे फौज में तो जो सीनियर फौजी होते हैं ना वो बड़े तगड़े होते हैं. तो मेरी वाइफ के जो चाचा जी थे वो फौज में थे और वो वहीं पर श्रीनगर में थे. उन्होंने मेरे ऊपर पूरा अच्छा खासा होमवर्क रिसर्च करके और ठा करके सामने रख दी लड़की. अब वही वाली बात है कि फौजियों की एक कमजोरी ये जरूर होती है कि सुंदर चीज को सुंदर मानने में बुराई कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. एंड वी गॉट मैरिड.
1: क्या बात है,
0: श्रीनगर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड शादी.
1: वाह क्या बात है, क्या बात है, मतलब यहाँ से तो पूरी काया पलट हो गई. और जो सुंदर काया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन की काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है आज तक, वो आपको मिल गई. अच्छा, अब कारगिल युद्ध की अगर बात करें, ये आपके जीवन का शायद एक ऐसा चैप्टर जरूर रहा होगा जिसके बारे में आप बार बार जिक्र करना चाहते हैं.
0: मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है हमारे लिए. कारगिल हमने अपने इस हाथ में अपने बंदे खोए हैं. आज भी मेरे घर मेरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये लाल हाथ दिखते हैं. कारगिल वो लड़ाई थी जो कभी नहीं लड़ी जा सकती फिर से, ना पहले ना बाद में. उन हाइट्स को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस आ सकता है कि ये लड़ाई हो ही नहीं सकती जिस लड़ाई को हमारी फौज लड़ गई. जिन जिन जिन टारगेट्स के ऊपर हम गोला दाग रहे थे, जिसके ऊपर हमारे अपने लोग चढ़ रहे थे, हम उसमें से एक थे, कि उस चढ़ाई को चढ़ना इम्पॉसिबल मेरे ख्याल बड़ा छोटा वर्ड होगा. दैट इम्पॉसिबिलिटी वॉज मच बिगर, बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थी. बट उसके बावजूद जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वो अनहोनी चीजें करते जा रहे थे, वहां से निकल कर आ रहा था कि यार ये करना अब हमारे लिए रूटीन है. जब पहली पोस्ट आप कैप्चर करते हो तो तकलीफ होती है, उसके बाद

0: थिंक बड़ा फेमस डायलॉग टाइगर हिल वाली साइड में चला, हम बटालिक साइड में थे, लेकिन वहाँ से और यहाँ से कॉमनैलिटी ये आई कि अब दिल ना मांगे मोर, अब दिल मांगे मोर एंड मोर।
1: कैप्टन विक्रम बत्रा
0: सीधी सीधी मोर एंड मोर पर बात आ गई थी। कोई जवान, कोई अफसर सेटिस्फाइड ही नहीं था कि एक पोस्ट कैप्चर कर ली तो अब यहां रुको, अगले पर, उससे अगले पर। वो जो स्पिरिट थी, मुझे लगता है वो सब इम्पॉसिबिलिटीज को पीछे कर बैठी और अपने आप में वो लड़ाई एक विनिंग लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। अदरवाइज मैं आपको जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूं, 15,000-18,000 फीट पर जहां ऑक्सीजन कंटेंट आपको 30% मिलता है, सांस लेना अपने आप में तकलीफ है, आप वहां भाग रहे थे, आप वहां दुश्मन के पोस्ट की तरफ भाग रहे थे, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए। दिस वॉज अ इम्पॉसिबल लड़ाई। एंड मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, 528 लोग उस दिन मारे गए। मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, 528 लोग उस दिन वीरगति को प्राप्त हुए, 527 ऑफिशियल है, 528 वहां आपके सामने बैठा है। हम उसमें अपनी जान नहीं दे पाए। मुझे लगता है भगवान ने मेरे साथ क्रूरता करी कि मैं वो 528वां आदमी होना चाहिए था जिसे उन 527 का बराबर का हकदार मानना चाहिए।
1: शब्द नहीं है, निशब्द हूँ। एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रही हूँ जो जिंदगी से भरपूर है, जिसकी बहुत इच्छा शक्ति है, जो बहुत जीवंत है, जो जीने की वजह बन सकता है, जो जीने की वजह बन रहा होगा लाखों लोगों को जो इस वक्त सुन रहे होंगे। वो ये कहता है कि वो अपने प्राण नहीं दे पाया। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। शब्द नहीं है हमारे पास इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह की बातें सुनने के बाद। किस किस मिट्टी के बने हैं आप, ये जरूर बताएं। और इसका श्रेय मैं भारतीय सेनाओं को देना चाहूंगी कि एक एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर, अपनी माँ की आंचल से निकलकर सीधा पहुंचता है ट्रेनिंग लेने के बाद, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहाँ पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है। आई कुड सी कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आइज। किस तरह का पल वो रहा होगा शायद शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, आपकी नम आंखें इस बात का सबूत हैं, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहाँ साबित कर रहे हैं कि जब एक सोल्जर, एक सैनिक मैदान जंग में जाता है तो यही सोचकर जाता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं जा ही रहा हूं देश के लिए, अपने प्राण त्यागने के लिए। आप और 527, टोटल 528, वो सभी सोल्जर्स, उनको हमारी ओर से नमन। हम यही कहते हैं, अगर आप नहीं तो हम नहीं। एक और व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको मौका मिला, आपको ये मौका दिया गया, जो आपने अपना कार्यकाल जिया है, जो आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपने वो यूनिफॉर्म, वो पोशाक पहनी है, चौड़ा अपना सीना चौड़ा करकर अपने मेडल्स लगाए हैं, अगर वो मौका दोबारा से मिले, क्या आप दोबारा से जीना चाहेंगे उन्हीं पलों को?
0: मैं पहले वाला मौका ही अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ।
1: ओह, अभी तक
0: दैट
1: जीवन है।
0: यूनिफॉर्म, ये वो यूनिफॉर्म मेरे ऊपर अभी भी है,
1: वाह,
0: वो मेरे दिमाग पर अभी भी है। और जब आप कहती हैं मेरी आंखें नम है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, मुझे गर्व है उन नम आंखों पर कि उन 527 जानों के लिए अगर आज भी मैं एक बूंद अपनी आंखों से पानी बहा पाता हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इट्स अ सेटिस्फेक्शन फॉर मी। और जहाँ तक बात है रीलिव, मैं आप आपको पता नहीं कैसे लग गया कि आई एम नॉट, आई हैव टू रीलिव, मैं तो ऑलरेडी लिव कर रहा हूँ। मेरी यूनिफॉर्म ना उतरी है ना उतरेगी, एज फार एज आई एम कंसर्न। फौजी दिखाने के लिए आज मैंने आपके सामने टाई पहन ली होगी, लेकिन इस टाई के पीछे मेरी यूनिफॉर्म अभी भी बिल्कुल बरकरार है।
1: वाह, आपने आज निशब्द कर दिया। आपके किरदार के, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू, किसी आर्मी ऑफिसर के इतने सारे पहलुओं को जानने के बाद ये लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि किस मिट्टी के बने हैं, हम ये कहेंगे भारत की मिट्टी से बने हैं, कण कण भारत की मिट्टी से बने हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने हमेशा देश के

0: बारे में सोचा, और शायद आपने देश के बारे में सोचा, शायद आप देश के लिए अब तक सिर्फ देश के लिए जी रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जितने भी युवा हैं जो आर्म फोर्सेस जाना ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनके लिए मिसाल हैं। क्या कहना चाहेंगे उन सबसे आप?
1: मैं एक ही बात कहूंगा, अगर जिंदगी जीनी है तो फौज की जी लो, अदरवाइज जी तो सभी रहे हैं, बट अगर जिंदगी जीनी है तो आपके पास एक ही जिंदगी है और उसे मैं कहता हूं फौजी जिंदगी। अदरवाइज आप जी वैसे भी लेंगे ऐसे भी लेंगे, बट अपने आप में मेरा इसमें अहंकार नहीं है, मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप फौजी जिंदगी नहीं जी पाए तो भी आपके पास मौका है, अपने देश के लिए जरूर जी लो। देश के लिए जी लिए तो आप ये समझ लेना कि आप फौजी की जिंदगी जी लिए।
0: बहुत खूब। यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ जो मैं दिल से चाहती हूँ पूछूँ। एक वो पल जहाँ आप बहुत मेजर ऑपरेशन में हैं, जहाँ पे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, जहाँ पे आपका नेतृत्व, पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन लेने की ताकत, जिस वक्त निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात करें, जहाँ आपके बहुत सारे साथी पल पल क्षण क्षण साथ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद हैं, आप जैसे व्यक्ति के लिए या उस उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी ऑफिसर्स के लिए उस वक्त डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है?
1: इम्पॉसिबल होता है कुछ डिसीजंस लेना, और आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में देखूं, आर्टिलरी में एक फायर होता है जिसको बोलते हैं फायर SOS, सेव आवर सॉल। दैट मींस जो OP ऑफिसर या इन्फेंट्री है वो अपने ऊपर फायर बुलाती है, और जब वो कह देता है कि टारगेट विक्टर ये, और जब मैं उसे गन एंड पर देखता हूं और मुझे दिखता है ये तो अपने ऊपर फायर बुला रहा है, सोचिए उस टारगेट के ऊपर जब 18 गन के 18 गोले आके क्या बचेगा। तो इसलिए हम उसमें फिर से पूछते हैं, दूसरी बार पूछते हैं, चेक फायर, सेफ्टी फायर, सारी चीजें ट्राई कर ली उस 1 मिनट के अंदर, लेकिन फाइनली जब डिसीजन लेने की बात आई तो वो भोंपू को मैं पकड़ता हूं और मैं कह देता हूं फायर।
0: क्या बात,
1: और वो फायर बोलना लिटरली अमाउंट्स टू कि मुझे नहीं मालूम कि वो OP ऑफिसर और वो कंपनी कमांडर उस फायर में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, बट उस गन एरिया के अंदर मैं अधमरा हो जाता हूं कि यार ये फायर मैंने अपने लोगों के ऊपर किया है, अपने लोगों द्वारा मांगने पर। अब इसमें गलती थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, बट इसको बोलते हैं कि फॉर्च्यून्स एंड द गॉड ऑल्सो स्टैंड्स विद पीपल हु आर ब्रेव। ब्रेवरी के साथ भगवान हमेशा होता है। उस अकेले जिंदगी के एक SOS फायर में हमारा कोई नहीं मरा, पाकिस्तान के सारे मारे गए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: सो ये डिसीजन लेना आई थिंक टफेस्ट पार्ट होगा एक गनर के लिए, कि उसे मालूम है कि आप फायर कहाँ कर रहे हो, अपने ओन ट्रुप्स पर कर रहे हो, और उसके बावजूद आप वो फायर कर देते हो।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग जो है हमें हमारी भारतीय सेनाएं देती हैं, और आप जैसे ऑफिसर्स को बनाती हैं, और आप अपनी कर्तव्य निष्ठा से, देश प्रेम से, और कहीं ना कहीं अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मैदान जंग में हमेशा फतह हासिल करवाते हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे संदेश भी आए हैं, और हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। राजेश भल्ला, एडवोकेट, कंकरखेड़ा मेरठ से जय हिंद लिख भेजा है इन्होंने। सौरभ बनेजा का हमारे पास गाजियाबाद से संदेश है, गुड आफ्टरनून। एक संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है पंकज का, अमरावती महाराष्ट्र से, और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी बातें सुनने के बाद कि आपने भारतीय सेना के बारे में, और भारतीय सेना क्योंकि जब हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली लाइफ के बारे में आपने हमें रूबरू कराया, ये और भी प्यारी और सुखद बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। संदेश हमारे पास रोहित मेहर का आया है ओडिशा से, और इनको आपकी खुश मिजाजी बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिंदा दिली पसंद आई। थाईलैंड से हमारे पास संदेश आया है मिस्टर अमोल भवाने का। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं, और हम यही चाहेंगे कि आप अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें। एक संदेश और है, बहुत बड़ा संदेश है, पर यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने पूरे सम्मान के साथ भारतीय सेना को सल्यूट किया है, वंदे मातरम कहा है, और ये हैं शंकर लोड द्वारका से। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल शैलेंद्र सिंह आपका, आप स्टूडियो में आए।

0: सबसे बेहतरीन बात आपके व्यक्तित्व को पहचानने के बाद हम जीवन में कुछ भी क्यों ना करें अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन अपने अंदर के व्यक्ति को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि यही जिंदा दली हमें परचम लहराने पर प्रेरित करती है।
1: देश अकेला है, जिंदगी अकेली है, जी लीजिए इसे अपने देश के लिए। जय हिंद, नमस्कार।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने साक्षात्कार किया, बात की कर्नल शैलेंद्र सिंह से, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और हम यही कहेंगे कि हम हमेशा आपके समक्ष, आप सभी ऑफिसर सैनिकों के समक्ष अपना शीश झुकाए खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और हमेशा गर्व से कहेंगे कि हमारी भारतीय सेनाओं ने हमें हमेशा मुस्कुराने की, जीने की वजह दी है। और आपको शत शत प्रणाम, शत शत नमन।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हाजिर हैं। सभा के आरंभ में युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं आपका अपना साथी करण वर्मा। स्वागत है आपका आज के इस अंक में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मानव जीवन में धैर्य के महत्व की, विज्ञान और मानव जीवन की, महान व्यक्तियों से मिली प्रेरणा की, हरित क्रांति की और साथ ही बात करेंगे आज के इतिहास की। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सन 2009 में बनी फिल्म कुर्बान के इस गीत से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं मानव जीवन में धैर्य के महत्व की। श्रोताओं, धैर्य मनुष्य के जीवन का

महत्वपूर्ण गुण होता है। धैर्य का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में घबराए बिना शांत रहकर और समझदारी से काम लेना है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी सफलता और असफलता, सुख और दुख व कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे समय में जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है वो कठिन परिस्थितियों में आसानी से बाहर निकल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि धैर्य का फल मीठा होता है। साथियों, आज के समय में हम सब जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन जीवन में हर अच्छी चीज समय जरूर लेती है। विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए नियमित पढ़ाई करनी पड़ती है। खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है और किसान को फसल तैयार होने के लिए कई महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि हम थोड़ी सी कठिनाई देखकर हार मान ले तो सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। ये धैर्य हमें लगातार प्रयास करते रहने की भी प्रेरणा देता है। मित्रों, प्रकृति भी हमें धैर्य का पाठ पढ़ाती है। एक बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बन जाता, उसे मिट्टी, पानी, हवा और समय की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे वो पौधा बनता है और फिर एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है। इसी तरह मनुष्य के प्रयासों का परिणाम भी समय के साथ मिलता है। हमें अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हुए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में धैर्य का गुण अवश्य अपनाना चाहिए। वास्तव में धैर्य परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ किया गया प्रयास सफलता की राह खोलता है। तो दोस्तों, बातें तो चलती रहेगी, आइए अब चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म नमस्ते लंदन का ये गीत।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
8: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
7: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
9: दोस्तों आइए अब बात करते हैं विज्ञान के चमत्कारों की। श्रोताओं, विज्ञान आज के युग की सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमारे मानव जीवन को सरल, सुखद और उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विज्ञान ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिनकी कल्पना पहले असंभव लगती थी। आज विज्ञान के कारण ही मनुष्य ने प्रकृति की अनेक शक्तियों पर नियंत्रण भी प्राप्त कर लिया है। साथियों, विज्ञान के चमत्कार हमारे दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जैसे बिजली, पंखा, टेलीविज़न, मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसे उपकरणों ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान ने क्रांति ला दी है। इस चमत्कार के कारण ही अब हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से कुछ ही क्षणों में बात कर सकते हैं। मित्रों, परिवहन के क्षेत्र में भी विज्ञान का अद्वितीय योगदान है। पहले जहां एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, वहीं आज रेल, कार और हवाई जहाज के माध्यम से ये दूरी कुछ घंटों में तय हो जाती है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी मनुष्य ने बड़ी सफलताएं प्राप्त की है, जैसे चंद्रमा और मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बनाना। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने कई असाध्य रोगों का इलाज संभव कर दिया है। नई नई दवाइयां और तकनीकें विकसित हुई है, जिससे मनुष्य की आयु बढ़ी है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है। दोस्तों, विज्ञान के लाभ के साथ साथ इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। परमाणु बम, प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान विज्ञान के गलत उपयोग के उदाहरण हैं। इसीलिए आवश्यक है कि विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। तो श्रोताओं, चर्चा तो चलती रहेगी, अब समय एक गीत का है। लीजिए अब सुनिए फिल्म क्या यही प्यार है का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, प्रेरणा मानव जीवन की वो शक्ति है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने, कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे जीवन में महान व्यक्तियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उनके जीवन से हमें सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महान व्यक्ति अपने कर्म, त्याग, मेहनत और दृढ़ निश्चय के कारण समाज में आदर्श बन जाते हैं। उनके जीवन की कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि यदि मन में सच्ची लगन और आत्मविश्वास हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। श्रोताओं, भारत और विश्व के इतिहास में अनेक महान व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को नई दिशा दी है। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, APJ अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तियों ने अपने जीवन से ये सिद्ध किया है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन व्यक्तियों ने न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त की, जबकि पूरे समाज को भी प्रेरित किया। मित्रों, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हमें ये सिखाया कि बिना हिंसा के भी बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। उनका जीवन सादगी और सत्यनिष्ठा का भी प्रतीक है। आज भी इनके विचार हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और समाज में समानता के लिए संघर्ष किया। वे हमें ये सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियां हमें रोक नहीं सकती, यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। तो दोस्तों, बातें और भी करेंगे, आइए एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, हम बात कर रहे थे महान व्यक्तियों के जीवन से मिलने वाली प्रेरणा की। श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को जागरूक करते हुए कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनके विचार आज भी युवाओं में ऊर्जा और आत्मविश्वास भरते हैं। इन्होंने भारतीय संस्कृति को और ज्ञान को पूरे विश्व में सम्मान दिलाया। महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जीवन सादगी, मेहनत और सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। इन्होंने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने की सलाह दी। इनका मानना था कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, जबकि सपने वो हैं जो हमें सो

नहीं देते। मित्रों, महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम अपने जीवन में सही दिशा चुन पाते हैं। जब हम इनके जीवन को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सफलता अचानक नहीं मिलती, जबकि इसके पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य होता है। इनके जीवन से हमें ये भी सीख मिलती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, जबकि उसे सफलता की सीढ़ी बनाना चाहिए। साथियों, आज के समय में युवा पीढ़ी के लिए महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेना बहुत आवश्यक है। मोबाइल और इंटरनेट के इस युग में कई बार विद्यार्थी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसे में महान व्यक्तियों के जीवन को पढ़कर हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। इनके विचार हमें अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देते हैं। वास्तव में यदि हम इनके आदर्शों पर चलें तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। तो श्रोताओं, चर्चा तो चलती रहेगी युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए। लीजिए अब सुनिए फिल्म बेवफा का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश भारत को खाद्यान्न की कमी जैसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। अनाज की पर्याप्त उपज न होने के कारण देश को विदेशी सहायता पर भी निर्भर रहना पड़ता था। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वैज्ञानिकों और कृषिविदों ने कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग किए, जिन्हें हम हरित क्रांति कहते हैं। श्रोताओं, हरित क्रांति का अर्थ कृषि उत्पादन में नई वैज्ञानिक तकनीकों, उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों के प्रयोग द्वारा उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि करना है। हमारे देश भारत में हरित क्रांति का आरंभ 1960 के दशक में हुआ था। डॉक्टर M.S. स्वामी

नाशक और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों के प्रयोग द्वारा उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि करना है। हमारे देश भारत में हरित क्रांति का आरंभ 1960 के दशक में हुआ था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। मैक्सिको के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित उन्नत बीजों के प्रयोग से गेहूं और धान की पैदावार में चमत्कारिक वृद्धि की गई है। मित्रों, इस क्रांति से हमारे देश को कई लाभ प्राप्त हुए, जैसे इससे हमारा देश भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, गेहूं और धान की पैदावार में कई गुना वृद्धि हुई, देश में अकाल और भूखमरी की समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हुई, किसानों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठा। साथियों, हरित क्रांति ने हमारे देश भारत को खाद्यान्न की कमी से उभारा और आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन आज आवश्यकता है कि हम द्वितीय हरित क्रांति की ओर बढ़ें, जिससे जैविक खेती, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए, तभी कृषि का संतुलित और स्थायी विकास संभव है। तो श्रोताओं, बातें तो चलती रहेगी, अब समय एक गीत का है। लीजिए, अब सुनिए फिल्म तेरे नाम का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं टुडेज हिस्ट्री यानी आज के इतिहास की। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1930 में उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में पहला फीफा विश्व कप उरुग्वे ने जीता था। 30 जुलाई के दिन ही सन 1935 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी। आज ही के दिन सन 1951 में अमेरिका ने इन गुड वी ट्रस्ट को अपना राष्ट्रीय आदर्श वाक्य घोषित भी किया था। मित्रों, 30 जुलाई के दिन ही सन 2020 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स पर अपना परसीवरेंस रोवर लॉन्च भी किया था। आज ही के दिन दुनिया भर में लोगों और देशों के बीच दोस्ती की भावना को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस भी मनाया जाता है। 30 जुलाई के दिन ही मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। तो साथियों, ये था आज का इतिहास। युववाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए एक बार फिर चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म बाजीगर का ये गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आप सुनेंगे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम व उनका प्रसारण समय।

श्रोताओ, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराय की। चौपाल का वक्त रहेगा शाम 7 बजे। 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8:15 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे जगजीत सिंह की गाई कुछ गजल।

6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक सीख। श्रोता, ये थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम व उनका प्रसारण समय।

0: ये ऑल इंडिया रेडियो दी विदेश प्रसारण सेवा द सिराय की प्रोग्राम है। मैं संजय पाहुजा आप सबको सलाम नमस्ते पेश करेंदा। अज असा हाजिर हैं आप सब दे सामने एक सिराय की वार्ता कीते जिंदा शीर्षक है सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानण होया। साडे नाल वार्ताकार हैं श्रीमती सीमा शर्मा जी, आइए सुनते हैं वार्ता।
1: सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानण होवा, ज्यूकर सूरज निकलिया तारे छिपै अंधेर पलोवा। सिंह बुकै मिर्गावली भन्नी जाए न तीर तरोवा, जिथे बाबा पैर तरै पूजा आसन थापन सोवा। मानवता दे मसीहा ज्ञान दे सागर अंधकार को खत्म करन आले प्रकाश दे पुंज धन धन श्री गुरु नानक देव जी दे 550 प्रकाश पर्व दे पवित्र मौके ते सुनने वाले सारे श्रोतावां को सीमा शर्मा दी प्यार भरी सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते ते नाल ही दिलों शुभकामनावां ते लख लख वधाइयां। अज मैं हाजिर हाँ ना सिर्फ सिखां दे पहले गुरु बल्कि सारी मानवता दे गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे 550 प्रगट दिवस को समर्पित कुछ भाव ते उन्हां दे जीवन दे बारे उन्हां द्वारा दित्ती गई शिक्षावां ते उन्हां दे पवित्र मुख तों उचारी गई बाणी बारे कुछ गल ही सांझा करन। अज पूरे संसार विच गुरु नानक नाम लेवा संगतां साहिब श्री गुरु नानक देव जी दा 550 प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम ते शानो शौकत नाल मनाते पए हन। सिख पंथ दी नींव रखण वाले जुल्मां दे खिलाफ आवाज़ बुलंद करन वाले पखंडवाद की खिलाफत करन वाले वहमां भरमां विच उलझी दुनिया को सीधे रास्ते पावण वाले आपसी भाईचारे दी ते मनुखता दी गाल करन वाले किरत करन वंड के खावन ते नाम जपो दी सीख देवण वाले सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। ये संदेश दे के त्रिमतियां को समाज विच इज्जत दिवावण वाले दीन दुखियां दे पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोज की तलवंडी पाकिस्तान ननकाणा साहिब 1469 ईस्वी को मेहता कालू जी के घर माता तृप्ता जी की कोख तो थिया आई। गुरु जी निके ला तो ही संता महापुरखा की संगत करन लग पे। 7-8 साल की उम्र में ही उन्होंने आत्म ज्ञान के अगू मौलवी ते पंडित उन्हों को पढ़ावन किते हथ खड़े चा किते। 9 साल की उम्र में जिहड़े वेले गुरु जी को जंजू यानी कि जनेऊ पावन किते आख्या गया तो ये आख के आप जी ही पवित्र जंजू को पावन किते इनकार कर दिता कि उन्हों को एंजा जंजू पाता बंजे जो ना तो कड़ी टुटे ते ना ही कड़ी मैला थीवे, भाव ना कड़ी गंदा थीवे ते ना ही कोई भाव को साड़ सके। ये विचार सुन के सारे हैरान थी गए ते गुरु जी को पूछण लगे इहो जा जंजू कित्थों मिलसी। गुरु जी वाणी उचार के जब

बाबड़ीता दया कपाह संतोख सुत जत गंढी सतवट एह जनेऊ जी का हई ता भांडे खत ना इह टुटै ना मन लगै ना इह जले ना जाए धनसू मानस नानका जिन गल चला पाए। गुरु जी थोड़े वड्डे थे ता पिता मेहता कालू जी गुरु जी को कारोबार सिखावन किते 20 रुपए दिते ते कुछ समान मुल घिनण किते भेजा ते हो कुछ चंगे भाव वेच के मुनाफा कमावन किते आख्या गया। पर गुरु जी साहिब जी ने गांव चूहड़ खाना विच कई रीतू भूखे प्यासे बैठे संत महापुरखा को इन्हां 20 रुपए का भोजन समग्री घिन के लंगर वरता दिता। सिख पंथ विच दीन दुखिया ते जरूरतमंद किते लंगर की सेवा भाव की नींव भी रख दी जो अज भी बादस्तूर जारी है ते रहिंदी दुनिया तक रासी। ही व्यापार को गुरु जी सच्चा सौदा आके संबोधित किया। जिड़े वेले गुरु जी घर वापस आए ते पिता जी को पता लग्या ते ओ गुरु नानक जी ते बहु नाराज थे ते इतिहासकार लिखते हैं उन्हां गुरु जी को डू थप्पड़ भी मारे ते ए नज़ारा भी नानकी बर्दाश्त ना किया ते भज के गुरु साहिब जी को गल नाल ला के प्यार किया। भेन बीबी नानकी जी ने अपने पिता जी को समझाया कि गुरु जी कोई साधारण पुरुष कह नहीं बल्कि अकाल पुरख ने उन्हों को खास काम किते भेजाए। गुरु नानक देव जी की वड्डी भेन बीबी नानकी जी का ससुराल सुल्तानपुर लोधी विच आई। बीबी नानकी जी अपने भिरा को अपने नाल सुल्तानपुर ही घिन गई जिथा जीजा जय राम जी ने उन्हों को नवाब दौलत खां दे मोदी खाने विच मोदी दी नौकरी डिवा दिती। पर गुरु महाराज जी का ध्यान नाल नाल प्रभु भक्ति विच लग्या रहा। जो भी जरूरतमंद आप जी कोलो आंदे पैसे घट होवन या ना भी होवन आप जी उन्हों को तेरा तेरा आके राशन देवन लग पे। जिड़े वेले गुरु साहिब जी की शिकायत नवाब दौलत खां को की गई तो मोदी खाने का हिसाब किताब लेखा जोखा किया गया तो पैसे वध ही निकले घाटे की जाते मुनाफा थे। गुरु जी ने ग्रस्त मारक को सारे तो वधिया मने तो खुद भी ग्रस्त जीवन बिताया है। आप जी का काज पखो दी रंधावा गुरदासपुर के रावण आले पटवारी मूला चोणा की सपुत्री सुलखणी जी नाल मूला जी के पैतृक गाँव बटाला विच थिया है। संमत 1544 को आप बरातिया नाल भाई बाला जी भाई मर्दाना जी भाई हाकम राय जी ते नवाब दौलत खां ते होर सज्जन रिश्तेदारां ते परिवार नाल सुल्तानपुर लोधी तू कपूरथला सुभानपुर बाबा बकाला तू थींदे होए इतिहासिक शहर बटाला पहुँचे। गुरु जी दी बरात ते बटाला पहुँचण ते शहर दे मोजिज लोगां ते रिश्तेदारां स्वागत कीता जिन्हां विच प्रमुख तौर ते अजीता रंधावा जी भी शामिल हन। बरात को जिहड़ी

0: खा गिनसू जी, पर मेरी खुराक है गरीबी, मेकू हेक पा तली गरीबी जरूर डेवना जी। इथा डस डेवा, गुरु नानक जी गरीबी निम्रता कुआ देहन, ना कि धन दौलत दे बिना आली गरीबी। भावल हक हैरान थी के पूछया, ए गरीबी कितों मिलसी? गुरु नानक देव जी आख्या, बाकी शायद जिंदे कोलो मंगदे हो वो गरीबी भी डेसी जी। भावल हक आखा, मैं ते अल्लाह के ने ही सब कुछ मंगदा हाँ। गुरु जी खिल के आख्या, बस वो ही गरीबी डेसन, तुसा मेडे किते पाया गरीबी मांग गिरना। शाम को भावल हक नमाज पढ़न तो बाद अल्लाह के ने गरीबी मंगी ते आवाज़ आई, गुरु नानक आया है क्या? वो तो पहले ही मेरी कुल हेक सेर गरीबी विचू त्रै पा गरीबी घिन गया है, ए बाकी तो मैं पा पक्की गरीबी सारे जहान किथे रखी बैठा हाँ। मत्तन कोई तेड़े वर्गा कोई मंग गिने ते मैं किनका मात उकू डे डेसा। भावल हक सोचन लग पिया कि मेरे किते सिर्फ किनका मात्र ते गुरु नानक जी त्रै पा किती बैठे हैं। सारा अहंकार हूँ मेले खत्म थी गया ते वापिस आके साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे कदमा विच सिर रख के माफ़ी मंगन लग पिया। हे सच्चे पातशाह, मेकू माफ़ करो, मैं आपको पछाणन विच गलती कीती है। गुरु साहिब भावल हक को हाँ न ला के आख्या, भावल हक जी सब भुल वन्यो जी। भाई गुरदास जी दे अनुसार गुरु नानक देव जी अपनी यात्रावां पूरी करन दे बाद करतारपुर साहब आ गए। उन्हें उदासियां दा भेस उतार के संसारी वस्त्र धारण कर दे सत्संग नीता प्रति थीवन लग पिया। गुरु नानक देव जी दे बारे जितना दस्या वन्ये उतना थोड़ा है। आप जी पूरी मानवता दी भलाई किते बहु बाणियां उचारी हैं, जिन्हां विच प्रमुख तौर ते हैं श्री जपजी साहिब, बमजा अखरी, सिद्ध गोष्ठ, आरती, दक्षिण ओंकार, आखिर विच गुरु फतेह बुलाओ जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: हाली आप सब सुनते पे आवे एक वार्ता हूँ असा आप दे सामने पेश करें दे पे हैं गुरबानी दा एक शब्द। साबका हजूरी रागी सचखंड हरमिंदर साहब श्री कृपाल सिंह जी ते उना दे साथियां दी आवाज़ विच सतगुरु नानक प्रगटिया।

शो तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराय की। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत गढ़ है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 होने को है। लीजिए अब सुने हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। हिंदी में समाचारों के बाद आप राजस्थानी में समाचार सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से। कृपया इन समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में कल से राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन। देश विदेश के न्यायविद, विधि विशेषज्ञ और नीति निर्माता जुटेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए बीमा कराने की आखिरी तारीख 16 अगस्त तक बढ़ी। देश में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल, श्रेणी 1 और 2 में आईटीआर भरने का कल अंतिम दिन। और सावन के पवित्र महीने के आगमन के साथ ही शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठान शुरू, भक्तों में खासा उत्साह। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में कल से राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत करेंगे। शांति, मध्यस्थता और कानून का शासन विषय पर होने वाले इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के न्यायविद, विधि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि इस वैश्विक न्याय कुंभ CPMC के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सम्मेलन में कई सत्र होंगे। इसमें वैश्विक स्तर पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, मध्यस्थता की भूमिका और कानून के शासन को मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा। इस सम्मेलन के समापन पर साझा घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ

2026 के लिए फसल बीमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है। पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। इससे किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि योजना के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2026-2027 के लिए 4 बीमा कंपनियों का चयन किया है। ये विभिन्न जिलों में किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध करवाएगी। किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल

0: निर्धारित की गई थी। इससे किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि योजना के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2026-2027 के लिए 4 बीमा कंपनियों का चयन किया है। ये विभिन्न जिलों में किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध करवाएगी। किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल और तिलहन खरीफ फसलों पर किसानों को केवल 2% प्रीमियम देना होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज कोटा पहुंचे। राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। स्वस्थ और शिक्षित महिला सशक्त राष्ट्र विषय पर 2 दिन की इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बागड़े ने कहा कि महिला सशक्तिकरण से ही देश मजबूत बनेगा। उन्होंने महिला स्वास्थ्य की दिशा में भी समग्र दृष्टिकोण से काम करने की जरूरत पर बल दिया। राज्यपाल ने जाखोड़ा स्थित श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का जायजा लिया। श्री बागड़े ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी ली। उन्होंने किसानों के साथ प्राकृतिक खेती को लेकर चर्चा भी की। राज्यपाल ने किसानों को खेती के नए तरीके शेडनेट पॉली हाउस का उपयोग कर सब्जियां उगाने की सलाह दी।
1: नए तरीके से खेती करने का अभी समय आ गया, शेडनेट है और कुछ है तो पॉली हाउस है। हर जो जैविक खेती से करते हैं या अपना गोबर खाद से जो जमीन करते हैं पिकाते हैं, उसकी जो जमीन होती है भूमि होती है वो बहुत मुलायम होती है और सभी पीक के लिए वो मुलायम खेती रहना चाहिए और जमीन में ही उसका खाद बनाने के लिए उसमें ही उसकी ताकत है। अभी देखो अपने यहाँ जो रासायनिक खाद डालते हैं।
0: कुचामन सिटी के सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कुछ मरीजों की आंखों में संक्रमण का मामला सामने आया है। इनमें से 5 मरीजों को तुरंत जयपुर के SMS अस्पताल लाया गया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि विशेषज्ञों की निगरानी में इनका इलाज किया जा रहा है।
2: 7 पेशेंट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुचामन में, एक सिंपल ऑपरेशन होता है अपने मोतिया का जिसको कहते हैं कैटरेक्ट का, 7 का ऑपरेशन हुआ और इनके अंदर कल जो प्रॉब्लम आ गया 7 में, दो तो अजमेर रेफर हो गए, 5 यहाँ आए हैं। 5 में से 2 का ऑपरेशन ऑलरेडी हो गया है और बाकी का चल रहा है। अभी डॉक्टर्स बेस्ट केयर ले रहे हैं और हमारी जो पूरी डिपार्टमेंट की टीम है, हमारे 3 सीनियर डॉक्टर्स और उनके साथ टेक्निकल जो है और जो ड्रग्स वाले जो टेस्ट करने वाले हैं वो भी सब कुचामन के लिए रवाना हो गए हैं। और अभी ये ऑपरेशन का क्या रिजल्ट रहता है, 5ों का क्या रिजल्ट रहता है और वहाँ क्या पाया जाता है, वो एक बारी इन्वेस्टिगेटेड टीम जाएगी, उसके बाद ही हम कुछ जवाब दे पाएंगे।
0: राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में राजस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मिट्टी के उपजाऊपन और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 2,12,000 किसानों को जोड़कर 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राज्य में अब तक 2,380 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं, जो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा हैं। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, मिट्टी की सेहत सुधारने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नवंबर 2024 में प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की गई। इसके लिए जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट भी स्थापित किए जा रहे हैं। ये मिशन खेती के साथ ही किसानों को प्रशिक्षण, प्रमाणन और विपणन की भी सुविधा उपलब्ध कराता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक खेती अपनाने वाले 91% किसानों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, वहीं उत्पादन लागत में भी कमी आई है। इससे प्राकृतिक खेती स्वस्थ कृषि व्यवस्था का आधार बन रही है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 और कर निर्धारण वर्ष 2026-2027 के लिए देश भर में अब तक 5 करोड़ 2 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइल की जा चुकी है। इसमें से 2 करोड़ 33 लाख से अधिक प्रोसेस हो चुकी है। राजस्थान में अब तक व्यक्तिगत श्रेणी में 692,000 से ज्यादा आईटीआर फाइल की गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी

0: के अनुसार श्रेणी एक और दो में आईटीआर भरने का कल आखिरी दिन है। वहीं श्रेणी तीन और चार के लिए 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने 20 जुलाई को घायल हुए प्रदर्शनकारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने ये निर्देश दिए। संसद के मानसून सत्र के नवे दिन आज लोकसभा ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन मन गण का अपमान करने या गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके लिए 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। वहीं राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर भारी हंगामे के बीच चर्चा जारी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन में कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा, इसे लेकर सदन में शोर शराबा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर सफल समुद्री अभियान पूरी करने वाली महिलाओं की टीम से मुलाकात की। अभियान में तीनों सेनाओं की 9 महिला अधिकारी शामिल रहीं, जिन्होंने 314 दिन की यात्रा कर दुनिया का चक्कर लगाया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने अभियान की सराहना करते हुए इसे नारी शक्ति और तीनों सेनाओं के शानदार तालमेल का उदाहरण बताया।
1: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं है।
0: सावन के पवित्र महीने के आगमन के साथ ही प्रदेश भर में आज से धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रावण मास को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और महादेव को जल, दूध, पंचामृत के साथ अभिषेक किया जा रहा है। साथ ही बिल्व पत्र भी चढ़ाए जा रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के शिव घोष और जयकारों के साथ सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सावन महीने के पहले दिन आज राजराजेश्वरी मंदिर में भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की। संत शिरोमणि रविदास की जयंती के उपलक्ष में प्रदेश भर में सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा रहा है। इस अवसर पर निकाली जा रही कलश यात्रा आज उत्तर प्रदेश से भरतपुर के ऊंचा नगला पहुंची। यात्रा का स्वागत करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि संत रविदास ने जाति, धर्म और वर्ग का भेद मिटाकर मानव सेवा का रास्ता दिखाया। उनके विचार समाज के लिए आज भी प्रासंगिक हैं।
2: उनके क्या विचार थे ऐसे समाज का निर्माण करने की, जिस सोच को आज और उसी सोच के ऊपर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस संविधान में जब लिख रहे थे, जब भी इनकी सोच का वर्णन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, उसी सोच को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन जन तक पहुँचाएंगे, नए युवाओं के बीच में पहुँचाएंगे, नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किए गए हैं निश्चित रूप से उसमें संस्कार, संस्कृति और एक मानव प्रेम की भावना जन जन तक पहुँचाएंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में कल से राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन। देश विदेश के न्यायविद, विधि विशेषज्ञ और नीति निर्माता जुटेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए बीमा कराने की आखिरी तारीख 16 अगस्त तक बढ़ी। देश में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल, श्रेणी 1 और 2 में आईटीआर भरने का कल अंतिम दिन। और सावन के पवित्र महीने के आगमन के साथ ही शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठान शुरू, भक्तों में खासा उत्साह। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।

कल एक दिन के दौरे पर भरतपुर आए, उन्होंने वैर तहसील के खेडली गुर्जर गांव में सैनिक बालिका विद्यालय का शिलान्यास किया और लगभग 940 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए, साथ ही उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया और मिशन पढ़ो अभियान का शुभारंभ करते हुए विद्यार्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 40 लाख विद्यार्थियों के खाते में 250 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने भुसावर कृषि महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने विद्यार्थियों से आधुनिक कृषि तकनीकों, अनुसंधान, स्टार्टअप और डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों से मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों के उपयोग की अपील की। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बयाना के कारवारी गांव में आयोजित संभाग स्तरीय

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को है। लीजिए अब सुने कार्यक्रम संसद समीक्षा। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2000

26 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएमके सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएमके सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएमके सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहां शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों के एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है, ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं।
और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की।

की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृह मंत्री सदन में आए और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहाँ नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपये बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराइक, कणाद पुरकायस्त, गोविंद भाई, लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग, लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एल के सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष SIT का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकार

वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए, जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए, अन्यथा यही जेन ज़ी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 होने को है। लीजिए अब सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं सलामी फिल्म के कुछ फिल्मी नगमे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सलामी फिल्म के कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंकज उदास और अलका याग्निक की आवाज में ये नगमा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

फिल्मी नगमे सुने। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। इस कार्यक्रम के पश्चात आप सुनेंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया इन कार्यक्रमों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दिन भर की खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। ये वो कार्यक्रम है जिसमें खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग आपको देखने को मिलती है। आज के संस्करण के साथ मैं हूं अतहर सईद। श्रोताओ, आज भी हम लेकर आए हैं खेल जगत की वो तमाम खबरें, समाचार, सारी अपडेट जिनका आपसे है सरोकार। तो शुरू करते हैं खेलों का ये सफर। सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत ने इतिहास रचते हुए पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में शीर्ष दो स्थान हासिल किए। दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंह नाकथ ने रजत पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर दिलीप महादु गावित को बधाई दी। राष्ट्रमंडल खेलों में नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे। विश्व जूनियर स्क्वाश प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और भारत के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुषों की पैरा 100 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर दिलीप महादु गावित को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एथलीट की गति, दृढ़ संकल्प और लगन ने देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने नया खेल कीर्तिमान बनाने और अपना सीजन बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए भी श्री गावित को बधाई दी। श्री मोदी ने इसी स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर मोहम्मद बासिल मोरसिंह नाकत को भी बधाई दी।

0: उन्होंने कहा कि मोर सिंह नाकत की सफलता उनकी कड़ी मेहनत और फोकस को दिखाती है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में इतिहास रचते हुए पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में शीर्ष दो स्थान हासिल किए। दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण पदक और मोहम्मद बासिल मोरसिग नकाथ ने रजत पदक जीता।
2: चलिए फिर दो भारतीय एथलीट्स आपको नजर आएंगे। शुरुआत हो चुकी है इस T47 कैटेगरी की। दो भारतीय एथलीट्स मेडल ले जाएंगे जरूर। ऐतिहासिक पल, गावित को मिला है गोल्ड भारत के लिए। मोहम्मद बासिल दूसरे स्थान में आए हैं। यहां भारत ने एक गोल्ड और सिल्वर दोनों ले गए हैं, पूरे हाथ भर लिए।
1: दिलीप ने 10.17 सेकंड के साथ नया रिकॉर्ड और सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं मोहम्मद बासिल ने सत्र के अपने सर्वश्रेष्ठ समय 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इंग्लैंड के केविन सेंटोस ने कांस्य पदक जीता। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में और शर्मिला धनकर ने पैरा एथलेटिक्स की महिलाओं की गोला फेंक F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर श्री शंकर को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शंकर की सफलता कई युवाओं को एथलेटिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने इन सभी मेडल विजेताओं को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। भारत पदक तालिका में 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन पर दिलीप महादू गावित ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
3: मैं बचपन में पेड़ से गिर गया था, तब वो हाथ कट करना पड़ा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया पैरा वालों के लिए सपोर्ट करने के लिए। पैरालंपिक वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी स्पोर्ट भी बहुत सपोर्ट करे, हमारे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है। उस सपोर्ट की वजह से आज हम देश का नाम ऊंचा कर पाए।
0: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष 12 में जगह बनाकर पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। नीरज के अलावा रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। नीरज 5वें जबकि रोहित और यशवीर क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर रहे। इसके साथ ही स्पर्धा में हिस्सा लेने वाला पूरा भारतीय दल पदक दौर में पहुंच गया है। नीरज चोपड़ा ने 2018 में भाला फेंक स्पर्धा का खिताब जीता था। वो क्वालिफिकेशन राउंड में 79.61 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ 5वें स्थान पर रहे, जबकि रोहित यादव 78.37 मीटर और यशवीर सिंह 78.36 मीटर के मीटर से क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर रहे हैं। विशेष मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, अब क्या उम्मीदें रहेंगी उनके फाइनल में?
4: देखिए अतर, उनसे भाला फेंक में हमेशा से ही उम्मीदें रही हैं, क्योंकि एक ओलंपिक पदक विजेता जब कॉमनवेल्थ या डायमंड लीग जैसी प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए आता है तो उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती हैं। नीरज एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक ओलंपिक में पहले भी जीत चुके हैं, जिसमें उन्होंने 87.58 और 89.45 मीटर भाला फेंक कर पदक जीता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज नीरज ने सिर्फ 79.61 मीटर भाला फेंका है, जो कि उनके स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है।
0: बिल्कुल,
4: लेकिन फिर भी हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो फाइनल में बेहतर प्रदर्शन करें।
0: कई बार होता है खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ जो है वो बचा कर रखता है
4: जी
0: अंतिम मुकाबले के लिए, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए होगी कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के साथ वो गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। भारत के लिए रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। विशेष अब भाला फेंक में भारत को एक से अधिक पदक की उम्मीद रहेगी।
4: जी बिल्कुल, एक से अधिक खिलाड़ियों से अब भारत को उम्मीद रहेगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोहित यादव जो हैं वो बर्मिंगम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में एक बार पहले भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने 6वां स्थान प्राप्त किया था। यशवीर सिंह के लिए यह पहला मौका है जब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में जो है जगह बनाई है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये दोनों खिलाड़ी इस बड़े मंच पर नीरज चोपड़ा के साथ देश का नाम कैसे रोशन करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, राष्ट्रमंडल खेलों की ही खबरों को अगर जारी रखें तो विशेष आज कौन कौन सी स्पर्धाएं होना बाकी हैं?
4: जी अभी मार्टिना देवी मालवीना का जो मुकाबला है 87 किलोग्राम में वो अभी जारी है वेट लिफ्टिंग का। इसके अलावा लवप्रीत सिंह जो 110 किलो में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, और एथलेटिक्स की बात करें तो शॉर्ट पुट में और जो है दूसरे मुकाबलों में भी भारत 11:30 बजे से प्रतिस्पर्धा करती नजर आएगी। हाई जंप में तेजस्विन श्रीशंकर भी खेलते हुए दिखेंगे।
0: अच्छा विशेष, अब तक भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं और

0: कौन सी ऐसी स्पर्धाएं हैं जिनमें भारत को भारत से हमें उम्मीद करनी चाहिए और अधिक पदक हासिल करने की,
1: ये सबसे ज़्यादा
0: विशेषकर स्वर्ण पदक की बात कर
1: जी
0: रहा
1: जी
0: हूं।
1: अगर स्वर्ण पदक या पदकों की भी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें भारत को बॉक्सर्स से होगी, अपने मुक्केबाजों से, जहां पर जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम और ये सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम और नरेंद्र बनवाल 90 किलोग्राम, ये मेंस कैटेगरी में भारत के लिए पहले ही पदक पक्का कर चुके हैं और अब इनसे उम्मीद होगी कि ये स्वर्ण पदक के लिए बेहतरीन प्रतिस्पर्धा करें। वहीं महिलाओं में अगर बात करें तो साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम, प्रिया घांगस 60 किलोग्राम, अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम और लवलीना जो है 75 किलोग्राम में भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर चुके हैं। तो इस तरह 10 मेडल जो हैं भारत के वो पहले से ही सुनिश्चित हो चुके हैं मुक्केबाजी में और ये खिलाड़ी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख सकते हैं स्वर्ण पदक की रेस में।
0: सारे खिलाड़ियों को हम शुभकामनाएं देते हुए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की ही बात करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुष तिरकूद स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी प्रवीण चित्रावेल दूसरे और सिल्वा प्रभु ने तीसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चित्रावेल ने अपने पहले और एकमात्र प्रयास में 16.41 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। ठंडे और तेज़ हवाओं वाले मौसम के कारण 14 में से कोई भी एथलीट 16.60 मीटर के स्वतः क्वालिफिकेशन मानक को पार

0: आकर भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया। सेमीफाइनल में अब भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अमेरिका से होगा। अमेरिका ने 8वीं वरीयता प्राप्त जापान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं महिलाओं के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत ने मुकाबले की शुरुआत दमदार अंदाज में की। मौजूदा वर्ल्ड जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने दिया यादव को 11-7, 11-5, 11-4 से सीधे गेम में हराया। हालांकि भारतीय टीम अपनी इस बढ़त को बरकरार नहीं रख सकी। शार्लेट सेज ने रुद्र सिंह को 11-6, 11-4, 11-8 से हराकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद निर्णायक मुकाबले में लीली बोरेल ने अनिका दुबे को 13-11, 11-8, 11-6 से हराते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब अमेरिका का सामना डिफेंडिंग चैंपियन मिश्र से होगा। मिश्र ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स scan.
1: और अब बात बैडमिंटन की। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और दीपिका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जबकि पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एच एस प्रणय हारने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शशांक कुमार।
2: किरण ने थारुन मन्नेपल्ली को महज 32 मिनट में 21-15, 21-16 से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया। अब उनका मुकाबला जापान के युदाई ओकिमोतो से होगा। महिला सिंगल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त उन्नति ने तान्या हेमंत को 21-19, 21-12 से, तन्वी ने इंडोनेशिया की थलिता को 21-17, 22-20 से और देविका ने इंडोनेशिया की नीकांडे को 21-16, 21-15 से हराया। उन्नति और देविका क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगी, जबकि तन्वी थाईलैंड की सुपिनिडा केट थोंग से खेलेंगी। वहीं एच एस प्रणय और अनमोल खरब हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और बात क्रिकेट की। भारत के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना अंतिम टेस्ट मैच 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान खेला था। वहीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उनके क्रिकेट करियर पर नजर डाल रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल शर्मा।
3: Today, I feel the timing is right for me to move on and announce my retirement from international cricket and all formats. The dream was always to wear the India cap. Since the time I made my debut as a first-class cricketer, Indian cricket has grown tremendous and I feel so proud to have been the part of over the last 20 years. While my chapter as an Indian cricketer comes to an end, my journey with the game doesn't. I look forward to helping the next generation, sharing the values this sport has taught me and giving back to the game that has given me everything. To the BCCI, the MCA, my teammates, my coaches, every IPL franchisee, to Radhika, my entire family, my friends and everyone who stood by me, thank you. And a very special thank you to all the cricket fans who supported me every highs and lows. Thank you for your love, your faith and your support. Cap number 278 signing off.
4: 38 वर्षीय अजिंक्य रहाणे ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में भारत के लिए कुल 85 टेस्ट, 90 एकदिवसीय और 20 T20 मैच खेले। उन्होंने भारत के लिए 2013 में डेब्यू किया था। रहाणे ने टेस्ट में 12 शतकों और 26 अर्धशतकों के साथ कुल 5077 रन बनाए। वहीं एक दिवसीय क्रिकेट में 35 के औसत के साथ 2962 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं T20 मुकाबलों में रहाणे 20 मैच में केवल 375 रन ही बना सके। रहाणे के नाम कई रिकॉर्ड हैं, लेकिन अगर एक खास रिकॉर्ड की बात करें तो साल 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच की दोनों ही पारियों में शतक लगाकर रहाणे ने भारतीय टीम को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। पहली पारी में रहाणे की 127 रनों की लाजवाब पारी के बूते टीम इंडिया 334 रनों के टोटल तक पहुंचने में सफल रही थी। वहीं दूसरी पारी में रहाणे 100 रन बनाकर नाबाद रहे थे। रहाणे नंबर 5 या उससे नीचे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही पारियों में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं। बतौर कप्तान अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड जबरदस्त रहा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में 36 रनों पर ऑल आउट होने और हार झेलने के बाद भारतीय टीम का मनोबल पूरी तरह से टूटा हुआ था। नियमित कप्तान विराट कोहली निजी कारणों से स्वदेश लौट आए थे। सीरीज
1: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात, खेल जगत की हर खबर के साथ। इसी के साथ अतहर सईद को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
3: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
5: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
6: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया।

0: राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
3: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए की

0: 47 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़

0: उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashvir Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. The Parliament has passed the Prevention of Insults to the National Honour Amendment Bill 2026 with the Lok Sabha approving it today. The Radha Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Janagana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offenses are

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार थे जगजीत सिंह। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुने कार्यक्रम कंट्री वाइड इनसाइट। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कंट्री वाइड ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए दूर संचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दूर संचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: राकेश भटनागर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: राकेश जी। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन चुका है और ये डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक तरह से मेरुदंड भी माना जाता है। तो ऐसे में अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं? क्या ये केवल मोबाइल और इंटरनेट का ही विस्तार है या इससे कहीं अधिक सूचना प्रौद्योगिकी में बदलाव आया है?
3: जो एक सेगमेंट जिसमें कि बहुत ज्यादा चेंज हुआ वो मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। पहले जो है मोबाइल फोन जो था मोस्टली इंपोर्ट होते थे। अब इंडिया इस पोजीशन में पहुंच गया है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट को भी मीट नहीं कर पा रहा है, उसके साथ साथ में विदेश में भी काफी हद तक एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर एक सिंगल कंपोनेंट को हम लेके चलें तो मोबाइल हैंडसेट एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो रहा है जिससे कि हम अर्थव्यवस्था को और काफी उससे योगदान मिल रहा है। इसमें बस एक चीज की कमी है
2: जी,
3: कि जो लोकल वैल्यू एडिशन है वो अभी बहुत हाई लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो हमको कुछ आइटम्स जो है कंपोनेंट्स वगैरह हैं उस फिर भी अभी हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में भी जो अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं उसके रिजल्ट आएंगे और लोकल वैल्यू एडिशन भी जो है काफी हद तक बढ़ पाएगा।
2: भटनागर जी, जैसे भी आपने मोबाइल क्षेत्र की बात की तो भारत को मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र
3: जो है काफी हद तक लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर्स एयरटेल जियो वगैरह को अगर आप देखें तो विदेश से ही सामान मंगवा रहे हैं
2: जी।
3: टेलीकॉम सेगमेंट में चाइना से भी जो लेवल ऑफ इंपोर्ट है वो अभी तक काफी है। ऐसा नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास में उसको करने की क्षमता नहीं है। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं तेजस नेटवर्क HFCL जो 60-70 कंट्रीज को इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्वालिटी भी उनके पास में है, उनके पास प्राइसिंग भी वो कॉम्पिटिटिव है। तो सरकार की ओर से थोड़ा एडिशनल प्रयास करने की जरूरत है मार्केट एक्सेस, क्योंकि जब तक इनको डोमेस्टिक प्लेयर्स को ऑर्डर नहीं मिलते तब तक जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम रह जाती है। तो इसमें काफी क्षमता है और सरकार जो है मेरे को पूरी उम्मीद है कि मार्केट एक्सेस के ऊपर भी सरकार की तरफ से आने वाले कुछ हफ्तों में अच्छे स्टेप्स लिए जाएंगे
2: जी। एक समय था जब भारत टेलीकॉम उपकरणों के लिए काफी हद तक आयात पर भी निर्भर था, जैसा कि आपने जिक्र किया, और सरकार अब घरेलू निर्माण पर काफी जोर दे रही है। तो इसके लिए सरकार ने भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज 1 की शुरुआत की है। तो ये किस तरह की परियोजना है, इसके पीछे की असली सोच क्या है और हमारे टेलीकॉम सेक्टर में कैसा बदलाव देखने को मिलेगा इसके क्रियान्वित होने के बाद?
3: ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। ग्वालियर शहर में 70 एकड़ लैंड और ग्वालियर से करीब 15 किलोमीटर दूर वहां पर करीब 100 एकड़ लैंड का प्रोविजन किया गया है। ये फेज 1 में है, इसके आने वाले फेज में और भी बढ़ने की क्षमता है। ग्वालियर सिटी में जो 70 एकड़ एरिया है उसमें जो है वहां पर शेड्स वगैरह भी लगाए जाएंगे। जो लागत होगी वो कंपनीज को उसको प्रोक्योर करने की लागत भी बहुत नॉमिनल होगी। उनके पास वहां पर टेलीकॉम टेस्टिंग इको सिस्टम भी वहां पर लगाया जाएगा, टेलीकॉम सेंटर्स भी लगाए जाएंगे।

0: और उसके साथ साथ में जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी काफी योगदान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑलरेडी फील्ड विजिट्स में मैं भी ग्वालियर और भोपाल में एक विजिट में ऑलरेडी जा चुका हूँ। इंडस्ट्री के लोग जो हैं ज्यादा मीटिंग्स में भी जा चुके हैं और इंडस्ट्री के साथ कॉपरेशन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोविजन किया है कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो हैं, अच्छे से अच्छे इंसेंटिव जो दिए जा सकते हैं वो दिए जाए। कई सरकारों ने भी सिमिलर जोन स्थापित करने का प्रयास किए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का जो ये प्रयास है वो उन सब में अगर एक अलग है और मेरे को काफी उम्मीद है कि इसकी सफलता जरूर आनी चाहिए।
1: राकेश जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी है बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत का लक्ष्य अब केवल घरेलू जरूरतें पूरी करना नहीं बल्कि टेलीकॉम उपकरणों का निर्यातक बनना भी है। तो ये जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज वन की शुरुआत की जा रही है, तो इससे आगे चल करके किस तरह के सुधार हमें देखने को मिलेंगे? क्या निवेश इसमें बढ़ेगा या अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी जो है वो बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है?
0: टेलीकॉम क्षेत्र में जो है अगर आप देखें तो 5G और 6G में इंडिया का बहुत अच्छा रोल जा रहा है। दुनिया भर में 5G में नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, ZTE एंड हुआई खाली 5 प्लेयर्स हैं, लेकिन इंडिया में जो है करीब 10 से 15 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इस ग्लोबल मार्केट में जाने में सक्षम है। ऑलरेडी BSNL MTEL के नेटवर्क में गैलोर और लेखा वायरलेस दो इन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टार्ट कर दिया है।
1: जी
0: मे भी 15 अगस्त को दिल्ली में 5G जो है इन लोगों के माध्यम से वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए। प्राइवेट 5G एक बहुत बड़ी मार्केट है, करीब ये 10,000 करोड़ की मार्केट है, एनुअल मार्केट। तो इसमें जो है इंडिया के प्लेयर्स को क्योंकि अभी तक मौका नहीं मिला था और अब मौका मिलना शुरू हो रहा है। मंत्री जी का भी प्रयास है कि इसके लिए स्पेक्ट्रम का भी अलॉटमेंट वगैरह उस दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं। तो अब इसमें अगर सफलता मिलती है तो हम एक 10,000 करोड़ की मार्केट में हम इंडियन मार्केट में एंटर कर पाएंगे। हमने 77 यूज केसेस आइडेंटिफाई करके सरकार को अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए, अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए आइडेंटिफाई करके हमने पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की इंप्रूवमेंट के लिए हमने शेयर किए हैं सरकार के साथ में।
1: जी
0: और ये सारे प्रयास हैं वो खाली इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ये विदेश के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी इंडिया ने रिसेंटली जो है अगर लास्ट वीक में ही पहला समृद्ध गांव का अवार्ड WIS में जीता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं वॉइस का डायरेक्टर जनरल हूँ, वॉइस ने भी पहला इंडिया का स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज ITU की रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट किया। ऑलरेडी हमारे पास यूरोपियन यूनियन, UK और कई जगहों से रिक्वेस्ट आ रही है क्या इंडिया लीस्ट डेवलप कंट्रीज को इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो नेशनल इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है।
1: जी
0: एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा,
1: जरूर।
0: कल ही दीनदयाल उपाध्याय संचार अवार्ड जो है अनाउंस किए गए उसमें एक अवार्ड फिनारा को जा रहा है। मैं इसके बारे में जस्ट बहुत संक्षेप में मेंशन करूंगा। अगर आप विजुलाइज करिए कि आपके पास एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूनिट जो है आपकी एयरपोर्ट पे लगी हुई है, उसमें आप जाके अपना पासपोर्ट उसमें डालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना पैन कार्ड दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना आधार कार्ड दीजिए, 3 स्टेप के और की ऑथेंटिकेशन के साथ में आपका KYC कंप्लीट हो जाता है। उस स्टेज में आप कहते हैं कि मेरे को रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है, 10,000 रुपीज आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू डॉलर्स।
1: जी
0: तो ये मशीन जो है आपको डॉलर में भी कन्वर्ट करके दे देगी, और अगर आप डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हर एयरपोर्ट में अब ये

0: इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है।
1: जी
0: एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा,
1: जरूर।
0: कल ही दीनदयाल उपाध्याय संचार अवार्ड जो है अनाउंस किए गए, उसमें एक अवार्ड फिनारा को जा रहा है। मैं इसके बारे में जस्ट बहुत संक्षेप में मेंशन करूंगा। अगर आप विजुलाइज करिए कि आपके पास एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूनिट जो है आपकी एयरपोर्ट पे लगी हुई है, उसमें आप जाके अपना पासपोर्ट उसमें डालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना पैन कार्ड दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना आधार कार्ड दीजिए, तीन स्टेप की ऑथेंटिकेशन के साथ में आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। उस स्टेज में आप कहते हैं कि मेरे को रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है, 10,000 रुपीज आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू डॉलर,
1: जी
0: तो ये मशीन जो है आपको डॉलर में भी कन्वर्ट करके दे देगी। और अगर आप डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
1: जी
0: तो हर एयरपोर्ट में अब ये है, ये हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ने ये डेवलप करी है,
1: जी
0: तो इंडिया में ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इंडिया में इस तरह करने की बहुत क्षमताएं हैं, और उन क्षमता के बेसिस में जो है वर्ल्ड मार्केट में इंडिया का जो रोल है अभी तक जो कंपेरेटिवली पीछे रहा है वो काफी आगे बढ़ सकता है।
1: इस दिशा में अगर थोड़ी सी बात और हम करते हो तो 6G टेक्निक पर भी भारत काफी काम कर रहा है, और भारत का फोकस शुरुआत में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने देश में वापस आते हैं, गांव की हम बात करते हैं, तो भारत नेट जैसी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, और इस योजना ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देख करके आपको क्या लगता है कि भारत की और कितनी ज्यादा संभावना है, खासतौर पर 5G और 6G को लेकर के जब हम गांव गांव तक पहुंचने की बात करते हैं?
0: इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ITU की एक रिकमेंडेशन आई थी Y4218,
1: जी
0: आपने स्मार्ट सिटीज का तो सबने सुना हुआ था, लेकिन स्मार्ट विलेजेस का नाम शायद आपने कंपैरेटिवली नहीं सुना होगा। ये रिकमेंडेशन स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेजेस के बारे में इसमें रेफरेंस था, और हमने इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज सतनावरी में हमने इंस्टॉल किया। इसमें सैटेलाइट सुविधा भी गांव में पहुंच रही है, 5G प्राइवेट नेटवर्क भी हम यूज कर रहे हैं, भारत नेट की बैंडविड्थ भी हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो मीडिया की जो जो ऑप्शन हो सकती है कि इंडिया में किसी भी देश के कॉर्नर में आपको इंप्लीमेंट करना है
1: जी
0: तो आपके पास जो है बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के तरीके हैं। अब जहां तक यूज केसेस हैं, सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में अगर आप सॉयल की कंडीशंस को देखें और उसके बेसिस पे आप रिकमेंड करें कि कौन सा फर्टिलाइजर, पोटेशियम या फॉस्फोरस या कौन सा केमिकल डालने की जरूरत है, आप खेत में फसल की कंडीशन को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या वहां पर पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता है या नहीं है,
1: जी
0: तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक वे में हो सकती हैं। हमने जो है वहां पर एक एंड्रॉयड बेस्ड एक एप्लीकेशन भी हमने डेवलप करके वहां पे लगाई है, तो किसान अगर चाहे दिल्ली में बैठा हो या लंदन में बैठा हो, वो अपने खेत को वहीं से बैठे हुए कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन में आपको खेत की स्थिति पूरी तरह से पता लग रही है।
1: जी
0: अभी गाँव में तालाब है तो तालाब में मछली पालन के लिए जो आपको योगदान चाहिए

0: इससे डिजिटल डिवाइड को किस हद तक हम खत्म करने में सक्षम होंगे?
1: हमने 17वीं में जो इम्प्लीमेंटेशन किया था उसमें हमने सेटेलाइट का भी एडवांटेज हमने लिया था, 4G प्राइवेट नेटवर्क, सेटेलाइट के से कनेक्टिविटी थी और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बैंगलोर में, ये पूरी हमने चेन बनाई थी। सेटेलाइट में हमारे ही कुछ प्लेयर इस वर्क इस तरह भी प्रयास कर रहे हैं कि वो 100 के करीब लियो ऑर्बिट में सेटेलाइट छोड़ें,
0: जी
1: उनके थ्रू पूरे देश के रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का जो है योगदान मिल सके। और एक मैं बहुत आपको आश्चर्य भी हुआ कि नॉर्मली सेटेलाइट में रूफ टॉप के ऊपर में डिश एंटीना लगते हैं
0: जी
1: और आपको स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिसके माध्यम से आप सेटेलाइट सिग्नल रिसीव करते हैं। हमारा एक डोमेस्टिक प्लेयर ने उससे इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी, 15 अगस्त को ही बी रेडी विद ए सॉल्यूशन जिसमें कि आपको ऑर्डिनरी फोन पे भी और वो भी घर के अंदर बैठे हुए भी आप सेटेलाइट का सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयास दुनिया में किसी और देश में अभी आज तक नहीं हुआ है,
0: जी
1: ये इंडिया में होने जा रहा है।
0: जी राकेश जी, अंत में आपसे बस एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आज हम AI, ओपन RAN और इंटरनेट थिंग्स या फिर क्लाउड जैसी तकनीकों की चर्चा कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो टेलीकॉम सेक्टर से इनसे क्या उम्मीदें हैं और आने वाले वर्षों में भारत को इनसे किस तरह से लाभ होगा और भारत कैसे वैश्विक स्तर पर अपने आप को इसमें श्रेष्ठ साबित कर सकता है?
1: आपने क्लाउड की आपने मेंशन करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेंशन करी, तो हमने जो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है तो उसमें ये ऑलरेडी बीच में यूज किया जा रहा है।
0: जी
1: और हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया था, यूके एंड यूरोपियन यूनियन की एक टीम भी आई थी, 3 विशेषज्ञ 3 प्रोफेसर भी आए थे और उसके साथ उन्होंने हमारे साथ एक MOU किया और जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसको लीस्ट डेवलप कंट्रीज में डेवलप प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो इंडिया में एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न पूरी क्षमता है, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं या डाटा सेंटर्स हैं,
0: जी
1: हर क्षेत्र में हमारे पास क्षमता है। सरकार और इंडस्ट्री मिलकर काफी अच्छा काम कर सकते हैं
0: जी
1: क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डर बुक होती है। हमारे पास क्षमता है और ऑर्डर आ जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम पीछे रह जाएं।
0: राकेश भटनागर जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे दूरसंचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दूरसंचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: नाउ क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 121, श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
2: क्वेश्चन नंबर 21।
3: प्रश्न संख्या 121। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को प्रदान किया जा रहा है। ख, जैव विविधता से संबंधित वित्तीय सहायता को पात्र वनवासी एवं जनजातीय समुदायों तक पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय संगत रीति से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। ग, ऐसी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थापित संस्थागत तंत्र क्या है। और घ, परिणामों की निगरानी करने तथा प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय स्थापित किए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
2: माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा
1: है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
4: थैंक यू सर। Will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to state whether digital platforms will be introduced for transparent monitoring of biodiversity projects and its implementation? Any institutional mechanism proposed for ensuring greater participation of Gram Sabhas, women and the tribal communities in planning and implementation? Any frequency prescribed for publishing the state-wise and district-wise performance reports? Whether government proposes to establish an integrated coordination mechanism among the ministers dealing with the environment, tribal affairs, agriculture, rural development and finance for biodiversity conservation? The expected...
1: Is specific about your question. Long question, then come to this specific question, please.
4: Okay.
1: Carry on.
4: The monitoring mechanism proposed to prevent duplication of expenditure and improve accountability. Thank you, sir.
5: Sir, the member raised a concern about whether there is any mechanism to giving a profit to a tribal community and other community as per the biodiversity fund is concerned. Sir, I want to submit that India has a well-established domestic access and benefit-sharing mechanism which is under the Biological Diversity Act of 2002 as amended in 2023, supported by the Biological Diversity Rules 2024 and Access Benefit-Sharing Regulation 2025. The present ABS framework provides for fair and equitable sharing of benefit arising from the

0: And conservation activities.
1: Sir, as per the Maharashtra is concerned, 11 crore rupees, the ABS amount sanctioned, including the administrative charges also, and definitely it's providing the benefit, the concerned community, which the question is raised by the particular member. Yes.
2: Third supplementary, Sriman Dr. Ashok Kumar Mittal ji.
3: Environment तथा biodiversity के management में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है. Women self help group स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के collection और protection में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट्स में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए. धन्यवाद.
2: ऑनरेबल मिनिस्टर.
0: माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो बायोडायवर्सिटी का विषय है वह हमारी विकास की प्राथमिकताओं में है. बायोडायवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है. और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं. और ये निश्चित रूप से देश की बायोडायवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है. इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं.
2: फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी.
4: धन्यवाद सभापति महोदय. बायोडायवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडायवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. तो मेरा प्रश्न है, और दूसरा भी इससे जुड़ा है, कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडायवर्सिटी हम कर सकते हैं. तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडायवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या. ये मेरा प्रश्न है.
0: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है. वो बायोडायवर्सिटी से अलग है. अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे.
2: नाउ क्वेश्चन नंबर 122, श्रीमान ए रहीम जी.
5: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख, श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है. ग, क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है. और घ, क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है.
2: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी.
6: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन convention on the decent work in the platform economy, which seeks to set minimum standards for the gig and platform workers and was supported by the both Indian employers and workers, especially when such abstention risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
2: Honorable Minister.
5: Dr. Mansoor

0: व्यवस्था है उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है, कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
2: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ the new 50% basic wage rule under the code on wages will impact workers eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
1: Honorable Minister.
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पीछे

0: पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट ने होम एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बना। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ACESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ESIC के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर्स उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था, लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा। और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिलाके हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
2: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर, मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर, जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ, तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदले और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है, ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि

बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हेंसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है? भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर को उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए ताकि जिसको जॉब चाहिए और जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर्स

0: श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? ख, क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग, क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है? और घ, देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
2: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेस है इंक्लूडिंग वीडीए पर डे, वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी? एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, तीन क्लासिफिकेशंस दी है, ए बी एंड सी। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगहें हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
4: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए, और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है, ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पुरता खाना मिले, और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है, तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था, आज अब ये मोबाइल तो हम काउंट ना करें, वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है, तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं, उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्प विकसित प्रदेश भी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का ABC यानी कि एक मेट्रोपोलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा, और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में 2 बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार ऐड होता है, और कोर्ट में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है, तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं, उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्प विकसित प्रदेश भी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका

0: जीवन निर्वाह का एबीसी यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च और एक दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फोर वेज तय करा जाएगा और फोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में दो बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है उसके अनुसार ऐड होता है और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
2: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 ईयर वंस और 3 ईयर वंस और 2 ईयर वंस रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट फेल। सर, द मिनिमम वेजेस नॉट अनाउंस्ड ईयरली बाय द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री हैज एनी प्रपोजल टू अनाउंस मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर दैट विल हेल्प द लेबर्स अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में दो बार VDR के द्वारा VDS के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
3: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रही है, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल लेबर और स्किल लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ाने की कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंट्रेक्चुअल में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है, वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या और वो कौन से कैटेगरी में आते हैं और बढ़ाने
0: की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना यूएसए 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहाँ जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को अपने सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ, भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं, किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
4: 124 प्रश्न संख्या 124, क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री

0: बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है। और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं। रक्षा निखिल खडसे, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
2: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलेटिक्स हैं, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में। इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है, जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 60

0: आ रहे हैं, मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं, क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशंस का जहां उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम, उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा।
1: शुक्रिया।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल कर।
0: कश्मीर के क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं, क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशंस का जहाँ उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम, उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा। शुक्रिया।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, दो दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है सरकार की ओर से। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए एक बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे लेकिन हम हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग सनडाउन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी, सारे देश की जिम्मेवारी है। वो हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इन्विटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इन्विटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
3: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
4: Honorable Minister.
5: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि

0: खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूंगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं। 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग्स हो रही है पूरे देश में और लगभग 6,00,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
2: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा दशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़ कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहाँ के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग कई समस्या है। उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरनमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना और वहां जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 125, डॉक्टर ज्योति नाथनाथ वाकमारे।
4: क्वेश्चन नंबर 125।
5: प्रश्न संख्या 125। क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सुनिश्चित कर रही है? और ग, मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ, तथा सुरक्षित कार्य वातावरण, जल, सफाई एवं स्वच्छता और संरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं?
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
4: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक है, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों को तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
5: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
6: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते है सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना यानी एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारे हैं। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में क्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने था, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हम एक्सटेंशन किया है, वुमेन एम्प्लॉय के साथ इसका इन-लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला को, महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहा है, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसका पहले का आंकड़ी नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ी नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसको आंकर किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोगों सब्सक्राइबर, नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है। पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.6 रहे, लेकिन इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसके कारण है अलग अलग सर। हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं, अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं, वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, इसी में 40% महिला है सर। हमको बोलने के लिए खुश होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार मदद दिया, इसके कारण नए बच्चे, नए नौजवान यानी युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेन्योर।

0: एंटरप्रेनर्स बनाए हैं। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना शुरू किया। अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रंच का पैसा लोग एंटरप्रेनर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया। वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना। इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं एंड किसके लिए एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना एंड नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए। इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरा देश में महिला को एंटरप्रेनर्स बनाने के लिए जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार महिला हम बनाए। इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सेकेंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में इसको प्रवृत्त किया गया है इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताई 29 कानूनों को हम निकाल के ब्रिटिश का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे उसको हम पूरे निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में। एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और एनी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए। महिला का समस्या महिला ही जानती है इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं सर। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहली बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नाइट ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षा के लिए ध्यान रखना ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
3: माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ईश्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं। इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ईश्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स से सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.3 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटीदार जी।
4: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले

मांग पर लेबर कोड आना चाहिए, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू

0: का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया है सर। थैंक यू।
1: थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
2: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
3: प्रश्न संख्या 126। क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: श्री अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार।
4: चेयरमैन सर उत्तर सभा पटल पर रख दिया। थैंक यू।
1: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
2: थैंक यू सर। Honorable Minister, while reply indicates that the number of beneficiaries, it does not indicate the quality of the legal assistance provided. So my pinpoint

0: न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पर रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंदिया जी।
2: थैंक यू चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: सभापति महोदय, माने सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे विरासत को भी बचाएंगे। धन्यवाद।
1: The House stands adjourned to meet at 2 PM.
3: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पर रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंदिया जी।
2: थैंक यू चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: सभापति महोदय, माने सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा।

0: संविधान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्र गान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी।